0: वे जे आवे असकर जाहि निरासे कित पल फिक्के फुल भक्त बके काम न आवे पत मिटत नीवी नानका गुण जंगियाईया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोय तर तारा जू तो लिये निवे सो गोरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिल गाहे शीश निवाए क्या थी है महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिल पूजस बगुल समादन मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहार विचारंग गल माला तिलक लीलाटं गल धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सफोकड़ निश्चो कर्मं को नानक निचो त्यावे बिन सदगुरु वाटना

बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पात साहि दसवी प्रथम भगौती सिमरका गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाउ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जैस डठे सब दुख जाय एक बहादुर सिमरिया कर मौन दियावे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पात सहा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पात सहियां दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया सह साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया देख चलाई तेग वाही देख के अनदिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़ारिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोला जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखिया रियायत देग तेग पते बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान परोसा दान दाना

ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ।

पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शबद चौंके आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु आपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बगसना सब भावनामा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देगा हाजर है दर प्रवान होवा प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

Mommy!

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंहखा सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस वॉइस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु निकिरा आहिनि। थोरी देर में तव्हां हमेशह भगत कौराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे एपिसोड 138 जो सिंधी दर्श में ॿुधंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। या त असांजे प्रोग्राम जी विछोड़ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो। हींअर छो त भगत कौराम साहब खे ॿुधूं।
1: Hari Ram।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे एपिसोड 138 जो सिंधी तर्जुमो।
0: मुझे प्यारा देशवासियों नमस्कार। मन की बात जे सितंबर महीने में एक दफो बीहर तवा सा मिलने जो मौको मिलो आए। मैं देशवासियों जी आजा क्या थो मन की बात में असा देशवासियों जे शफी कारवाइन देश जे हासिलातन बाबत गालाइंदा आयो। भारत जी एक हासिलात 10 साल पूरा करण वाली है सा है सर्जिकल स्ट्राइक। 10 साल पहरी 28-29 सितंबर 2016 ते भारतीय फौज पाकिस्तान जे दहशत अंगेज ठिकाणन ते सर्जिकल स्ट्राइक कई हुई। असा जे बहादुर सिपाही जै तरीके से एलओसी पार करे दहशत खिलाफ कार्रवाई कई तैंखे डिसी पूरी दुनिया हैरत में पैजी वही। सर्जिकल स्ट्राइक डंके जे चोट ते दुनिया आडो दहशत खिलाफ भारत जे पॉलिसी के पधरो कयो। भारत लंबे अरसे ताई दहशत अंग्रेजी जे दुख के सठो आए। सर्जिकल स्ट्राइक इन दुखन खिलाफ असांजी फैसलेदार कार्रवाई हुई। गुजल एक डाके दौरान बालाकोट जे हवाई हमलन खां वठी करे ऑपरेशन सिंदूर जरिए भारत वर वर साफ न्यापो डिनो आहे त जेकॾहिं दहशतगर्द भारत ना अख खणी ॾिसंदा त खेन मुंह तोड़ जवाब डिनो वेंदो। साथियों लंबे अरसे ताई भारत दहशत के अजाब के मुंह डिनो को वक्तो जड भारत में सीरियल ब्लास्ट थियण आम रवाजी गाल हुंदी हुई। साल 2008 में 13 सितंबर ते दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट में घणाई मासूम मानू मारजी विया। कुछ अरसे बाद बम्बई में 26-11 ते वसी हमलो थियो। साथियों पहिरीं बि असीं दहशत हमले खां पोइ पाकिस्तान ते कार्रवाई करण जी घुर कंदा हुआसीं पर अञा ते केरु ध्यान कोन ॾींदो हो। वक़्त गुज़रण जो इंतज़ार कयो वेंदो हो पर भारत दहशत खिलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस जी पॉलिसी

हली रहा है एने जा नतीजा साफ दिसण में अची रहे हैं। साथी अनुसार 9/11 हमले जा 25 साल पूरा थिया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन मासूम मानन जो जानी वयू तिन में अमेरिका वासन खां पोए घनी तादाद में भारतीय शुमार हुआ। मुझे याद आए 2014 में जडे मां प्रधानमंत्री थियण खां पोए अमेरिका वियोस उते न्यूयॉर्क में बेगना मानन के मु श्रद्धांजलि डिनी। अज मां एक भेरो बीहर करोड़े भारतीय तरफा मुतासिर कुटुंबन ना पैंजी हमदर्दी जाहिर करया थो। मुझे प्यारा हमवतनी साथियों हर वक्त देश में एक वड़ी तस्वीर तैयार थी रही है जिनमें तवा तवा जो कुटुंब ए आसे पासे जा मानु पिण आहिन। मां गाल तो करया भारत में आदमशुमारी गणप जी। देश जे सबनी सूबन ए मरकजी इलाकन में गणप जो पहरियों दौर पूरो थी चुको आए। 30 करोड़ खां भी वधिक परिवार की जान शामिल थी चुकी है। इन वक्त लद्दाख हिमाचल प्रदेश जम्मू ए कश्मीर ए उत्तराखंड के डुखन ए बर्फीली इलाकन में कार्रवाई हली रही है। उतां घणे उत्साहिंदड़ आज़मूदा असां जे अची विया आहिनि। उत्तराखंड में आदमशुमार जी गणप चमोली जे माणा ॻोठ मां शुरू थी जंहिंखे भारत जो पहिरियों ॻोठ करे चयो वेंदो आहे। माणा में सभ खां अवल 83 वरनि जे पुरो मां रावत शुरूआत कई। उत्तरकाशी जे भगोरी ॻोठ में होम स्टे हलाईंदड़ हरदेव सिंह राणा डिजिटल चैनल ज़रिए पंहिंजी ॼाण दर्ज कराई। दोस्तो आदमशुमारी के गणप जो कम असांजी कौमी जिम्मेवारी आहे। 15 अगस्त से सभी देशवासियों के अपील कई तो पैंजो वक्त कढ़ी पाने गणप लाए मालूमात जमा कराए सकन था। या कार्रवाई सवली आए तवा पैंजे मोबाइल जरिए जान वंडे सको था। या सहूलत हिंदी भाषा का अलावा बन सोरन भाषा में मौजूद आए। इन तवा के वेबसाइट se.censes.gov.in ते वही मोबाइल जरिए लॉग इन करे पैंजी कुटुंब जी ए पैंजी जान भरे सबमिट करनी आए। लगभग 15-20 मिंट लगंदा ए को भी डॉक्यूमेंट अपलोड कोन करणो आए। सबमिट कंदे एक आईडी नंबर मिलंदो जेको तवाखे आदमशुमारी गणप कंदड़न पारा घर अचण ते शेयर करणो आए। तवा पारा डिनल जान जी पक थियण खां पोए या मालूमात सेंसस जो हिस्सो बणजंदी। साथ ही हेर ताईं 2.60 करोड़ खां बि वधीक माण्हुनि वेबसाइट ते वञी पाण खे सेल्फ रजिस्टर कयो आहे। तवा जो थोड़ो वक्त देश लाए घनी अहमियत रखे तो तवा पारा वंडियल सही जान देश जे मुस्कबल जे बेहतर तस्वीर के तैयार करण में मदद दीदो। मेरे प्यारे देशवासियों 27 सितंबर की तारीख घनी अहमियत रखे थी। 27 सितंबर एक अड़ी शख्सियत जो 100 जन्म ढी है जै सकाफत समाज ए देश लाए पैंजी जिंदगी अर्पण कई। गाल कर रहे विश्व हिंदू परिषद के अगुणे आलमी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मानवर स्वर्गवासी अशोक सिन्हल जी। 27 सितंबर 1926 ते आगरा में संदस जन्म थो। राम जन्मभूमि आंदोलन के उन जेका राह ए ताकत डिनी अज उन जो नतीजो आए अयोध्या में शानदार मंदिर। मुझे खुशकिस्मती है जो न फकत मु संदस जिंदगी के वेझो खां डिठो बल्कि इन मिशन में पण शामिल थियण जो मौको मिलियो। मां जॾहिं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जी रस्म में शामिल थी रहियस तो मुखे वर वर अशोक जी याद अची रहा हुआ। साथियों अशोक जी के घणे खासियतन बाबत चर्चा को थी आए। राम मंदिर के आंदोलन से गडोगड उन समाजी बियाई ए तफावत खिलाफ एक वड़ी जंग जोटी हुई। संदस जन्म एक खुशहाल परिवार में थो। संदस पी एक सिविल ऑफिसर हो। संदस घणा भार भेनरू वडन उहिदन ते हुआ। वो पाण भी IIT BHU मां ग्रेजुएट हो पर पोए भी उन पैंजी जिंदगी समाज ए संस्कृति लाए अर्पण कई। यहां महान शख्सियत की सुणप होंगी है। मां संदस जन्म सदी के मौके ते संदस करोड़े चहितन पारा प्रणाम तो करें पैंजी तरफा श्रद्धा सा श्रद्धांजलि तो दिया। मुझे प्यारा हम वतनी साथियों इन साल की शुरुआत असांजी खुददारी के एक उत्सव से थी। सो हो सोमनाथ खुददारी उत्सव अज का 1000 साल अवल साल 1026 में मोहम्मद गजनी पहरे भेरो सोमनाथ मंदिर के तहस नहस कयो। जिन सोमनाथ मंदिर के तहस नहस करे भारत जी सुणप के मिटाने जी कोशिश कई अज संदन को भी वजूद ना है। सोमनाथ मंदिर पैंजे पूरे शानो शौकत से समुंड के किनारे भारत जी अमरता के आशीर्वाद दई रो है। असा पूरे फख्र से सोमनाथ खुददारी उत्सव मल्हायो। साथियों आज मन की बात प्रोग्राम में इन की बीहर चर्चा कर रहा है तीन एक खास गाल है। साल 2026 में जडे गजनी सोमनाथ मंदिर के तहस नहस कर 19 साल गुजरात में मोढ़ेरा में मशहूर सूर्य मंदिर ते पण हमलो थियो जैंखे तहस नहस कयो वियो। यानी मोढ़ेरा मंदिर के तहस नहस करण के अज 1000 साल पूरा थिया। उन वक्त उन मंदिर के तैयार थे महज 1 साल थियो हो।
ईस्वी सन 1025 में

राजा भीमदेव इन मंदर खे तयारु कयो हो। साथी तव्हां उन दौर जो सोचियो जॾहिं उन वक़्तु सोमनाथ मंदर ते एतिरो वॾो हमिलो थियो त उन हुकूमत जी हालत कहिड़ी थी हूंदी और समाज जो मनोबल कीअं न टुटी पियो हूंदो। पर राजा भीमदेव न फ़क़त गज़नी जो मुक़ाबलो कयो पर थोरे अरसे जे अंदरि मोढेरा सूर्य मंदर खे ॿीहर खां तयारपण करे वरितो। इन हिमत ऐं साबित कदमी सबब सोमनाथ मंदर पिण बार बार टुटण जे बावजूद बि ॿीहर तयारु थींदो रहियो। साथियो, मोढेरा सूर्य मंदर ते पोइ बि हमला थींदा रहिया। पोइ अलाउद्दीन खिलजी हिकु भेरो ॿीहर इन मंदर खे टोड़ियो, पर पोइ असां भारतवासी सिज जी पूॼा न फ़क़त वासु ऐं मंदर जे ज़रिए कंदा आहियूं, पर सिज जी पूॼा जो हिकु मतिलबु इहो पिणु आहे रोशनी, तवानाई, इल्म ऐं साइंस ऐं लगातार अॻिते वधण जे उत्साह खे क़बूलण। तंहिं करे मोढेरा ॻोठ न फ़क़त सूर्य मंदर लाइ सुञातो थो वञे पर हिकु सोलार विलेज तौरु पिणु अॼु भारत जो पहिरियों ॻोठु आहे जेको पूरी तरह सां शमसी तवानाई ते हले थो। देश ॾाढो सस्टेनेबिलिटी जो हिकु बहितरीन मिसाल क़ाइमु कयो आहे। मोढेरा में सैलानियुनि लाइ घणाई घुमण जा हंधि आहिनि। जनवरी महीने में मकर संक्रांति खां पोइ उते मोढेरा डांस उत्सव थींदो आहे, जंहिं में भारत जी संस्कृति ऐं क्लासिकल डांस खे पेश कयो वेंदो आहे। मां चाहींदुसि त तव्हां हिकु भेरो ज़रूर मोढेरा ॻोठ जी यात्रा कयो ऐं भारत जे गौरवशाली विरासत जो दर्शन करियो। साथियो, माज़ी सां असांजो लाॻापो अॼु बि तमामु घणो ज़िंदा ऐं मज़बूत आहे। तंहिंजे पुठियां उन्हनि माण्हुनि जी महिनत ऐं वक़्फ़ आहे जेके हिन लाॻापे खे वधीक पुख़्तो बणाए रहिया आहिनि। तमिलनाडु जे तिरुचिरापल्ली जे मनपराई में हिकु अहिड़ी कार्रवाई थी रही आहे। हिन कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज़ सां लाॻापियल ए सेल्वराजू इन कोशिश खे अॻिते वधाए रहिया आहिनि। हिकु लेक्चर दौरान हिकु शागिर्द खे कुझु कदीम मूर्तियुनि बाबति खे ॼाण ॾिनी। इन चर्चा खां पोइ हुन हिकु फील्ड विज़िट जो प्लान कयो। हुन यात्रा दौरान खेनि अलॻि अलॻि हंधनि ते घणियूं मूर्तियूं मिलियूं ऐं प्राचीन मंदर पिण मिलिया। माज़ी सां जुड़ण जी इहा हिकु बहितरीन कोशिश आहे। इन तरह असीं पंहिंजे विरसे खे बहितर नमूने सां सुञाण था सघूं। देश जे ॿियनि हिसनि में अहिड़ियूं कोशिशूं करे सघजनि थियूं जेके असांखे पंहिंजे तारीख़ खे वेझो ॾिसण ऐं समझण जो मौको मैसर कराईंदियूं। मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथियो, जल्दी असां 2 अक्टूबर ते पूज्य गांधी जी जी जयंती मल्हाईंदासीं। बापू जी असांजी ज़िंदगीअ में घणाई मंत्र ॾिना, तंहिंमें हिकु मंत्र आहे सफ़ाई जो। असां अक्सर पंहिंजे आसे पासे सफ़ाई सां वाबस्ता घणियूं कोशिशूं ॾिसंदा आहियूं जेके उत्साह वधाईंदियूं आहिनि। सोशल मीडिया ते अहिड़ियूं घणियूं तस्वीरूं, वीडियो ऐं रील्स असांजो ध्यानु पाण ॾांहुं छिकाईंदा आहिनि। मध्य प्रदेश में कुझु नौजवान नदी जी सफ़ाई करे रहिया, सदनि कोशिशुनि में सदनि पूरो समाज जुड़ी वियो। सही तरह आंध्र प्रदेश में नौजवाननि पुराणनि खूहनि ऐं बावड़ियुनि जी सफ़ाई कई, जंहिं सां असांजी पुराणी सकाफ़त तंहिंखे सुधारण जो हिकु कमु थी रहियो आहे। मुंबई में कुझु नौजवान समुंडी किनारनि खे साफ़ रखण जी कोशिश कई। हर हफ़्ते कंहिं न कंहिं बीच ते वञी सभई नौजवान यकमुश थी करे सफ़ाई कंदा आहिनि। दिल्लीअ में ॿार ऐं नौजवान माण्हुनि खे कचरो अलॻि अलॻि रखण लाइ हिमथाए रहिया आहिनि। ओलह बंगाल में नौजवान शागिर्द ऐं मकानी माण्हू गॾिजी मिली करे पिकनिक वारनि हंधनि ऐं बाज़ारनि जी सफ़ाई करे रहिया आहिनि। साथियो, इन्हनि सभिनी कोशिशुनि में हिकु ॻाल्हि साफ़ आहे त शुरूआति हिकु शख़्स कई, पोइ उन सां गॾु ॿिया माण्हू जुड़ी विया ऐं पोइ काफ़िलो अॻिते वधंदो वियो। इहा ई त आहे अवामी भाईवारी। गांधी जी ॾांहुं असांजी सभ खां वधीक बहितरीन श्रद्धांजलि सफ़ाई आहे। मुंहिंजा प्यारा देशवासियो, जॾहिं असां माहौल जी हिफ़ाज़त कयूं था त फ़क़ति को ॿूटनि वणनि या जानदार खे नथा बचायूं, पर ज़िंदगी जे सॼे निज़ाम खे पुख़्तो था बणायूं। देश जे अलॻि अलॻि हिसनि में थींदड़ कोशिशूं इन जज़्बे खे तमामु सुहिणे नमूने असांजे आॾो आणे रहियूं आहिनि। साथियो, आसाम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आहे। हिकु दौरो जॾहिं इहो हाथियुनि जो ठिकाणो हूंदो हो, पर पोइ जंगल जी ज़मीन ते इंसानी दख़ल अंदाज़ी सबब हाथियुनि इन इलाइक़े खे छॾे ॾिनो। 3 साल अवल इन ज़मीन खे कब्ज़े खां रिहा करायो वियो ऐं इन जा अद्भुत नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि। जंहिं इलाइक़े में हाथियुनि जी चौपड़ ॾिसण में कोन ईंदी, अॼु उते हाथियुनि जा वलर नज़र अची रहिया आहिनि। साथियो, आसाम में हिकु ॿी अहिड़ी कोशिश थी आहे, सा हिकु नंढे जीव सां वाबस्ता पैडमी हॉक खे बचाइण जी। हुननि वजूद ते ख़तरो पैदा थी वियो ऐं सदन तादाद वञी फ़क़त 6 बचियो। अहिड़े वक़्त ते खेनि बचाइण लाइ हिकु कंज़रवेटिव प्रोग्राम शुरू कयो वियो। वरी खां खेनि जंगल में थाइको कयो वियो। सदन रहाइश लाइ गाह वारनि मैदाननि जो तादादु पिणु वधायो वियो ऐं इहे प्रोग्राम सबबि अॼु सदन तादादु 190 खां बि वधी चुको आहे। दोस्तो, फितरत सां असांजो रिश्तो फ़क़त संभालण ताईं महदूद कोन आहे, पर घणाई भेरा असां जॾहिं फितरत खे संभालींदा आहियूं त इहा कुदरत असांजी ज़िंदगी जो सहारो बणजंदी आहे। ओलह बंगाल जे सुंदरबन में कुझु औरतूं इन्हीअ मिसाल खे

पेश कर रही हैं। झारखंड जो ए औरतों मैंग्रोव सा जंगल तैयार कर रही हैं। इन मां घणनी मुड़सन जा औरत बगड़ जे हमलन में फौत थी विया हैं। मुड़सन के वजण का पोए भी इन्हन औरतन के सुंदरबन में ही पैंजे रोजगार जो सहारो मिल रो है। सघन पारा लगायल मैंग्रोव अज गोठन लाए एक कुदरती सुरक्षा ढाल बणजी वही है। मैंग्रोव मां खेन उपत पण थी वही है। साथियों अचो तो माहौल के बचा डूं कुदरत के तौजन की इज्जत करूं ए अनेकता के सुरक्षित रखूं। असांजी हर का कोशिश ईंदड़ पीढ़ी ना असांजी जिम्मेवारी है। मेरे प्यारा हम वतनी साथियों ताजे देश में लखे नौजवान नशे के खिलाफ ए ड्रग्स के खिलाफ एक अहम वायदो किया है। नौजवान पान के नशे का दूर रखने जो कसम खो है ए न्यापे के बेन तई पहुंचाने की जिम्मेवारी पण खई है। यह सभी कार्रवाई थी रही है नशा मुक्त युवा अभियान तहत। यह कार्रवाई सौ हफ्ता हलंदी ए इन में माए भारत जा वॉलंटियर्स पिण शुमार आन एन एस एस सा शुमार असाजा नौजवान पिण इन जो हिस्सो आन। इन अलावा स्कूल ए कॉलेज ए यूनिवर्सिटी जा नौजवान पिण आन। गडो गड समाजी ए रूहानी इदारा पिण इन मुहिम से शुमार आन। बिजल कुछ डी दौरान पूरे मुल्क भर में वायदो खाने जो कार्रवाइयों ए सुजागी जो कार्रवाइयों थी आन। इन कार्रवाई में एक गाल मुख्य तमाम घनी सुठी लगी सो आए नशा मुक्ति जो न्यापो असाजा नौजवान पैंजी भाषा में पैंजे तरीके से इन न्यापे के अगते वधा रहा है। वो मन की बात जरिए नौजवान के अपील कई हुई तो वो पैंजे क्रिएटिविटी जरिए इन अभियान से जुड़न ए मुख्य खुशी है तो हजारे नौजवान इन कार्रवाई से अगते वधी आन। माई भारत ते एंथम स्लोगन राइटिंग ए नुक्कड़ नाटक जड़ियों अलग अलग कार्रवाई कर रहा है। सही तरह सोशल मीडिया से असाजा नौजवान नए नशा मुक्त युवा मौजो तहत पैंजो क्रिएटिव कंटेंट वंडे रहा यानी कि न्यापो भी नौजवान जो जरियो भी नौजवान जो इन अगते वी वन की ताकत पिण नौजवान की है। इन वक्त में इन अभियान तहत हेल्थ चेकअप ए ध्यान शिविर लगाया वा। साथियों जल्दी असाजा घणा त्योहार ए उत्सव अचान वारा इन भेरे उत्सव की खुशियों में असाजे आसे पास दिसण घुर्जे। जैसे को नौजवान गलत आदत ना वधी रो है तो असा साणस गाल करण घुर्जे ए नशे का बाहर निकरण की कोशिश कर रो है तो असा खेस साथ दियण घुर्जे। नशे का आजा नौजवान ए विकसित भारत अचो तो इन वायदे के असि सभी गड़ी कर अगते वधायू। मुझे प्यारे देशवासियों इन भेरे मु लाल किले ता रांदिन जे लाए टैलेंट हंट अभियान जो ऐलान किया हो। भारत लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दई रो है तं कर असा गोठन ए दूरान इलाकन में वही स्पॉटिंग टैलेंट गोल्ण घुर्जे। सभी वक्त अड़ा मानू पिणा जिन इन कम ला पान के डेडिकेट किया है संदन पैशन है टैलेंट के गोल्ण। पंजाब में यो कम राजेंद्र सिंह कर रो है। राजेंद्र सिंह जो नालो सीनियर से जुड़ियल है। 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड बिलो खटण वाली टीम जो हिस्सो हो। 1982 के वर्ल्ड कप में पिण छो रो। साल 2001 में भारत पहरियों भेरो मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप खटो। साल 2003 में देश सीनियर एशिया कप टाइटल हासिल कर। इन बिन्हीं रांदिन में उन कोच की भूमिका अदा कई। हाँ वो राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी जरिए पैंजे पैशन के अगते वधा रो है। संदस कोशिशन से गोठन में नयू हॉकी एस्ट्रोट्रफ्स तैयार थी रही है। राजेंद्र जो मकसद साफ है गोठन में अड़न बारन की सुणप करण जिते कोचिंग फैसिलिटीज घट है। संदस कोशिशन से घणा ही रांदीगर भारत के जूनियर ए सीनियर लेवल ते पैंजी जाय तैयार कर रहा है। राजेंद्र सिंह के इन कोशिशन ए लगन की जेतरी तारीफ कजे सा घट है। मुझे प्यारा हम वतनी साथियों आंवला यानी कि आंवरो असाजे लाय सुतल है। घणन ही घर में इन मां खटाण ए मुर्बो तैयार किया। घणे माण्हू आंवरे जी रस पीअण पसंद कंदा आहिनि ऐं सियारे में चवनप्राश असां रोज वापराईंदा आहियूं। असांजा वॾा ऐं बुज़ुर्ग पीढ़ियुनि खां वठी करे असांखे आंवरनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि सननि गुणनि बाबति ॿुधाईंदा आहिनि। साथियो अॼु इहो आंवरो उत्तर प्रदेश जे प्रतापगढ़ में नवनि वजनि खे पैदा करे रहियो आहे। प्रतापगढ़ ऐं आंवरे जो रिश्तो तमामु क़दीम आहे। पीढ़ियुनि खां वठी करे तिहारी आंवरे की खेती कन्दा आहिनि ऐं आंवरे प्रतापगढ़ के एक मजबूत सुञाणप मैसर कराई है जेका औरतन ऐं कुर्मिन के नवा वज मैसर कराए रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जरिए आंवरे से वाबस्ता मकानी कारोबार के घणी हथी मिली रही है ऐं अज प्रतापगढ़ में आंवरे प्रोसेसिंग से वाबस्ता 100 यूनिट कम कर रहा है। तंहिंमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में औरतूं वॾो रोल अदा करे रहियूं आहिनि। अहिड़ी हिकु ग्रुप आहे देवगढ़ कमासी ॻोठ जी जंहिंमें सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप जूं औरतूं आवरे मां कैंडी मुरबो ऐं जूस तयार करे रहियूं आहिनि ऐं ओडीओपी प्रोग्राम तहत ॿियनि मार्केटनि ताईं सननि सामान पहुचण सबबि सननि उपति तमामु घणी वधी रही आहे।
अहिड़ी तरह विंध्यावासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप जूं औरतूं आवरे मां खटाण डाइजेस्टिव

0: पाउडर ऐं ॿियूं शयूं तयार कंदियूं आहिनि। इन्हनि औरतुनि खे प्रोसेसिंग लाइ मशीनरी मिली ऐं कर्ज़ पिणु मिलियो। मकानी वापार मेले में शामिल थियण जो मौको मिलियो ऐं ॾिसंदे संदनि उपति तमामु घणी वधी वई आहे। साथियो, असांजे देश जे हर हिकु हिसे में का न का ख़ासि कुझु ज़रूरु आहे। किथे को ख़ासि मेवो आहे त किथे का रवायती कारीगरी आहे त किथे को निरालो हुनर आहे। इन्हनि खूबियुनि खे अॻिते वधाइणु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट असांजी ज़िमेदारी हुअणु घुर्जे। त नंढनि ॻोठनि ऐं नंढनि शहरनि जी इहा सुञाणप फ़क़ति मक़ामी बाज़ार ताईं महदूद न रहे पर इहे मुल्क जे ॿियनि हिसनि ताईं पहुचनि ऐं दुनिया जे ॿियनि बाज़ारनि ताईं पिणु। इन सां वोकल फॉर लोकल अभियान खे हथी थी मिले, गॾोगॾु देश खे आत्मनिर्भर बणाइण में हिमथ पिणु मिले थी। ईंदड़ त्योहारनि ऐं उत्सवनि में असांखे वोकल फॉर लोकल मंत्र खे बिल्कुल न विसारणु घुर्जे। मुंहिंजे प्यारा देशवासियो, सेप्टेम्बर जो महीनो अज़ाई खोर ख़िलाफ़ जदोजहद जो वक़्तु पिण आहे। अज़ायत वारे महीने में मुख़्तलिफ़ शुबनि सां लाॻापियल माण्हू ऐं इदारा यकमुश थी नेक कम लाइ गॾु कम था कनि। हिन साल घणी सारा जोॻियूं कोशिशूं पिण शुरू कयूं वयूं आहिनि। छत्तीसगढ़ में हर घर मुनगा कार्रवाई शुरू कई वई आहे। इन ॾिस में अवाम खे पंहिंजे खाधे पीते में मोरंगिया खे शुमार करण लाइ उत्साह पियो वञे। गुजरात में मिलेट्स सां ताम ठाहिण जी कॉम्पिटिशन शुरू कई वई आहे। इन कॉम्पिटिशन ज़रिए सस्ते ऐं न्यूट्रिशन सां भरपूर खाधे पीते खे हिमथायो पियो वञे। हींअर ताईं 2 लख खां बि वधीक माण्हुनि इन कॉम्पिटिशन में हिसो वरितो आहे। महाराष्ट्र में पिण इन ॾिस में सराह जोॻी कार्रवाई थी रही आहे। टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर ऐं ॿारनि जा माउ पीउ पिण सुजाॻी अभियान में शुमार थी विया आहिनि। हिन साल माण्हुनि मिज़ोरम में गॾिजी करे न्यूट्रिशन वाटकान जी सार संभाल लहण शुरू कई आहे। इहा कार्रवाई मिज़ो समाज जे तरो मड़ यना सां लाॻापो रखे थी, जंहिंजी माना आहे निस्वार्थ सेवा ऐं ॿियनि जी मदद में हमेशह अॻियां रहण। इहे कोशिशूं सराह जोॻी आहिनि। मूंखे आंगनवाड़ी केन्द्रनि सां वाबस्ता जुड़ियल सभिनी माण्हुनि ते फ़ख्रु आहे जेके इन कार्रवाई जो हिसो आहिनि। इहे आंगनवाड़ी मर्कज़ हाणे न्यूट्रिशियस ट्रैकर सां डिजिटली शुमार थी विया आहिनि। इनमें 9 करोड़ फ़ाइदो वठंदड़ रजिस्टर थी चुका आहिनि। तंहिंमें ॿार, पेट सां औरतूं ऐं खीर पीआरींदड़ औरतूं आहिनि, मायरूं आहिनि, जंहिंजी बहितर नमूने सां सार संभाल लही पई वञे। अज़ाई खोट ख़िलाफ़ इन जदोजहद खे असांखे अॻिते वठी वञणो आहे ऐं पंहिंजे समाज खे अज़ाई खोट खां मुकमल तौर आज़ाद कराइणो आहे। साथियो, हिन महीने असां पूरे श्रद्धा ऐं उत्साह सां गणेश उत्सव मल्हायो आहे। देशभर में पूरे भक्ति भाव सां गणपति बप्पा जी आजियां कई वई। इन पवित्र मौके सॼे माहौल खे उमीद ऐं ख़ुशी सां भरे छॾियो। साथियो, विघ्नहर्ता भॻवान श्री गणेश इल्म, ॾाहिप ऐं नेक कमनि जे शुरूआत जी अलामत आहे ऐं भॻवान गणेश न अकेलो फ़क़ति भारत में न पर परॾेह में पिण आहे। असां थाईलैंड जे श्री पंथोन शिरखानोन जो मिसाल था खणूं, जिते भॻवान श्री गणेश जी पूॼा खला फिकानेत जे रूप में कई वेंदी आहे। जॾहिं हू महस 19 सालनि जो तॾहिं खेसि संदसि पिता भॻवान श्री गणेश जी हिकु फोटो सौगात तौर ॾिनी हुई। हुन खां वठी भॻवान श्री गणेश में संदसि अकेलो वधी वियो। हुन भॻवान श्री गणेश सां लाॻापियल रवायतुनि जे अभ्यास में 4 ॾहाकनि खां बि वधीक वक़्तु ॾिनो आहे ऐं हुन नेपाल ऐं भारत समेत एशिया जे घणनि मुल्कनि जी यात्रा कई आहे। महाराष्ट्र सां संदसि ख़ासि लाॻापो आहे। अष्टविनायक परंपरा जी ॼाण हासिल करण लाइ हू घणाई भेरा हिते अची चुको आहे। संदसि कोशिशुनि सबबि थाईलैंड जे श्रद्धालुनि में अष्टविनायक यात्रा तमामु घणी मशहूर थी वई आहे। 2002 में हुन उत्तरी थाईलैंड जे चियांग माई में गणेश हिमालय म्यूज़ियम बर्पा कयो। अॼु हिन में 10,000 खां बि वधीक गणेश जूं मूर्तियूं आहिनि। जेके श्रद्धालु भारत नथा अची सघनि उन्हनि जे लाइ अष्टविनायक जूं मूर्तियूं पिण उते मौजूद आहिनि। हिते हर आरितवार जो सुबुह जो 10 वॻे गणेश जी पूॼा आरती थींदी आहे। गणपति सां लाॻापियल ख़ासि मौक़नि ते अनुष्ठान पिण थींदो आहे। तंहिं मां पतो थो पवे कि भारत जो अक़ीदो, कला ऐं संस्कृति ॿियनि देशनि में पिण घणी मशहूर आहे। मुंहिंजी शुभकामना आहे त गणपति बप्पा जो आशीर्वाद हमेशा सभिनी ते बरक़रार रहे। साथियो, मन की बात जे हर हिकु एपिसोड खां पोइ मूंखे घणनि ई मौज़ुनि ते तव्हां जा पैगाम मिलंदा आहिनि। इन तरह तव्हां पंहिंजियूं उत्साहींदड़ कहाणी मूंखे मोकिलींदा रहियो। पंहिंजे आसे पासे थींदड़ अहिड़ियुनि कोशिशुनि जी तव्हां तारीफ़ कयो, जीअं सननि मनोबल वधे। मन की बात ज़रिए सननि ॼाण असीं देश जे ॿियनि हिसनि में ॿियनि माण्हुनि खे हिमथाइण लाइ मोकिलियूं था। यात्रा तव्हां जे सहकार सां लगातार अॻिते वधंदी रहे थी। तव्हां ईंदड़ त्योहार पंहिंजे परिवार ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां पूरे ख़ुशीअ ऐं उत्साह सां मल्हाईंदा। मां तव्हां सभिनी खे हिकु भेरो ॿीहर शुभकामनाऊं थो ॾियां। तव्हांजी घणी घणी महिरबानी। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे एपिसोड 138 जो सिंधी तर्जुमो ॿुधरिया। ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक जा 10 साल पूरा कया। प्रधानमंत्री श्री

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हिंसर असाज प्रोग्राम जो वक्त परोसी रो है वरी असा मुलाकात हिंदी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक साढ़े छह अंगे तेसी तीन इजाजत सदाई कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट के एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन

0: संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रूपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहर सिंह को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था जो पाकिस्तान में है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India marks 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28, 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control LOC in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. The government noted that the resolve shown in 2016 laid the groundwork for subsequent bold actions, including the 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025. In his Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC. Mr. Modi recalled how the world was astonished by the manner in which Indian soldiers crossed the LOC to take action against terrorism. Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples.
2: LOC ke us paar jaakar हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला

संगीत का कार्यक्रम में अभी आप लवली चंद्रा जी से भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।

दोस्तों, सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, सुबह हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद भी जगती है। तो चलिए, फिलहाल आज की शुरुआत तो हमने कर ही दी है और आपको एक ऐसे विचार के साथ हम छोड़े चलते हैं और ये गीत भी आगे सुनेंगे। हालात चाहे जैसे हों, हमें अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहने का साहस रखते हैं।

भी ऐसा समय भी आता है जब मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में रुकना नहीं चाहिए। याद रखिए, अगर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बढ़ नहीं रहा। जी हाँ, आपकी मेहनत भी अपना रास्ता बना रही है। हम खुद पर विश्वास रखें और एक कदम रोज आगे बढ़ते रहें।

दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपना समय है और अपनी मंजिलें हैं। जी हाँ, कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, यही असली सफलता है। अगर आज कोई सपना अधूरा है तो निराश मत होइए। सपने तब तक खत्म नहीं होते जब तक हम उन्हें देखना और उनके लिए मेहनत करना बंद नहीं करते।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है और अब वक्त है समाचार प्रभात का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत के पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट के एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के

0: जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
1: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वहीं इसके तहत 266 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5,000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवन प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसम्बर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपका स्मार्टफोन हो या है

समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज

0: दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे।

0: कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृहमंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर उसकी याद ताजा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहिरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ओडीआई में मर्दों की क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। अब खबरें तफसील से। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं सालगिरह मना रहा है, जिसमें दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी मुखालिफ पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम की थी। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पास दहशतगर्दों के लॉन्च पैड पर निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह कार्रवाई इसी महीने के शुरू में उड़ी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले का एक बराह रास्त और फैसला कुन फौजी जवाब थी, जिसमें 19 भारतीय जवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। यह सालगिरह कौम की दिफाई तदाबीर में एक दहाई के इर्तका की अक्कासी करती है। गुज़श्ता रोज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक ने कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई करने में भारतीय फौज के किरदार को उजागर किया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट के एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कारकुन अशोक सिंघल को खिराज-ए-अकीदत पेश किया है। एक अंग्रेजी अखबार में अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी एक यादगार उसूल की

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा से युगल गायन, जिसमें आपने सुना राग अलहिया बिलावल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आवर गेस्ट।

0: सुबगही प्रोग्राम के तहत अभी आपने परमिंदर कौर चड्ढा से शब्द सुना। डीडी वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ॉन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 28 सितंबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1887 में आज ही के दिन येलोस्टोन नेशनल पार्क में पहली बार आधिकारिक वन्य जीव संरक्षण और पर्यटक मार्गदर्शन के लिए आधुनिक आगंतुक केंद्रों की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसने वैश्विक पर्यावरण पर्यटन की नींव रखी। 2015 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन जयंती

0: और पुण्यतिथि है।
1: That's right. Today, the nation celebrates the 119th birth anniversary of the great revolutionary Shaheed-e-Azam Bhagat Singh today. It was on this day in 1907 that Bhagat Singh was born into village Banga in the Lialpur district of Punjab, which is now in Pakistan. More from our correspondent.
2: Bhagat Singh was born in a family of revolutionaries and was the second amongst seven siblings. He was lovingly called as Bhagamala, meaning the lucky one. He proved his name for the freedom of the country by sacrificing himself along with Rajguruji and Sukhdevji. A state-level program titled Jashn-e-Inqilab has been scheduled at Ludhiana Agricultural University to celebrate his birth anniversary by organizing cultural events. People are also visiting his native village Khatkat Kalan and Shaheed Bhagat Singh Nagar to pay their respects to the great son of the soil. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
0: Ek kavita.
1: Ji.
0: Main Grishm ki Tejasvita hoon. और गुठली जैसा छिपा शरद का उष्म ताप, मैं हूं वसंत में सुखद अकेलापन, जेब में गहरी पड़ी मूंगफली को छाट कर चबाता फुर्सत से, मैं चेकदार कपड़े की कमीज हूं, उमड़ते हुए बादल जब रगड़ खाते हैं तब मैं उनका मुखर गुस्सा हूं, इच्छाएं आती हैं तरह तरह के बाने धरे, उनके पास मेरी हर जरूरत दर्ज है, एक फहरिस्त में मेरी हर कमजोरी, उन्हें ये तक मालूम है कि मैं चुप होकर गर्दन कब लटका लूंगा, मगर फिर भी मैं जाता रहूंगा ही, हर बार भाषा को रस्से की तरह थामे साथियों के रास्ते पर, एक कवि और कर ही क्या सकता है सही बने रहने की कोशिश के सिवा। ये काव्य रचना है वीरेन डंगवाल की। आज पुण्यतिथि है वीरेन डंगवाल की। उनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्ति नगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि और वरिष्ठ पत्रकार थे। साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वीरेन डंगवाल अपनी शक्तिशाली कविताओं के साथ साथ अपनी जनपक्षधरता, फक्कड़पन और यार बाश व्यक्तित्व के चलते बेहद लोकप्रिय थे। आपकी मुख्य रचनाएं इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा स्याही ताल आदि है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और प्रमोद जी आज एक ऐसी गायिका का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके जाने से संगीत की दुनिया सूनी हो गई है, लेकिन उनके गाये गीत आज भी सदाबहार हैं।
1: लता मंगेशकर की बात
0: जी जी, जी आज जयंती है लता मंगेशकर की। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, गजल और भजन गाए। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा था। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती हैं। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत।

0: मनोज, एक मेरा बहुत ही एक फेवरेट गाना है, अजीब दास्तां है ये।
1: जी जी,
0: उसकी एक स्टोरी है, सुना दूं आपको?
1: हाँ हाँ, जरूर सुनाओ।
0: स्टोरी ये है मनोज कि एक्चुअली वो ऑल इंडिया रेडियो पर बैन हो गया था गाना, अजीब दास्तां है ये। तो आपको लग रहा हो कि बैन क्यों?

0: होगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं. तो उसका स्टोरी ये है कि उसी मूवी का दिल अपना और प्रीत पराई का एक और गाना है शीशा ए दिल, वो उसमें कुछ वर्ड्स थे जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको बैन कर लेते हैं. तो जो क्लर्क था, हेड क्लर्क था आकाशवाणी में, उसने गलती से वो जो रिकॉर्ड है उसपे एक साइड पे शीशा ए दिल था और उसके ऑपोजिट साइड में था अजीब दास्तां. उसने फाइल वर्क करते करते अजीब दास्तां को बैन कर दिया. तो क्वाइट एन अमेजिंग स्टोरी, बट हमारे पास वो गाना है, वो सुन लेते हैं.
1: जी हाँ.

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर इसकी याद ताजा कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्क गिर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सेहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ओडीआई में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। अब खबरें तफसील से। भारत की तरफ से किए गए सर्जिकल हमलों के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं जो दहशतगर्दी से लड़ने की नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी की एक नई मिसाल है। 2016 में 28-29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए थे। ये कार्रवाई उस महीने के आगाज में उड़ी दहशतगर्द हमले के जवाब में एक बराह रास्त और फैसला कुन फौजी कार्रवाई की गई थी जिसमें 19 भारतीय फौजियों ने अपनी जानें गंवा दी थी। हुकूमत ने कहा कि 2016 में जिस अज़्म का मुजाहरा किया गया उससे दिलेराना कार्रवाई की बुनियाद पड़ी। भारत की तरफ से जो दिलेराना कार्रवाइयां की गई उनमें 2019 का बालाकोट फिजाई हमला और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय फौज का वो रोल उजागर हो गया है जो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हमला करने में अदा किया था। जनाब मोदी ने याद किया कि किस तरह दुनिया हैरतजदा रह गई थी कि भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने का भारत का तरीकेकार पिछली दहाई में तैयार किया गया। उन्होंने इसके लिए बालाकोट हमले और ऑपरेशन सिंदूर की मिसालें दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कारकुन अशोक सिंगल को खिराज अकीदत पेश किया है। एक अंग्रेजी अखबार ने अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि अशोक सिंगल की जिंदगी एक यादगार उसूल की अक्कास है। दूसरों की फलाह बहबूद की कोशिश फर्द की जाती कामयाबी से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। जनाब मोदी ने कहा कि हफ्ते के रोज से मुल्क ने अशोक सिंगल की सालगिरह की 7 साल तकरीबात का आगाज किया है। वजीर आजम ने कहा कि अशोक सिंह ने समाजी इत्याद और मसावात को मजबूत बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिंगल को फिक्री वजाहत की ऐसी नेमत हासिल थी कि मुआशरे में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए और हर फर्द मसावी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। वजीर आजम ने कहा कि उनका एजाज था कि उन्होंने अशोक सिंगल के साथ बातचीत करने के बेशुमार मौके मिले। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। इसकी तस्दीक बैंक मुलाजमीन की ऑल इंडिया एसोसिएशन

आई बी ई ए ने की है। यह फैसला भारतीय बैंकों की एसोसिएशन आई बी ए के साथ एक मुआहदा तय पाए जाने के बाद किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में AIBEA ने कहा कि ये फैसला IBA और बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम UFBU के दरमियान एक मीटिंग के बाद किया गया। ये मीटिंग हड़ताल से मुतालिक मामलात के बारे में कल रात मुनाकिद की गई थी। मुल्क आज मुजाहिद आजादी भगत सिंह को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह की पैदाइश एक इनकलाबी घराने में हुई। वो अपने सात बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में प्यार से गगन वाला कहा जाता था, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मत। और उन्होंने राजगुरु जी और सुखदेव जी के हमरा अपनी कुर्बानी पेश करके मुल्क की आजादी में अपने नाम के इस मतलब को साबित किया। जश्न इनकलाब के उन्वान से आज लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक रियासी सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मुल्क के अजीम सपूत को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोग शहीद भगत सिंह नगर में उनके आबाई गांव खटकर कलां भी पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अपनी गैर मामूली शुजात और बहादुरी से भगत सिंह ने आजादी की तहरीक में नई जान डाली। भारत के इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त पर खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के जारी काम के लिए नई तारीखें मुकर्रर की हैं। दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त पर खसूसी तफसीली नजरसानी SIR का काम जारी है और इंतखाबी कमीशन ने दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर की है। नोटिस का मरहला या दावों और एतराजात को निपटाने का मरहला 30 नवंबर तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त अब 4 दिसंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर ने बताया कि कल कौमी राजधानी दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों की जगहों पर खसूसी कैंपों का एहतमाम किया कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ये कैंप फार्म 6 के जरिए नए वोटरों के इंदराज और दीगर इंतखाबी खिदमात फराहम करने के लिए लगाए गए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाने के अमल के जरिए लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आ रही है। मरकज ने सियाहत के शोबे के लिए एक कौमी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो सार्फिन को एक मुश्तरका डिजिटल जगह पर प्रोडक्ट्स और खिदमात की वसी रेंज तक रसाई के काबिल बनाएगा। सियाहत की वजारत ने नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की तामीर के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ हाथ मिलाया है, जिसका हदफ 2028 के इख्तिताम तक 23,000 सियाती तजुर्बात और होम स्टे को साथ लाना और उन्हें तलाश के काबिल एतमाद और बुकिंग के काबिल बनाना है। मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र शेखावत ने कल आलमी यौम सियाहत के मौके पर भारत मंडपम में मुनक़दा एक तकरीब में इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसमें अगले 2 दिन के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत भारत के शुमाल मशरकी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है।
मर्दों की क्रिकेट में कल रात तिरुवनंतपुरम में विराट कोहली और शुभमन गिल के शानदार सेंचुरियों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में जबरदस्त जीत हासिल की। विराट कोहली 139 रन पर जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 13 रन पर नॉट

0: रहे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर इसकी याद ताजा कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्की हड़ताल जो आज शुरू होने थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ओडीआई मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अखबार ज़रीन का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: दुनिया में हर चीज को अपना वजूद बाकी रखने के लिए एतदाल और तवाजुन की जरूरत होती है। अगर चीजों में मौजूनियत ना हो तो हर चीज का हुस्न मान पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर पेड़ पौधों को लीजिए, एक जिम्मेदार माली हसब मौका और हसब जरूरत उनकी तराश खराश करता रहता है। अगर वो कांट छांट न करे तो बाग का सारा हुस्न खराब हो जाए। हमारी इस दुनिया का हुस्न इंसानों की आपसी मोहब्बत और ताल्लुक में है। अगर ये मोहब्बत और ताल्लुक खत्म हो जाए तो दुनिया जहन्नम बन जाएगी। इस मोहब्बत और ताल्लुक का सबसे अहम नतीजा ये सामने आता है कि इंसान एक दूसरे के हुकूक पूरी तरह अदा करने लगता है। हुकूक का अदा करना इसलिए जरूरी होता है कि हर इंसान को उसके मकाम और मर्तबे और उसके रिश्ते नाते के मुताबिक एजाज और इकराम से नवाजा जा सके। हर इंसान चाहे वो बड़े से बड़ा हुक्मरान हो या माशरे का सबसे गरीब फर्द हो, हर एक इंसानी बुनियादों पर अपना एक मखसूस मकाम और मर्तबा रखता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी इज्जत नफ्स और खुददारी के मुताबिक उसको मकाम दिया जाए। किसी भी इंसान का ये मुतालबा गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसानियत के लिहाज से सबका अपना एक मकाम है। आज हम दुनिया में जो इंतशार देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान ने एक दूसरे के हुकूक मानने शुरू कर दिए। हर शख्स ये तो चाहता है कि उसके हुकूक पूरे तौर पर अदा किए जाएं, लेकिन दूसरे के हुकूक अदा करने को वो तैयार नहीं होता। हालांकि हमेशा से दुनिया का ये उसूल चला आ रहा है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसके लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी होता है। आप कभी गौर कीजिए कि दुनिया भर में अवाम अपने हुक्मरानों से और हुक्मरान अपने अवाम से क्यों परेशान रहते हैं। ऑफिस का बॉस अपने मुलाजिमों से और मुलाजिम अपने बॉस से क्यों शाकी रहते हैं। घरों में शोहर बीवी, सास बहू, भाई बहन, बाप बेटे को एक दूसरे से गिला शिकवा क्यों होता है। वजह साफ है कि सब लोग दूसरे से तो अपने हुकूक की अदाई का मुतालबा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर आयद होने वाले दूसरों के हुकूक को अदा करना नहीं चाहते। सच पूछिए तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल के नतीजे में घरों, दफ्तरों, खानदानों, मुल्कों और पूरी दुनिया में इंतशार है, जिसकी वजह से सब एक दूसरे से कटे हुए हैं। खुदा ने हमें हर एक के हुकूक मसावी तौर पर अदा करने का हुक्म दिया है। कुरान करीम में हर इंसान पर दूसरे इंसानों के हुकूक गिनाए गए हैं। ये हुकूक ऐसे मुतवाजिन और मोतदिल हैं कि अगर इंसान सही तौर पर इन्हें अदा करने लगे तो किसी को किसी से कोई शिकायत न रहे और ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाए। सवाल ये है कि सबसे पहले कौन अपने हुकूक अदा करने के लिए आगे बढ़ेगा। याद रखिए, अगर हम दूसरों से कहते रहे कि अपने हुकूक अदा करो तो कोई किसी के हुकूक अदा न करेगा। इसके लिए तो हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा और ये अज़्म करना होगा कि हम हर इंसान के तमाम हुकूक अदा करेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि ये इंसानियत की कामयाबी की तरफ पहला कदम होगा।
1: آپ سن رہے تھے اقبال زرین کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا مساوی حقوق, اور پیش کر رہے تھے جناب اجمل فاروق ندوی. 1071 کلو ہرٹز.

मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री देश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज की पेशकश में ए हरिहरन की आवाज में मिर्जा गालिब और फरहत शहजाद का कलाम समाप्त कीजिए और बेगम अख्तर से आप सुनेंगे सुदर्शन फाकिर और शमीम जयपुरी का कलाम।

उसने गजल प्रोग्राम में हरिहरन की आवाज में ये था अकबर हैदराबादी का कलाम। प्रोग्राम की अगली पेशकश बेगम अख्तर से सुनिए सुदर्शन फाखर और शमीम जयपुरी का कलाम।

0: लता जी, पहला गाना आपको याद है कि आपको पहला गाना?
1: बेगम अख्तर की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी, प्रोग्राम है हुस्न गजल।

0: वैसे महेंद्र कपूर जी भी हैं। ये हर कलाकार हमारे बहुत अच्छे गाते हैं, अलग अलग अपना ढंग है उनका। और गायिकाओं में मेरी बहन है जो एक अपना उसका रंग है, अपने रंग में वो बहुत बड़ी कलाकार है और बहुत अच्छा गाती है। नए कलाकारों में पानी जयराम है जिसका मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो नए कलाकार आए हैं ये कुछ अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे और मेहनत करके आगे आएंगे। और कुछ और आर्टिस्ट हैं जो लाइट म्यूजिक गाते हैं, उनके भी मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और मैं उनके रिकॉर्ड जरूर सुनती हूँ। और उसके अलावा जब काम से फुर्सत मिलती है तब मैं आपके उर्दू सर्विस के प्रोग्राम भी मैं सुनती हूँ, और खासकर आपके जो प्रोग्राम में जो वैरायटी है, अलग अलग तरह के जो इंटरव्यूज वगैरह आते हैं वो मैं हमेशा सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद आते हैं।
1: लता जी, आपकी जुबान से अपने प्रोग्रामों की तारीफ सुनकर बड़ा हौसला हमें मिला और ये एहसास हो रहा है कि मेहनत रायगा नहीं जा रही है। लता जी, उर्दू सर्विस सुनने वाले हजारों सामीन आपकी आवाज के दीवाने हैं, खासतौर से हमारे पाकिस्तानी सामीन तो आपकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं, आप उनकी महबूब गुलकारा हैं। वो किस कदर आप पर वाला व शैदा है उसका अंदाजा तो आप इस बात से कर सकती हैं कि अक्सर ऐसे खत हमारे पास आए हैं और सामीन ने हमें ये लिखा कि देखिए आप पास मौसीकी की आवाज की एक बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। और यहाँ तक इन्हीं लोगों ने लिखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ हो सकता है तो वो इस तरह दूर हो सकता है कि कश्मीर आप ले लीजिए और लता जी को हमें दे दीजिए।
0: ये उनका प्यार है और मैं तो कहती हूँ कि अगर वो इस तरह चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और वो जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी उन लोगों से प्यार करती हूँ और उनके हमेशा आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान यह एक ही हिस्सा समझती हूँ, और वहाँ के कलाकार जो हैं और यहाँ के जो कलाकार हैं, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वहाँ के कलाकार यहाँ आए, हमें मिले, हम भी वहाँ जा सकें, क्योंकि कलाकार के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं होता है और कोई पॉलिटिक्स उसके रास्ते में नहीं आते हैं।
1: लता जी, आपने अनगिनत नगमे गाए हैं, ये तो जाहिर है आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप ये हर नगमे को सुनाएं, या मैं आपसे ये कहूँ कि आप फला गीत गुनगुना दीजिए, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी पसंद के कुछ नगमे अगर चुन लें और थोड़े से तारुफ के साथ कुछ ऐसे नगमे जो आपको ज्यादा पसंद।
0: मुझे मेरे जो फिल्मी गीत पसंद है उसमें आजकल जो बीते ना बिताई रहना आर डी बर्मन का गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी के एक दो लाइन आपको सुना देती हूँ।

और एक अभिमान पिक्चर आने वाली है जिसके रिकॉर्ड शायद अभी तक आए नहीं है। उसमें एस टी बर्मन जी का म्यूजिक है। एक गाना है मेरा, मुझे एक दो ही उसके लाइन याद है, मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।

मैं अभी आपको एक बहुत ही पॉपुलर गाना सुनाती हूँ। इनके जो संगीतकार थे उन्होंने जब ये गाना बनाया था तो मुझे हमेशा कहते थे कि

कहता बेटा ये मेरा गाना बहुत चलेगा, पर मुझे बड़ा दुख है कि वो जो उनके जो म्यूजिक पॉपुलर हुआ है वो देखने के लिए वो बेचारे आज नहीं है। तो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: अब कुछ पुराने नगमे अगर आपको याद आ रहे हो, वरना सुनने वाले कहेंगे कि लता जी ने हमें अपने पुराने नगमे नहीं सुनाए अपनी पसंद के, तो कुछ पुराने गीत अगर आपको याद आ रहे हो।
1: अब मैं आपको एक बहुत ही मेरा पॉपुलर गाना सुनाती हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये गाना जब खेमचंद प्रकाश जी ने बनाया था तो इस गाने के खिलाफ सब लोग हो गए थे। जब ये पिक्चर रिलीज हुई कहने लगे क्या लंबा गाना बनाया है, इस गाने की वजह से पिक्चर हमारी फ्लॉप हो गई। और वो इतने बेचारे परेशान हो गए, उस वक्त वो बहुत बीमार थे। और जब ये गाना पॉपुलर होने लगा उस वक्त उनकी मौत हो गई। तो सुनिए।

0: मैं ये चाहूंगा कि आप अगर कुछ शेर की सुना दीजिए हमारे सुनने वालों को, क्योंकि आपने तो गजलें बड़ी खूबसूरत गाई हैं। गालिब के गजलों का एक एलपी जो आपके भाई की म्यूजिक में आया, उसमें भी आपके गजलें हमारे सुनने वालों ने बहुत पसंद की हैं। बहरहाल ये तो आप पर है कि आप क्या सुनाना चाहेंगे।
1: ये मुझे बहुत पसंद है और रघुनाथ को भी पसंद है, ये राग ही मुझे पसंद है, इसलिए ये गजल मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ।

0: लता जी, आप की आवाज और सावास का तमाम जादू और हुस्न हमारे सुनने वालों तक पहुंच रहा है। अब मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल आपसे और कर लूं आपकी इजाजत के साथ। कभी कभी आप फिल्म या देखती हो या रेडियो सुनती हो, क्या इन दोनों के लिए आपके वक्त निकल आता है? अगर आता है तो फिल्म में किस किस्म के हीरो आप पसंद हैं? हमारे अदाकारों के बारे में कुछ कहिए।
1: मैं फिल्म बहुत कम देखती हूँ, पर जैसे हमारे दिलीप कुमार हैं, वो मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं, अशोक कुमार और मोतीलाल जी, उनका भी मुझे काम बहुत पसंद था। मीना कुमारी जी मेरी सबसे बड़ी पसंद की कलाकार थी, और आजकल मुझे जया भादुरी बहुत पसंद है।
0: नया हीरो कौन सा पसंद है आपको?
1: मुझे धर्मेंद्र का काम अच्छा लगता है आजकल के
0: हीरो में। लता जी, आपके नूरजहां जो हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर मुगनिया हैं, उनसे आपके ताल्लुकात, आपकी दोस्ती बहुत मशहूर रही है, उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी?
1: जी हाँ, नूरजहां जी पहली मर्तबा मुझे कोल्हापुर में मिली थी जब मैं कुछ 15 साल की थी। मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ एक हिंदी पिक्चर वही प्रोड्यूसर बना रहे थे जिसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और मैं एक छोटी सी लड़की का रोल कर रही थी। जब मैं पहली मर्तबा उनको स्टूडियो में मिलने गई तो नेचुरली मुझे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इज्जत, और मैं उनका गाना बहुत ही पसंद करती हूँ, तो मैं एकदम चुप हो गई और वहाँ बैठी रही। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने आके कहा कि नूरजहां जी ये लता है और बहुत अच्छा गाती है, तो उन्होंने कहा भाई हम भी सुनेंगे। तो मैंने उनको एक क्लासिकल चीज जय जयवंती राग में सुनाई थी, तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी भाई मेहनत करो, अगर मेहनत करोगी तो तुम भी हमारी तरह सिंगर बन जाओगी। और वही मैंने उनकी बात याद रखी। मैं उसके बाद तो उनको ज्यादा मिल नहीं सकी। एक मरतबा मैं मेरे ख्याल से 1952 में उनको मिलने के लिए वाघा बॉर्डर गई थी, और हम लोग शायद एक आधा घंटा वहाँ मिल सके थे। उसके बाद फिर मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, पर उसके बाद हम लोग टेलीफोन पे वगैरह बातें करते थे, लेटर्स भी लिखते थे, और वो हमेशा मुझे बहुत मतलब प्यार करती रही है। और मैं उनको हमारे फिल्म म्यूजिक में भी उनके गाने सुन सुन के ही मैंने कैसे बोल कहने चाहिए ये सब मैंने सीखा है, और मैं उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। पाकिस्तान जाने के बाद तो मैंने उनके ज्यादा गाने सुने नहीं है, पर एक चन्नी उनकी पिक्चर थी उसके मुझे गाने बहुत पसंद थे, और दुपट्टा एक इंतजार पिक्चर थी उसके भी गाने बहुत अच्छे थे। पर जब वो हिंदुस्तान में थी तो एक श्याम सुंदर की पिक्चर थी, मुझे मालूम नहीं क्या उस पिक्चर का

0: नाम था, गांव की गोरी शायद, उसमें उनके दो चार गाने थे, वो मुझे बहुत पसंद थे।
1: पाकिस्तान के एक और गुलकार हैं मेहदी हसन, उनके बारे में ये आपसे मंसूब किया जाता है ये जुमला कि आप उनको बहुत पसंद करती हूँ। आपने कहा है कि उनके गले में भगवान बोलते हैं, उनके बारे में आपके पास क्या है?
0: उनकी तारीफ के लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, वो बहुत बड़े कलाकार हैं। मेरी सुबह उनकी आवाज से होती है और रात भी मैं सुबह उठ के उनका टेप सुनती हूँ, मुझे उनका गाना बेहद पसंद है। और मैं समझती हूँ कि गजल में इतनी बड़ी क्रांति और किसी ने नहीं की है, वो गजल में उन्होंने पूरा एक नया अपना ढंग लाया है, और वो जिस अंदाज से गजल गाते हैं मेरा ख्याल है और कोई नहीं गा सकता। ये उनका बहुत बड़ा पुण्य है कि वो मेरे गाने की तारीफ करती हैं। मैं तो अपने आप को सिंगर समझती नहीं हूँ, क्योंकि हम तो फिल्मों में गाते हैं और फिल्मी गाने वही होते हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं, हम लोग गा देते हैं, इसमें हमारा कोई अपना क्रिएशन नहीं होता है। मेहदी हसन मेरे हिसाब से बहुत ही ऊंचे कलाकार हैं।
1: आपने मेहदी हसन पाकिस्तानी गुलकार के बारे में जिन तासरात का इजहार किया, उनको देखते हुए मैं ये चाहूंगा कि आप कोई एक गजल जो आपको उनकी बहुत पसंद है वो गुनगुना दीजिए।

0: आखिर में मैं अब एक बहुत ही जाती सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ लता जी, अगर आप नाराज ना हो तो, वो ये है कि आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक?
1: शादी मैं तो ये समझती हूँ कि जन्म, शादी और मृत्यु, ये तीन चीजें जो है ये संयोग से होती हैं, इसको आदमी सोच के नहीं कर सकता है।
0: और ये आपकी इनायत है कि आपने उर्दू सर्विस को, बल्कि आपने वादा चूंकि किया था उर्दू सर्विस के लिए कि आप इंटरव्यू देंगे और आपने अपने उस वादे को पूरा किया, इससे मालूम होता है कि कलाकार को अपने वादे भी याद रहते हैं। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करने से पहले, मेरा ख्याल है कि हमारे सामने फिर एक बार ये इस बात के इंतजार में होंगे कि आप इस इंटरव्यू को अपनी आवाज पर, मुतर्रम आवाज पर खत्म करें।
1: आप 2 साल पहले बम्बई आए थे और आपने मेरा इंटरव्यू चाहा था, उस वक्त मैं बहुत बिजी थी और आपको मैं टाइम नहीं दे सकी, पर आज आपके साथ यहाँ बैठ के जो आपने मेरा इंटरव्यू किया है, इसमें मुझे बहुत ही मजा आया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे सब सुनने वालों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप विदाई लेने से पहले मैं एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ।

वीव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है फिल्मी नामों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर के गाए हुए नामे।

अनपढ़ फिल्म का नाम अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के प्रोग्राम में लता मंगेशकर के जन्मदिन के हवाले से हमने आपको सुनवाए उनके कुछ

0: आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर वो प्रोग्राम जो लाता है जवाब आपकी क्वेरीज का, आपके सवालों का। रोज एक नए विषय, नए विकार या फिर ये कहें कि एक अलग बीमारी पर चर्चा के साथ सवालों के समाधान का। तो आज का दिन हमने चुना है हियरिंग केयर फॉर ऑल, यानी सभी के लिए श्रवण संबंधी देखभाल। और इस विषय से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो ENT स्पेशलिस्ट हैं एम्स दिल्ली से, और मैं हूं आपके साथ RJ रश्मि। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार सर। हमारी सर पांचों इंद्रियों में से एक है कान, और इसी की वजह से, या ये कहें कि ये ही कान के होने से ही हम सुन पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ईश्वर की खूबसूरत नियामत से परिचित नहीं है, या किसी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो सुन नहीं पाते। तो आज के दिन हम, इससे पहले कि लिसनर्स के मैसेजेस शुरू हो हमारे साथ जुड़े, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि कान में किस तरह की तकलीफ होती है।
1: जी जैसे आपने बताया, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सुनाई ना देना या कम सुनाई देना। तो एक तो कान की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा कान में दर्द होना, कान से पस आना, या कान की वजह से कई बार चक्कर भी आते हैं। ये तीन चार सिम्टम्स हैं जिससे वजह से हमें पता चलता है कि कान के अंदर प्रॉब्लम है।
0: हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कुमार, एम्स दिल्ली के ENT स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर साहब, सुनने की क्षमता की यदि हम उनके कारणों की बात करें कि क्या कारण रहते हैं कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनके क्या रीजंस आप बताएंगे?
1: जी अगर हम इसको तीन हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें कि बच्चों में, एडल्ट्स में और ओल्ड एज में।
0: जी
1: तो बच्चों में एक जो मेन कारण है वो है कि जन्मजात होना, उसमें कि बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, और अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं। तो इसमें तो ये करना होता है कि सबसे पहले हम इसका पता लगाएं, और पता लगे जितनी जल्दी आप डॉक्टर में जाके इलाज कराएंगे उतना जल्दी बच्चा नॉर्मल सुन भी लेगा और बोल भी लेगा।
0: तो सर ये किस वजह से, मतलब हमें लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये कराना चाहिए, उसमें इलाज पूरी तरह से संभव है?
1: जी आजकल एक नई टेक्निक आ गई जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते या बोलते हैं उनमें किया जा सकता है, लेकिन एक ही इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जितनी जल्दी करें। जल्दी का मतलब है अगर हम विश्व में बाकी देशों में देखें जो विकसित है, वहां पे करीब 3 या 4 या 6 महीने पे कर देते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। हमारे यहाँ वही चीज होती है 4-5, 5.5 साल पे जाके। तो हमें उसको नीचे लेके आना है, तो हम ये बोलते हैं कि कम से कम एक बार जांच जरूर कर लें 1 साल से पहले, जिससे हम उसका इलाज करें और नॉर्मल बोले। इसके अलावा दूसरे कारण जो बच्चों में होते हैं कि मान लीजिए कि जो उसका जन्म हुआ लो बर्थ वेट है, उसमें बच्चे के इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हैं, या माँ का मेल न्यूट्रिशन है तो बच्चे तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, उसकी वजह से हो सकता है, या आयोडीन की कमी से जो थायराइड होता है बच्चों में उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन है, जैसे बार बार सर्दी जुकाम होना, उससे कान पर असर पड़ना, फिर कान में दर्द होना, और फिर पर्दा फट जाके पस निकलना, वो एक कॉमन कारण है। इसके अलावा जो थोड़े से बड़े बच्चे एडल्ट हैं, उसमें कान में वैक्स जमा होना, उसकी वजह से कम सुनाई आ सकता है।
0: सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, खासतौर पे जो बधिर हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, तो क्या उनसे उनके बच्चे में भी होने के चांसेस होते हैं?
1: जी जरूर होते हैं, लेकिन उसके लिए ये कहना कि सारी बधिर महिलाओं के बच्चे बधिर होंगे ये ठीक नहीं होगा। उसमें कुछ परसेंटेज में हो सकता है। तो हम ऐसे जो नव दंपत्ति हैं उनको बोलते हैं कि आप एक बार जेनेटिक काउंसलिंग कर लें, तो रिस्क करके बता देते हैं कि कितने चांस है बच्चे का नॉर्मल होना या बच्चे का मुंह और बधिर होना बच्चे का।
0: तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर हो जाता है?
1: जी वो आपकी काउंसलिंग कर देंगे और उसके हिसाब से फिर आपको वो बताएंगे कि कैसे अवॉइड करना है, और अगर जन्म हो तो उसके लिए क्या क्या करना है जन्म के बाद।
0: सर यहाँ कुछ सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी। मंजीत कुमार रामगढ़ झारखंड से लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको नमस्कार बोला है उन्होंने। उन्होंने बताया है कि मेरी उम्र 24 साल है और मेरा एक कान, बाएं कान की बात उन्होंने की है, उसमें कुछ भी आवाज आने पर दोबारा सुनाई देता है, जैसे कि सन सन की भांति आवाज सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है?
1: जी जैसे उन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि उनके एक कान की जो सुनाई की नस है उसमें डैमेज है, तो उसके लिए मैं ये चाहूंगा ये जाके एक ENT विशेषज्ञ को दिखाएं और सुनाई की जांच कराएं। अगर उसमें नस खराब है तो उसके लिए कुछ चीजें अवेलेबल हैं जिसमें हियरिंग एड है और कई बार दवाई भी देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है, खासतौर से अगर रिसेंट ऑनसेट है कि जल्दी में हुआ। अगर बहुत पुराना है तो फिर दवाइयों को तो उतना असर आता नहीं है, लेकिन आजकल मशीनें हैं और दूसरे तरीके भी हैं जिससे वो उनकी मदद हो सकती है।
0: तो सबसे पहले तो हम अपने सभी लिसनर्स को यही कहेंगे कि कोई भी यदि आपको परेशानी लग रही है, सुनने में कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले जाइए और अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो आपको बताएंगे कि आगे आपको कैसे करना है। एक मैसेज और आया है सर, हम तक लिखने वाले हैं अमिताभ कुमार मेरठ से, कहते हैं मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, कोई होम रेमेडी हो तो बताइए।
1: अपनी एज नहीं बताई है शायद हमें ना।
0: तो अमिताभ जी यदि आप हमें सुन रहे हैं तो अपनी एज भी लिखकर भेजिए ताकि बताने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। कोई भी लिसनर्स जो इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं, यदि अपने से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आप अपनी उम्र का ध्यान जरूर उसमें उम्र का जरूर मेंशन कीजिए ताकि डॉक्टर साहब सही सलाह आपको दे सकें।
1: ये जो हल्का सुनने में कमी के जो कॉमन जो कारण है उसमें से एक है कान के अंदर वैक्स होना, और अगर खांसी जुकाम होता है, हम सभी ने देखा कि कान ऐसे लगते हैं किसी ने ढक्कन लगा दिया दोनों तरफ से,
0: जी बिल्कुल,
1: बट वो टेम्परेरी है, जैसे आपको जुकाम ठीक होता है वो भी ठीक हो जाते हैं।
0: सर इन्होंने अपनी उम्र बता दी है, इनकी उम्र है
1: 37 यंग है, तो इसका मतलब एक बार इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल जो यंग एज में एक और चीज जो देखने में आ रही है वो आ रही है ईयरफोन लगा के, जो लोग सुन रहे हैं हाई वॉल्यूम पे, वो चाहे काम के लिए है या म्यूजिक सुनने के लिए है। लोग कई बार दूर दूर ट्रेवल करते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, और बाहर इतना शोर होता है, उसको काउंटर करने के लिए हम वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि जो ऐसा कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि जो एक सेफ वॉल्यूम है वो मैं बोलता हूँ कि 30-40% है जो टोटल वॉल्यूम का, उससे आगे ना बढ़ाएं। मान लीजिए टोटल 10 है तो वो 3 या 4 मैक्सिमम रखें।
0: तो ऐसा ही एक सवाल आया है और इन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल ये है, फैमिली फंक्शंस में और रोड पर व्हीकल्स में स्पेशली आजकल बहुत बाइक्स में भी सुनेंगे बहुत लाउड आवाज होती है, या व्हीकल्स में लाउड म्यूजिक सुनते हैं शादियों में, फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा, तो उसी से रिलेटेड है क्या ये प्ले करना, और इस तरह से इससे भी कान खराब हो सकते हैं?
1: जी बिल्कुल खराब हो सकते हैं, खासतौर से तब जब एक क्लोज एनवायरनमेंट में हो रहा है, जैसे हम डिस्को में गए हैं या फैमिली फंक्शन है, क्लोज रूम में हो रहा है जहां पे बहुत तेज स्पीकर चल रहे हैं और आप उनके पास ही खड़े हैं, तो अगर आपको चिल्ला के बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आसपास नॉइज बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां से तुरंत दूर होना है। अगर तुरंत दूर नहीं हो पा रहे हैं तो कान को अपनी दोनों उंगलियों से दोनों कान बंद करें और उसके बाद वहां से जितना जल्दी हो सके दूर चले जाएं, वरना क्योंकि दिक्कत यह है कि जो नॉइज या शोर और क्रैकर की आवाज से जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। अगर एक बार डैमेज हो गया तो वो दवाइयों से या किसी कोई मेडिसिन या कोई ऐसा नहीं है इलाज जिससे हम ठीक कर पाए, तो एक हियरिंग है जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहनी है और उसे हमें प्रोटेक्ट करना है।
0: ये सवाल था RS चड्ढा का, सुभाष नगर दिल्ली से। सर इसी में जैसे आपने बताया कि क्रैकर्स यानी कि पटाखों की आवाज से भी ये दिक्कत हो सकती है और ये दिक्कत परमानेंट हो सकती है, हम केवल व्हीकल्स में फैमिली फंक्शंस में नहीं, आजकल बच्चों को हेडफोन्स और ईयर प्लग्स लगाने का बहुत ज्यादा हो गया है और उसी से वो घंटों कई घंटे लगातार कान में लगाकर वो अपने या तो हाई वॉल्यूम पे अपना काम करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी वॉल्यूम जरूर कंट्रोल में रखें, ज्यादा वॉल्यूम होगा तो कान को डैमेज होगा। कान को कितने वॉल्यूम से डैमेज होता है ये कहना, इस चीज पे आप समझ सकते हैं कि जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं उसको अगर हम dB में नापते हैं इसका लाउडनेस ना, तो वो करीब 50 dB है। अगर हम एरोप्लेन में जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उसकी आवाज आ रही है वो करीब 120-140 dB है।
0: अच्छा,
1: उस पर अगर हम एक्सपोज करते हैं तो वो इमीडिएटली डैमेज हो जाएगा। ऐसे फायर क्रैकर है, अगर जैसे रूम के अंदर आपने क्रैकर चलाया और उसकी आवाज काफी तेज है तो कान का टोटल डैमेज हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया लाउडनेस, जितनी लाउडनेस ज्यादा होगी उतना डैमेज ज्यादा होगा, जितनी कम होगी वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा लेकिन डैमेज होगा। तो जहां पर भी आपको ऐसे लगे कि आपको दूसरे की बात सुनने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है या दोबारा रिपीट कराना पड़ रहा है, इसका मतलब नॉइज ज्यादा है, उसको नॉइज को लेवल को आपको कम करना है।
0: तो सर क्या ये परेशानी नापने का, श्रवण संबंधी सुनाई देने की क्षमता कम हो गई है, इसे मापने का कोई यंत्र होता है या कोई टेस्ट होता है जिससे ये किया जा सकता है, पता चल सकता है?
1: हाँ, इसको हम लोग ऑडियोमेट्री बोलते हैं, जिसको

0: एक ही जांच जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। कान के ऊपर हेडफोन लगा दिया जाता है और करीब 5 से 10 मिनट में टेस्ट हो जाता है।
1: ओके।
0: इसमें कोई दवाई नहीं देना, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, सिंपली आवाज सुनाते हैं और उससे हम देखते हैं कि आवाज से कैसा रिस्पॉन्स है। तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है,
1: बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है डॉक्टर साहब ने बताया। और उन लोगों के लिए खासतौर पर जो हेडफोन्स लगाना पसंद करते हैं, उन्हें वो हेडफोन लगाकर भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन यदि आप जनरली लंबे समय तक हेडफोन का या ईयरप्लग्स का इस्तेमाल करते हैं और लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो उसे आज ही बंद कर दीजिए। हो सकता है कल को आप भी इस परेशानी से जूझने लगे।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, बिल्कुल चुपके से नहीं, आप बिल्कुल खुलकर सुनिए और सारी बात सुनिए। और ऐसे ही सुनते सुनते हमारे एक लिसनर का मैसेज हम तक पहुंचा है, जिला हापुड़ से लिख रहे हैं आरिफ रबानी। इन्होंने कहा, रोज कान में ईयरफोन और हेडफोन लगाकर मैं एफएम रेनबो सुनता हूं और थोड़ी आवाज भी कम आती है। लेकिन अब आपने जैसे बताया है कि वॉल्यूम कम करके सुनिए, तो मैं आगे से यही करूंगा। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सर आपका भी कि आपने अपनी हमारी बात ध्यान से सुनी और हमें मैसेज करके बताया कि आप हमारे इस प्रॉब्लम को, मतलब हमारे इस सॉल्यूशन को आपने ध्यान से सुना और अब आप ध्यान से रखेंगे अपने कान का भी। एक और मैसेज आया है, लिखने वाले हैं 72 इयर्स ओल्ड एसएस मुखर्जी कोलकाता से। ये कह रहे हैं कि मेरे कान में लेफ्ट ईयर में लगभग 3 साल से रिंगिंग साउंड आती है और उसकी वजह से हियरिंग जो पावर है वो भी थोड़ी कम होती जा रही है और आई हैव फेस वर्टिगो अटैक और साथ में वॉमिटिंग आती है टाइम टू टाइम। तो उनके लिए कुछ बैलेंसिंग प्रॉब्लम कुछ बता, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई मेडिकल एडवाइस, बैलेंस भी रहे, वर्टिगो भी बैलेंस रहे और सुनने की क्षमता भी।
0: जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि अगर ड्राइविंग करते हैं तो फिर बिल्कुल ना करें
1: जी,
0: और कोई स्टूल पे खड़े होके या सीढ़ी पे चढ़ के कुछ काम ना करें, कुछ चक्कर आएगा तो ये गिर सकते हैं और चोट लग सकती है, पहला। दूसरा ये है कि अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का मतलब ये है कि रात में बाहर ना निकलें, लेकिन शाम को या दिन में अपना मॉर्निंग वॉक करें, डे में वॉक करें, और जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे चक्कर कम रहेंगे। ऐसे ना करें कि बिस्तर पे लेट जाए। दूसरा, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं जिसमें उल्टी भी आ रही है और कान में सीटी की आवाज भी आ रही है, तो इसका मतलब ईएनटी डॉक्टर को दिखाना है। वो जांच करके बताएंगे इसका कारण क्या है और उसके लिए कुछ दवाइयां देंगे जो हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने चलाते हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे चक्करों में भी आराम आ जाएगा और जो इनकी आवाज आ रही है कान में उसमें भी आराम आ जाएगा।
1: सर, एक और मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन इन्होंने कहा, मेरी उम्र जो है लगभग 20 साल है और 2019 में उन्हें कान में बहुत ज्यादा खुजली होती थी और कभी कभी कुछ चीटी किसी साउंड आती है, कुछ अलग सी साउंड आती है, उन्हें भी कोई आप एडवाइस दे सकें।
0: जी, पहली एडवाइस ये है कि आजकल काफी लोग कान को ना साफ करते रहते हैं
1: जी,
0: ईयरबड लेके।
1: हाँ,
0: तो होता क्या है, क्योंकि अच्छी फीलिंग आती है तो आदमी बार बार करता है। अब उससे नुकसान ये होता है कि जो कान के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम वैक्स बोलते हैं, वो भी पूरी निकल जाती है।
1: ओके।
0: और जैसे ही चमड़ी खुश्क होगी तो उसमें खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो कान साफ ना करें, ईयरबड या कोई नुकीली चीज डाल के या पेंसिल इससे साफ ना करें तो खुजली ऐसे कम हो जाएगी। और जो ये सेंसेशन बता रहे थे कान में चीटी वाले सेंसेशन, अगर इन्होंने हियरिंग टेस्ट करा लिया है और वो नॉर्मल है तो बहुत कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर हियरिंग टेस्ट नहीं कराया तो एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके हियरिंग टेस्ट करा लें।
1: Okay.
0: अगर हियरिंग में इशू है तो फिर हमें देखना पड़ेगा ये किस वजह से है।
1: सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हियरिंग टेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके करा लें, तो ये जो लैब्स होती है जगह जगह, क्या ये टेस्ट वहां हो सकते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर वहीं पर जो ईएनटी विशेषज्ञ होंगे वो बताएंगे तभी ये टेस्ट होगा?
0: नहीं मैम, ये नॉर्मल लैब्स में नहीं होंगे।
1: ओके।
0: ये आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाएंगे, ओपीडी में, किसी भी हॉस्पिटल में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
1: Okay.
0: तो वो कान को पहले जांच करते हैं कोई वैक्स वगैरह तो नहीं है, एक बार वैक्स नहीं है तो फिर सुनाई की जांच करते हैं। हाँ जी
1: सर, एक मैसेज हम तक और आया था और वो शायद मुझसे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। उन्होंने ये कहा था कि क्या कान में हाइड्रोजन परोक्साइड डालकर उसे साफ किया जा सकता है?
0: आजकल हाइड्रोजन परोक्साइड डाल के हम कान साफ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कंसंट्रेटेड चला गया तो कान की जो चमड़ी है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो हाइड्रोजन परोक्साइड ना डालिए। अगर कान में कुछ स्मेल है तो उसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो उसको लाइट के अंदर देख के साफ कर देंगे उसको।
1: सर, हाँ, ये लिखने वाले थे अनिल यादव अम्बेडकर नगर से। इन्होंने कहा, चूंकि 5 साल से छोटे बच्चों में खास तौर पे इन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है छोटे बच्चों के तो कान में कुछ डालना ही नहीं चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन परोक्साइड बिल्कुल ना डालें। दूसरे जो वैक्स को सॉफ्ट करने वाली दवाइयां मिलती हैं मार्केट में, वो डॉक्टर जरूर लिख देंगे और उसको

0: चार पांच बूंद कान में डाल के हल्के से कान को मसाज कर दें चार पांच मिनट के लिए, उसके बाद कपड़े से बाहर से उसको साफ कर दें, कान के अंदर कुछ न डालें, तो धीरे धीरे मेल्ट होकर अपने आप बाहर आ जाता है, उससे साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
1: ओके, तो सर मुझे लगता है जो हमारे लिसनर थे संदीप कुमार मेरठ से, इन्होंने यही जानना चाहा था कि कान की सफाई का सही तरीका क्या है, वो आपने बता दिया है। तो संदीप जी, आई थिंक आपने सुन लिया होगा और आपको आपके इस सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, यूं तो बहुत सारे सवाल लगातार हम तक आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें एक बार मैं फिर से बता दूं, आज का हमारा विषय है सभी के लिए श्रवण संबंधी समस्या का निदान। यदि आपको भी इससे रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड कोई भी यदि समस्या है, आप कोई क्वेरी जानना चाहते हैं, कुछ भी आपका सवाल है, आपको लग रहा है कि आपको सुनने की में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आज का रेडियो डॉक्टर खास है आपके लिए। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कुमार, एम्स दिल्ली के ENT स्पेशलिस्ट।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: यहाँ पर हम आपके साथ मौजूद है रेडियो डॉक्टर लेकर, और आज का हमारा विषय है हियरिंग केयर फॉर ऑल, सभी के लिए श्रवण संबंधी देखभाल। आपको बता दें हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार, जो ENT स्पेशलिस्ट है एम्स दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, लगातार सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे लिसनर्स के, तो एक मैसेज आया है लिखने वाले हैं सैयद दानिश जरी वाले ब्रह्मपुरी से, और इनकी उम्र है 30 साल। इन्होंने कहा है कि 10 दिन पहले इनके कान में एक दाना हुआ था, और दाना तो ठीक हो गया लेकिन इनका कान बंद हो गया। तो इसके लिए कोई होम रेमेडी हो या कोई और एडवाइस हो वो बताइए। एक चीज उन्होंने और लिखी है कि इन्हें जुकाम बहुत ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी होता है।
0: जी, तो आवाज कम होने का दो कारण समझ आ रहे हैं मुझे इनके केस में। एक तो जुकाम है, उस वजह से भी कान बंद लग सकते हैं
1: जी।
0: तो उसके लिए तो अगर गर्म पानी की भाप ले लेंगे नाक से तो कान खुल जाएंगे।
1: ओके,
0: इसके अलावा दूसरा कारण होता है अगर कान में फूंसी हुई है और उसका एक बार पस निकल के कान में इकट्ठा हो जाता है पर्दे के आसपास, तो अगर वो है तो ENT स्पेशलिस्ट को जाएंगे तो कान को साफ कर देंगे और कान फिर से खुल जाएगा।
1: तो मुझे लगता है सैयद दानिश, आपने ये बात सुन ली होगी कि हो सकता है आपका दाने फट गया हो, उस पर पस हो, और तो आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए तुरंत। गाजियाबाद चाणक्य चौक से मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे अक्सर हम वाहन चलाते समय हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट से कान पर दबाव पड़ता है और उतारने के बाद कानों में भारीपन या सुनपन लगता है, तो क्या ये हेलमेट पहनने से होता है या किसी और वजह से? एक बात और भी पूछना चाह रहे हैं, हेलमेट और कानों के बीच लोग मोबाइल लगाकर चलाते हैं या सुनते हैं, तो क्या इससे भी कानों पर कोई असर हो सकता है?
0: जी, कानों से तो क्वेश्चनेबल है, होगा नहीं होगा, लेकिन जान को जरूर खतरा हो सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो ड्राइव करते हुए प्लीज मोबाइल फोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट हो। आपको अगर सच में ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो बाइक साइड पे रोकिए, उसके बाद आप फोन को लगा के सुनिए।
1: तो मुझे लगता है गांधी साहब को इसका जवाब मिल गया होगा, और ये सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हम बता दें, याद दिला दें कि ड्राइविंग करते समय आपको कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो केवल आपकी जान माल के लिए नहीं, और जो आपके साथ साथ सड़क पर और दूसरे वाहन चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और भी सवाल लें, एक सवाल मुझ तक भी बहुत देर से मेरे मन में घूम रहा है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्या मतलब लोगों को आज बहुत लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सी बीमारियां हैं, क्या उनकी वजह से भी कोई ऐसी बीमारी भी है जिसकी वजह से सुनने की क्षमता में कमी आती है या लोगों को परेशानी हो सकती है?
0: जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कान को डायरेक्टली कान से नहीं है बट बॉडी में होती है, जैसे शुगर।
1: जी,
0: अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है काफी टाइम तक तो वो हमारी एजिंग बढ़ा देती है। जो चेंजेस मान लीजिए हम कहते हैं 50 साल पे होंगे, हो सकता है जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है वो 30 से 40 साल पे भी हो सकते हैं। पहला ये है। दूसरा ये, अगर हम सफाई का ख्याल ना रखें, जैसे आसपास मान लीजिए ओवर क्राउडिंग है, फ्रेश एयर नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो वहां देखा गया है कि ऐसे जगहों पे बच्चों को कान की बीमारियां काफी होती हैं, जैसे कि कान बहना है, बार बार खांसी जुकाम होना है। इसके अलावा अगर हम साफ सफाई का ख्याल ना रखें तो उसके वजह से भी कान में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए सर के अंदर डेंड्रफ है तो कान के अंदर भी वो फ्रीचिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम है। खान पान अगर हमारा ठीक नहीं है, जैसे पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, तब भी कान के इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, जैसे हमने पहले बात की, शोर शराबा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिक्रिएशनल है कि म्यूजिक सुन रहे हैं या हमारे वर्क से रिलेटेड है, जैसे ईयरफोन पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, या जो हमारे वर्क प्लेस पे शोर है, तो उसकी वजह से असर आ सकते हैं।

0: चीज और है, गर्मियों में जनरली लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, वहां पर हर तरह के लोग एक साथ एक ही पूल में स्विमिंग करते हैं, अक्सर वहां से बच्चों को या एडल्ट्स को भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए?
1: जी, पहला तो ये है कि अगर आप हेल्दी हैं तो पूल में जाएंगे तो खास उस पर असर होगा नहीं। जो कान में प्रॉब्लम होने के जो कॉमन कारण ये है, जब आप पूल से बाहर आते हैं और कान बंद लगता है तो आप कान को अंदर से साफ करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से कान में डैमेज हो जाता है और फिर इन्फेक्शन आता है।
0: जी।
1: कुछ लोगों में जैसे कि अगर डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड, अगर वो जाते हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है।
0: जी।
1: या आप कान को स्क्रैच कर रहे हैं, उसके बाद जो मान लीजिए मैच स्टिक है या हेयर पिन है तो उस पर अगर फंगस है तो वो कान तक पहुंच सकता है। तो जब भी स्विमिंग पूल में आए, बाहर निकले तो आप कान को एक तरफ करते और सूखे कपड़े को कान के टच में रखेंगे तो अपने आप पानी बाहर आ जाएगा, उससे ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं होती है। उसको स्क्रैच ना करें, बहुत ज्यादा सुखाने की कोशिश ना करें और कई बार होता है अगर आप स्विमिंग जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लें, कई बार कान में थोड़ा वैक्स होता है और पानी उस वैक्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर वो अपने आप बाहर नहीं आता, तो फिर हम स्क्रैच करते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है।
0: सर, जैसे आपने अभी बताया कि जिनको डायबिटीज होती है और उनको सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हियरिंग पावर कम हो सकती है, लेकिन मान लीजिए कि बीमारी कंट्रोल में आ गई है और उनकी जो हियरिंग पावर है वो कम हो चुकी है, तो क्या वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, या उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा?
1: अगर आपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है तो आपकी हियरिंग इफेक्ट नहीं होगी। वो उसका इम्पोर्टेंस है कि आप शुगर कंट्रोल में रखिए। अगर उस वक्त तक डैमेज हो गया है तो हम उसको जरूर हेल्प कर सकते हैं, ये देख के किस वजह से सुनाई में कमी, मान लीजिए कान में इन्फेक्शन है, जरूर उसको ट्रीट किया जा सकता है। कान की नस में कमी है तो हम उसको हियरिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी सर, हियरिंग एड से ही जुड़ा हुआ एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं सौरभ दिल्ली से, कह रहे हैं मेरे ब्रदर जो लगभग 80s में है, अर्ली 80s में है और हियरिंग एड लगाते हैं जिसका प्राइस जो है अलग अलग तरह की आती है, मतलब 15,000 से 15 लाख तक इन्होंने मुझे बताया है यहाँ पर, तो हमें किस तरह की एड हियरिंग एड खरीदनी चाहिए और कौन सी अच्छी रहती है, प्लीज एडवाइस।
1: जी, ब्रांड बताना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन मैं एक ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो दो तरह की हियरिंग एड होती है, एक एनालॉग होती है, दूसरी डिजिटल होती है। तो डिजिटल है थोड़ा सा महंगी होगी, लेकिन उसमें फायदा ही होता है कि उसको हम लोग मरीज के अकॉर्डिंगली उसको ट्यून्ड किया जा सकता है कि मरीज को क्या चाहिए। जहां तक पैसे की बात उन्होंने की है कि भाई 15,000 से लेकर 15 लाख तक है, तो उसे प्राइस पहले ना देखें, पहले देखें कि मरीज को किससे फायदा हो रहा है, सबसे कंफर्टेबल फिट क्या है, उसके बाद अपने बजट में वो आप उसको खरीद लें। ऐसा नहीं है बहुत महंगी हियरिंग एड लेंगे तो बहुत अच्छी होगी, सस्ती लेंगे खराब होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो पेशेंट है उसकी हियरिंग पावर कितनी है और उसको कितनी हेल्प चाहिए उस पर डिपेंड करता है। डिजिटल हियरिंग एड लें जो कम्फर्टेबल हो, क्लैरिटी मैक्सिमम हो, तो वो आप परचेज करें।
0: सर, एक और मैसेज आया है, प्रदीप सेठी लिख रहे हैं, ये अजमेर से, इनकी उम्र 66 साल है और स्पीच ऑडियोमीटर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट इन्होंने कराया है, आई थिंक क्योंकि बहुत इन्होंने कट एंड शॉर्ट में लिखा है, आप आई थिंक समझ जाएंगे, स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट PTA राइट एंड लेफ्ट ईयर इज 25 dB, दिस इज गुड और नॉट?
1: कितना एज बताया ना?
0: 66
1: में 25 dB इज एक्सलेंट।
0: ओके,
1: बहुत अच्छी है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही कंटिन्यू करें।
0: सर, जैसे इन्होंने बताया कि 66 की उम्र के हैं और इन्होंने ये टेस्ट कराया, तो आप कौन सी एज में ये टेस्ट रेकमेंड करते हैं जनरली एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए?
1: देखिए, स्वस्थ व्यक्ति मेरा मानना है कि जब वो अपने जनरल चेकअप के लिए जा रहे हैं और इन्हें लगता है हियरिंग इफेक्ट हो रही है तो जरूर चेकअप करा लें। आप उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आप ENT के डॉक्टर को भी मिलना चाहते हैं और हियरिंग टेस्ट कर लें। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है और हार्डली 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो इसके अलावा एज ए रूटीन चेकअप, कोई भी व्यक्ति जो 50-55 साल से ऊपर का है, वो एज के साथ हियरिंग कम होती है। अगर लोग कह रहे हैं कि आप जाके वॉल्यूम बढ़ा रहे हो टीवी का या आप बार बार पूछते हो क्या बोला, तो वो टाइम है हियरिंग चेकअप करने का।
0: मीन्स कुल मिला के जो लक्षण है वो यही कि यदि आपको दूसरे की बात को थोड़ा सा दबाव लगाकर सुनना पड़ रहा है, जोर लगाकर सुनना पड़ रहा है, या आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यदि सर जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, चूंकि बहुत सारी बातें हुई लेकिन उन छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें इन सिम्टम्स को कैसे पहचान सकते हैं?
1: बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जो माँ है या घर पे जो दादा दादी हैं, वो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे जो बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ है, तो कभी भी आप देखिए जब तेज आवाज आती है, जैसे बर्तन कोई घर में गिर गया, तो वो एकदम

0: थोड़ा सा कहना चाहिए स्टार्टल रिफ्लेक्स होगा, थोड़ा सा वो चौंक जाएगा
1: जी, जी, जी.
0: इसका मतलब वो सुन रहा है. जैसे बच्चा 3 महीने का होता है तो स्माइल करने लगता है
1: जी.
0: अगर आप उसके नाम से बुलाओगे या उसकी माँ बुलाएगी तो स्माइल करेगा,
1: स्माइल करेगा, रिएक्ट करता है बेसिकली वो.
0: 5-6 महीने होने के बाद वो हेड कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है तो वो आवाज के डायरेक्शन में अपना मुंह घुमाएगा, कोशिश करेगा कहाँ से आवाज आ रही है, लोकलाइज करने का. और इसके बाद जो बच्चा करीब 8-9 महीने का होता है तो फिर वो कुछ कुछ वर्ड बोलेगा, जैसे बाबा, दादा, माँ, इस टाइप के. और करीब 10-12 महीने का हो जाएगा तो वो 2-3 वर्ड का पानी, खाना, बिस्किट, वो कुछ कुछ चीजें मांगना स्टार्ट कर देता है. तो अगर हम उसको ये देख लें कि अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें चेकअप कराने की जरूरत है. और अगर हल्का भी डाउट है तो उसके लिए वेट ना करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देख लेंगे. आप फौरन जाके जांच कराइए. अगर हियरिंग नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नॉर्मल है तो हम उसको जितना जल्दी पकड़ेंगे जवाब सुनने का उतना अच्छे से इलाज हो पाएगा और उतना बेहतर उसका आउटकम होगा.
1: पर सर की इन सारी डॉक्टर साहब की बातों से मुझे एक फिल्म याद आ रही है, संजीव कुमार और जया भादुड़ी की एक फिल्म थी कोशिश, जिसमें वो दोनों ही मूक बधिर होते हैं और वो जब उनका बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है तो वहां उन्हें यही टेंशन हो जाती है कि कहीं ये भी हमारी तरह बधिर तो नहीं है. और वहीं से हम भी समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी बधिर व्यक्ति महसूस कर सकता है. तो जितनी जल्दी हो सके आप इस परेशानी को पहचानिए और अपने ENT स्पेशलिस्ट के साथ जुड़िए. और हमारे साथ लगातार हमारे व्हाट्सएप पर हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं. एक सवाल आया है सर, उम्र है इनकी 32 साल और नाम है बालचंद्रा मेरठ कैंटीन से. कह रहे कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी जुकाम आ जाता है. बिकॉज आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, कान की बात हो रही है और जुकाम के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है इन्हें होंगी, तो आप इन्हें प्लीज उपचार बता सकें.
0: जी, अगर बार बार जुकाम हो रहा है तो उसके जो कारण मुझे समझ आता है वो ये हो सकता है कि इनको एलर्जी हो नाक की. इसके अलावा बाकी सुनने वालों के लिए भी हम ये बता सकते हैं, जब बार बार नाक में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे कान पर असर आ सकता है. और सबसे पहले पता लगता है कान से कम सुनाई देना, कान ब्लॉकेज होना. तो एक तो उसका इलाज कर ले, क्यों जुकाम हो रहा है. अगर एलर्जी है तो उसकी दवाई देंगे डॉक्टर, वो ठीक होगा तो कान भी ठीक हो जाएगा. अगर जुकाम के साथ साथ कान में दर्द स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि कई बार जुकाम कान तक पहुंचता है. तो अगर हम उसको नेगलेक्ट करेंगे तो कान के पर्दे में सुराख होकर पस बाहर आने लगेगा. तो उसका इलाज करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, पेशेंट को ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि जब कान बंद हुआ है, कान में दर्द स्टार्ट हुआ है, उसका इलाज करने में.
1: अरे सर, जैसे ये तो इन्होंने बताया कि कोल्ड हो जाता है और आपने बताया कि इन्फेक्शन हो जाएगा या लंबे समय तक यदि ये परेशानी रहेगी तो श्रवण संबंधी परेशानी आ सकती है. कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या जैसे पीछे हमने कुछ समय से कोविड बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगे हैं, वायरल इन्फेक्शन, तो क्या उनका असर भी श्रवण संबंधी परेशानी से जुड़ता है या कोई ऐसा है
0: कि
1: उन्हें भी सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम होती है?
0: जी, जितने भी वायरसेस हैं जो हमारा नाक के थ्रू या गले के थ्रू जाते हैं वो एक कॉमन कोल्ड की तरह से चाहे पता लगता है कि जुकाम हो गया
1: जी.
0: और ज्यादातर केस में कान पर असर नहीं होता है. कुछ केसेस में कुछ वायरसेस हैं जैसे मम्प्स जो होते हैं, जिनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कनफ्यूरे होना, या मीजल्स है, या इवन कोरोना जब आया था तो कुछ परसेंट में बहुत कम होता है कि सुनाई की शक्ति पे असर आ गया. अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास फौरन जाए, वो कुछ दवाई देंगे, उससे जो सुनने की शक्ति वापस आ जाएगी. धन्यवाद.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर. ये शुमारा पहले भी नशर किया जा चुका है. आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं. फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज. इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस की नशरियात दस्तियाब हैं और DD फ्री डिश पर भी आप उर्दू सर्विस समाप्त कर सकते हैं. अब खबरें नशर की जाएंगे.
4: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कोनेल हैदर से खबरें सुनिए. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर इसकी याद ताजा कर रहा है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि

उसने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहरा किया है। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के तय अपने अजम का इरादा करते हुए अफगानिस्तान के लिए तिब्बी सामान भेजा है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 21 अफराद की मौत हो गई जबकि 5 अफराद लापता बताए गए हैं। अमरीका ने बरतानिया में मुश्तबा दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में गिरफ्तारियों के बाद बरतानिया में मौजूद अमरीकी शहरियों के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में पहले एक रोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरियों की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। खबरें तफसील से। भारत की तरफ से किए गए सर्जिकल हमलों के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं जो दहशतगर्दी से लड़ने की नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी की एक नई मिसाल है। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए थे। ये कार्रवाई उस महीने के आगाज में उड़े दहशतगर्दाना हमले के जवाब में एक बरह रास्त और फैसलाकुन फौजी कार्रवाई की गई थी जिसमें 19 भारतीय फौजियों ने अपनी जानें गंवा दी थीं। हुकूमत ने कहा कि 2016 में जिस अजम का मुजाहरा किया गया उससे दलेराना कार्रवाई की बुनियाद पड़ी। भारत की तरफ से जो दलेराना कार्रवाइयां की गईं उनमें 2019 का बालाकोट फजाई हमला और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय फौज का वो रोल उजागर हो गया है जो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हमला करने में अदा किया था। जहां मोदी ने याद किया कि किस तरह दुनिया हैरतजदा रह गई थी कि भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने का भारत का तरीकेकार पिछले दहाई में तैयार किया गया। उन्होंने इसके लिए बालाकोट हमले और ऑपरेशन सिंदूर की मिसालें दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कारकुन अशोक सिंघल को खराज अकीदत पेश किया है। एक अंग्रेजी अखबार में अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी एक यादगार उसूल की अक्कास है और वो उसूल ये है कि दूसरों की फलाह बहबूद की कोशिश फर्द की जाती कामयाबी से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। जनाब मोदी ने कहा कि हफ्ते के रोज से मुल्क ने अशोक सिंघल की सालगिरह की 7 साल तकरीबात का आगाज किया है। वजीर आजम ने कहा कि अशोक सिंघल ने समाजी इत्तेहाद और मुसावात को मजबूत बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल को फिक्री वजाहत की ऐसी नेमत हासिल थी कि माशरे में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए और हर फर्द मसावी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। वजीर आजम ने कहा कि ये उनका एजाज था कि उन्हें अशोक सिंघल के साथ बातचीत करने के बेशुमार मौके मिले। मुल्क आज मुजाहिद आजादी भगत सिंह को उनके 119वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में पैदा हुए थे जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह की पैदाइश एक इनकलाबी घराने में हुई। वो अपने 7 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में प्यार से भगन वाला कहा जाता था जिसका मतलब होता है खुशकिस्मत और उन्होंने राजगुरू जी और सुखदेव जी के हमरा अपनी कुर्बानी पेश करके मुल्क की आजादी में अपने नाम के इस मतलब को साबित किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अपनी गैरमामूली शुजात और बहादुरी से भगत सिंह ने आजादी की तहरीक में नई जान डाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न आजहानी लता मंगेशकर को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी सहरंगेज गुलूकारी से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। वजीर आजम ने कहा कि लता मंगेशकर ने मुल्क को न सिर्फ अपनी सुरीली आवाज से महकाया बल्कि भारत की खुशहाली से वाबस्ता हर कोशिश की हौसला अफजाई की। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मौसीकी की दुनिया के तई लता मंगेशकर का बेमिसाल तआवुन आने वाले हर दौर के लिए यादगार रहेगा। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जारी इमदाद के हिस्से के तौर पर काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए इंतहाई जरूरी दवाओं की एक खेप रवाना की है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट

लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में ये नगमा था किनारा फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ हैं मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

लता मंगेशकर के साथ ही नगमा हमने आपको मन्ना डे की आवाज में सुनवाया। फिल्म थी बसंत बहार। प्रोग्राम की अगली पेशकश संगम फिल्म से है। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं।

सरस्वती चंद्र फिल्म का नगमा आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

0: निराला मैं नगमा तिहारा हो तेरा मेरा प्यार निराला तेरा मेरा प्यार निराला।
1: रुक्मिणी चोरों का राजा फिल्म का नामा था, लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया हुआ। प्रोग्राम अभी जारी रहेगा, वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है सुल्तान जैनुल आबिदीन।
2: रियासत जम्मू कश्मीर आज जिन सेक्युलर रवायात के अमीन है उनमें हाल की जमहूरी अख्तार भी है और माजी का वो अजीम शान बिरसा भी, जिसे अहले कश्मीर ने अपनी फिक्र अपने अमल और अपनी सन्नाई से परवान चढ़ाया। जहां तक रियासत जम्मू कश्मीर की सेक्युलर रवायत का ताल्लुक है, इसकी आबियारी में सूफी संतों के साथ साथ सुल्तान जैनुल आबिदीन बटशाह जैसे बामल हुक्मरानों को भी गैर मामूली दखल है। सुल्तान जैनुल आबिदीन बटशाह 15वीं सदी ईस्वी में 1420 में तख्तनशी हुआ। बटशाह से पहले कितने ही बादशाह इस रियासत के हुक्मरान रहे, लेकिन कश्मीर की तहजीबी सकाफती और माशी जिंदगी को नई वसतों से हमकनार करने का काम सिर्फ बादशाह ने ही अंजाम दिया। कश्मीर की किसी भी सनत या खूबसूरत चीज के बारे में मालूम कीजिए कि इसकी इब्तिदा वादी में कब और किस वक्त से हुई, तो फौरन जवाब मिलेगा बादशाह के जमाने से। बेशक बास चीजों के बारे में इस तरह के ख्यालात सही मालूम नहीं होते, ताहम ये बादशाह की लाजवाल अजमत ही है कि अहले कश्मीर हर खूबसूरत चीज को उनके नाम से मंसूब करने में खुशी और फख्र महसूस करते हैं। बादशाह बचपन से ही काफी जहीन था, आम शहजादों के बरक्स उसे कहीं ज्यादा तालीम हासिल करने का मौका मिला। फारसी और अरबी के अलावा उसे संस्कृत और तिब्बती जबान पर भी उबूर हासिल था। इब्तदाई उम्र में बादशाह ने कुछ वक्त समरकंद और बुखारा में बसर किया था और वहां की तहजीबी सरगर्मियों से बेहद मुतासिर हुआ था। चुनाचे रियासत में इनान हुकूमत संभालते ही उसने अपने हसीन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने की सई की। अपने रियाया के लिए उसने बेहतरीन इंतजामी ढांचा बनाया और कश्मीर में सनत हिरफत और कारीगरी के शोबों को फरोग दिया। जगह जगह दस्तकारियों के मरकज कायम किए। कालीन बाफी, पेपर माशी, शाल बाफी और नमदा साजी के बारे में आम राय यह है कि इन सनतों की शुरुआत कश्मीर में उसी जमाने से हुई। सुल्तान जैनुल आबिदीन खुद अपनी जात से एक अंजुमन था। कश्मीर में सेक्युलरिज्म या सेक्युलर तर्ज फिक्र की जड़ें यूं तो सैकड़ों बरसों से उस्तवार हैं, लेकिन इन रवायात को जिन शख्सियतों ने अपने अमल से जिंदा जावेद बनाया उनमें बादशाह का नाम संग मील की हैसियत रखता है। अहद बादशाही कश्मीर की तारीख का ऐसा दौर है जिसमें सेक्युलर रवायात और तर्ज फिक्र की जड़ें मजबूत हुई और मुश्तरक कल्चर के वो खदोखाल नुमाया हुए जो बाद में मुगल शहनशाह अकबर आजम के अहद में नजर आते हैं। बादशाह कलंदर सिफत इंसान था। उसने हमेशा से सादा जिंदगी को झूठी शानो शौकत पर तरजीह दी। वो खुद मुसलमान था लेकिन उसके दिल में दुनिया के बाकी मजाहिब के लिए यकसा एहतराम मौजूद था। मजहबी और रूहानी मौजूआत पर आलिमों और फाजिलों की बातें सुनने में वो बेहद फरहत महसूस करता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बादशाह के किरदार और कारनामों का जिक्र करते हुए लिखा है, बादशाह की जात में इंसानियत इस हद तक कूट कूट कर भरी हुई थी कि उसने शिकार करना तर्क कर दिया और उसे कानूनी तौर पर ममनू करार दिया। उसने खुद कभी किसी जानवर का गोश्त नहीं खाया। उसने बहुत सी उम्दा किताबों का तर्जमा अरबी, फारसी, संस्कृत और कश्मीरी जबानों में कराया। उसके अहद में ईरान और तुरान से मौसीकी के माहिरीन कश्मीर आए, जिनमें ख्वाजा अब्दुल कादिर खुरासानी जैसे माने हुए आलिम और मुल्ला जमील ऊदी जैसे मौसीकी के उस्ताद शामिल थे। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने अपने अहद में अहले कश्मीर को इल्म और फनून के तमाम शोबों से दिलचस्पी लेने के लिए आमादा किया और अपने दरबार में बाकमाल उलमा और फनकारों को जमा किया। बादशाह ने कश्मीर पर 50 साल तक हुकूमत की और अपनी अमन पसंदी, अपने सेक्युलर मिजाज और इल्म दोस्ती से अहले कश्मीर को ऐसी तहजीबी रवायत का अमानतदार बनाया कि आज तक ये इलाका हिंदुस्तान के मुश्तरक तहजीब

0: लता मंगेशकर के साथ ये थे एसपी बाला सुब्रमण्यम, फिल्म थी हम आपके हैं कौन। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारे नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर किए गए भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल कायम हुई है। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के तहत अपने अज़्म का इरादा करते हुए अफगानिस्तान के लिए तिब्बी सामान भेजा है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तूफान खिसकने से 21 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 अफराद लापता बताए जाते हैं। अमरीका ने बरतानिया में मुश्तबा दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में गिरफ्तारियों के बाद बरतानिया

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह की योम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अपनी गैर मामूली शुजात और बहादुरी से भगत सिंह ने आजादी की तहरीक में नई जान डाली। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मुल्क की अजमत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान देने का भगत सिंह का जज्बा दिलेरी और भारतीय नौजवानों के लिए अज़्म की एक मिसाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न आजानी लता मंगेशकर को आज उनके योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी सहरंगेज गुलकारी से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने मुल्क को न सिर्फ अपनी सुरीली आवाज से महकाया बल्कि भारत की खुशहाली से वाबस्ता हर कोशिश की हौसला अफजाई की। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मौसीकी की दुनिया के तहत लता मंगेशकर का बेमिसाल ताउन आने वाले हर दौर के लिए यादगार रहेगा। नेपाल में चार दिन से जारी मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब और मिट्टी के तूफान खिसकने के वाकयात में 21 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग लापता बताए जाते हैं जबकि 5 दीगर जख्मी भी हुए हैं। कुदरती आफात से निपटने वाली अथॉरिटी NDRRMA के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत मिट्टी के तूफान खिसकने के हादसे में हुई है। नेपाल में शदीद मौसमी हालात के सबब 247 मकानात मुतासिर हुए हैं जबकि 260 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए और 80 मकानात को जरूरी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा मुतासर पहाड़ी जिलों में फंसे हुए लोगों को इमरजेंसी हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया है। अथॉरिटी के मुताबिक शदीद बारिश के दौरान नेपाल में तकरीबन 9000 गैर मुल्की सैयाह और कोपहमा मौजूद थे। उत्तराखंड में हिमालयी इलाकों में फंसे हुए 179 कोपहमा और माविन अमले को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। उत्तरकाशी बागेश्वर जिलों में कोपहमाओं के 13 ग्रुप के अरकान मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने हुकाम को हिदायत दी कि वो मौसम की सूरत हाल बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव कार्रवाई शुरू कर दें। उत्तराकाशी में जिला इंतजामिया महकमा जंगलात SDRF और पुलिस और कुदरती आफात के बंदोबस्त मुतालिक अमला बचाव कार्रवाई में मसरूफ है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज उत्तराखंड जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने अगले 2 दिन के दौरान आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा समेत भारत के शुमाल मशरक हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। लंदन में अमरीकी सिफारतखाने ने शेरफोर्ड में रॉयल एयरफोर्स RAF के अड्डे के करीब दहशतगर्द कार्रवाई के शुबे में मुतादी अफराद की गिरफ्तारी के बाद बरतानिया में मौजूद अमरीकी शहरों के एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। सिफारतखाने ने वाजह किया कि बरतानिया हुकाम इस वक्त बरतानिया मजमू तौर पर दहशतगर्द खतरे की सतह को संगीन करार देते हैं। मर्दों के क्रिकेट में कल रात तिरुवनंतपुरम में विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में जबरदस्त जीत हासिल की। कोहली 139 रन पर जबकि ऋतुराज गायकवाड 13 रन पर नॉट आउट रहे। 296 रन का निशाना हासिल करते हुए भारत ने 41 ओवर 4 गेंदों पर 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। इस तरह भारत ने 3 एक रोजा मैचों की इस सीरीज में 1-0 से शिकस्त हासिल कर ली है। विराट कोहली ने एक रोजा मैचों की अपनी 55वीं सेंचुरी बनाई। वो वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। खास खबरें एक बार फिर। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर किए गए भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल कायम हुई है। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के लिए अपने अज़्म का अदा करते हुए अफगानिस्तान के लिए तिब्बती सामान भेजा है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तूफान खिसकने से 21 अफराद की मौत हो गई जबकि 5 अफराद लापता बताए जाते हैं। अमरीका ने बरतानिया मुश्तबा दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में गिरफ्तार के बाद बरतानिया में मौजूद अमरीकी शहरों के सिक्योरिटी से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। मर्दों के क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में पहले एक रोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे हो रहे हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल कायम हुई है। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के तहत अपने अजम का इरादा करते हुए अफगानिस्तान के लिए तिब्बी सामान भेजा है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तोड़े खिसकने से 21 अफराद की मौत हो गई जबकि 5 अफराद लापता बताए जाते हैं। अमरीका ने बरतानिया में मुश्तबे दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में गिरफ्तारियों के बाद बरतानिया में मौजूद अमरीकी शहरियों के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में पहले एक रोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आपने उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात सुनी। 1:15 हुए चाहते हैं हमारी पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म हो रहा है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

आज हम चुनकर लेकर आए हैं 1966 में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन दिल को छू लेने वाली फिल्म ममता, जिसका निर्देशन किया था असित सेन ने और निर्माता थे चारू चित्र। कहानी प्रसिद्ध लेखक निहार रंजन गुप्ता की थी और संवाद कृष्ण चंदर ने लिखे थे। फिल्म में सुचित्रा सेन ने दोहरी भूमिका यानी कि डबल रोल निभाया था, देवयानी और पन्नाबाई और सुपन्ना। उनके साथ अशोक कुमार ने मोनिश रॉय और धर्मेंद्र ने बैरिस्टर इंद्रनील का किरदार निभाया था। बंगाली सिनेमा से बॉलीवुड का सफर, ये एक खूबी थी इस फिल्म में नजर आती है। ममता प्रसिद्ध बंगाली फिल्म उत्तर फाल्गुनी जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, इसकी हिंदी रीमेक थी। बंगाली फिल्म का निर्देशन भी महान निर्देशक असित सेन ने ही किया था और जब उन्होंने इसे हिंदी में बनाया तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। ममता 1966 में रिलीज हुई थी और उस वक्त की ये सुपरहिट फिल्म रही थी।

ममता। इस फिल्म का जो असली दिल है जानती है वो कौन था? सुचित्रा सेन। उन्होंने फिल्म में माँ देवयानी और पन्नाबाई का और वहीं बेटी सुपर्णा की दोहरी भूमिका निभाई थी। एक वैश्य के घर में फंसी माँ जो अपनी बेटी को एक सम्राट समाज में बड़ा करने के लिए अपनी पहचान छुपा लेती है। सुचित्रा सेन की अदाकारी इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। उनके साथ हीरो की भूमिका में थे दृश्य हैंसन से धर्मेंद्र जो कि बैरिस्टर मनीष रॉय के किरदार में थे, वहीं अशोक कुमार जो कि जासूसी एक वकील की भूमिका उन्होंने निभाई थी। धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। एक और देवयानी जिसके जीवन में संघर्ष है, त्याग है और अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम है। दूसरी ओर सुपर्णा, नई पीढ़ी की युवती जिसके जीवन की परिस्थितियां उसकी माँ के अतीत से जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा सेन ने इन दोनों चरित्र जो कैरेक्टर थे इनके बीच भावनात्मक अंतर को अपने अभिनय से उभारा था। फिल्म की कहानी भी इसी वजह से और अधिक प्रभावशाली बनती है। ममता को अगर इसका संगीत न मिलता तो शायद ये फिल्म अधूरी रह जाती। संगीतकार रोशन जी का संगीत और मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, रहे ना रहे हम महका करेंगे, आज भी हर किसी के दिल को छू जाते हैं। लता जी और मोहम्मद रफी साहब का गाना छुपा लो यूं दिल में प्यार अपना, ये गजल और सुगम संगीत इन दोनों का बेजोड़ संगम है। वहीं हेमंत कुमार की आवाज में ही छुपा लो यूं दिल को प्यार अपना जो उन्होंने गाया एक सोलो वर्जन, वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। चलिए सुनते हैं रहते थे कभी जिनके दिल में, लता जी की आवाज में।

जी हाँ, ममता की खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी में नहीं बल्कि इसे संगीत में भी है। संगीतकार रोशन ने फिल्म के भावों को बहुत खूबसूरती से सुरों में ढाला और मजरू सुल्तानपुरी की शायरी ने उन भावों को शब्द दिए।

प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आज आपके लिए चुनकर लेकर आई हूँ 1966 की सुपरहिट फिल्म ममता। ये फिल्म 1966 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इसे 14वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में कई नॉमिनेशंस मिले थे जिसमें सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी मिला था।

फिल्म का सबसे बड़ा भाव था एक माँ का त्याग। देवयानी की जिंदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक अपने सुख, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को पीछे रख सकती है। इसलिए ममता का शीर्षक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों, स्त्री के संघर्ष, रिश्तों की मजबूरियों और माँ के त्याग की कहानी है। तो ये थी फिल्म ममता। लेकिन ममता की कहानी शायद यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता है, जब तक प्रेम में त्याग है और जब तक पुरानी फिल्मों के गीत दिल को छूते रहेंगे, तब तक ममता जैसी फिल्में हमारे बीच जीवित रहेंगी। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और वक्त हो रहा है कि हम उन संदेशों को भी शामिल कर लें। लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि आज स्वर्ण कोकिला लता जी की का जन्मदिन है और इस फिल्म में भी उन्हीं के गाए गीत हैं। उनके ऊपर एक खास कार्यक्रम भी आप सुनेंगे एक ही कलाकार में 2:30 पर। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में और उसके बाद आपके संदेश आप तक पहुँचाएंगे।

संदेश हम तक पहुंच गए हैं फरुख नगर हरियाणा से। जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिलीप भल्ला, शुभम वाजपेयी, सुरेश शर्मा, धर्मवीर जी, राजेंद्र शर्मा जी। अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है वो तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संदेश है हमारे पास सैयद मसरूर शाइना हसन सहारनपुर से जुड़े हुए हैं और सुरेश गंगनीजा पूनम जी ये जलालाबाद वेस्ट से हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीत भापसा जी, प्रमिला जी के साथ वीरंगाव जंक्शन से गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी सौरभ जी हमारे साथ हैं। डीवी राणा नेहरू बयार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। सुनील पाठक जी अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, कमल पाठक गाविया मल्होत्रा के साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार देव डोनी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से आया है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमशिम गुप्ता जी हमें सुन रहे हैं। समरपुर काकेट से फागुन राम यादव ज्योति ओजस्वी हमारे साथ हैं। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह राजस्वी जस्सी सीता और गीता हैं। बतंगेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोरा हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन शमोन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। पोचल कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदवासी निगत परवीन शनिवास सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर ज्योति मन्नत जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं और ये संदेश ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से आया हुआ है। भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल और प्रियल। अगला संदेश किसका है? छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल ईशान पूजा हमें सुन रहे हैं। सुधाकर राजी प्रशांत जी और पूरा परिवार देशमुख परिवार जो है वो हमारे साथ सुंदरनगर जालना शहर से जुड़ा हुआ है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलत और डिम्पल जी हमारे साथ हैं और ये संदेश गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी का है। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से हमें सुन रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज और फरहीन जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास कुछ और भी संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। फिलहाल ये एक और खूबसूरत सा गीत है लता जी की आवाज में।

यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से विनोद जी हमारे साथ हैं, प्रवीण कुमार शर्मा सूर्यनगर गाजियाबाद से हमें सुन रहे हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल जी हमारे साथ हैं, नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस वाहन का निर्मला विशाल जी हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप प्रेम गोप कपिल जी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश गुरमीत सिंह मीता जी का साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से आया हुआ है और ये संदेश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन कौशल्या और हेमलता जी का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफर में हम सफर बनने के लिए। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज स्वर कोकिला लता जी के गीत और उनके बारे में जानकारी देने के लिए आपके साथ हमारी अगली जो आरजी है वो रहेंगी और 3 बजे प्रोग्राम रहेगा मैटिनी मेलेडी जिसमें मैं आपके साथ रहूंगी। तो तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए।

0: आपको बता दें कि आज मैचनी मेलोडीज में आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, तो तैयार रहिएगा, 3 बजे फिर मुलाकात होगी। विजेता जी आपके साथ जुड़ेंगी 2:30 पर। फिलहाल वक्त हो गया है, आप कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप जुड़े हुए हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह, पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी यूपीआई लेन देन ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लाउण दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउण तो इनकार कर दिता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा विच विश्व आगुआं ने सिख्या हुनर तकनालोजी अते रोजगार राही आलमी खुशहाली लियाउण लई वध रही नौजवान आबादी दी समर्था उत्ते जोर दिता है। केंद्रीय किरत रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश विच 100 करोड़ तो वध लोकां नूं समाजिक सुरक्षा दा लाभ मिल रहा है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जन्म वरेगंढ मना रहा है। एशियाई खेडा च भारत की ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले चांदी का तमगा जितया। भारत की मर्दा की क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल च पहुंची है।

0: डॉक्टर ऐसे है जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा। तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: उन्होंने सारे हितधारकों नूं 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करन लई मिलके काम करन दा सद्दा दित्ता। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह दी 119वीं जन्म वरेगंढ मना रहा है। 1907 विच अज दे ही दिन भगत सिंह दा जन्म आण मंडे पंजाब दे लायलपुर जिले दे पिंड बंगा च श्रीमती विद्यावती अते श्री कृष्ण सिंह दे घर होया सी। भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार च होया सी अते ओह सत्त भैण भरावां विच दूजे स्थान ते सन। उन्हां नूं प्यार नाल भागां वाला कहा जांदा सी। उन्हां ने राजगुरू जी अते सुखदेव जी दे नाल देश लई अपनी कुर्बानी दे के अपने इस प्यार दे नाम नूं सार्थक कर दित्ता। उन्हां दा जन्मदिन मनाउण लई अज दोपहर बाद लुधियाणा च पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी च जश्न ए इनकलाब नां दा सूबा पद्धरी सभ्याचारक प्रोग्राम करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आजादी घुलाटिए श्री भगत सिंह नूं उन्हां दी जन्म वरेगंढ उत्ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भगत सिंह ने अदुत्ती हिम्मत अते बहादुरी नाल आजादी अंदोलन च नवी ऊर्जा दा संचार कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने भी शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है। फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनीवर्सिटी LPU च करीब 24 घंटे तक चले तनाव तो बाद पंजाब पुलिस ने देर रात स्थिति ते काबू पा लिया है। रोस मुजहरा कर रहे विद्यार्थियों नूं हाईवे ते हटाए जाने मगरों आवाजाई भी सुचारू हो गई है। विद्यार्थी कुछ दिन पहला यूनीवर्सिटी कैंपस विच एक विद्यार्थन नाल कथित जबर जनाह की घटना संबंधी यूनीवर्सिटी प्रबंधकों वालों कार्रवाई न किए जाने के विरोध च रोस मुजहरा कर रहे सन। इस दौरान कैंपस विच भनतोड़ की गई, पुलिस मुलाजमान ते पथराव होया, पुलिस की गड्डियां नूं भी नुकसान पहुंचाने के नाल नाल वाहनों नूं अग लाई गई सी। इस संबंध विच पंजाब पुलिस दे मुखी श्री गौरव यादव ने दस्सिया कि
2: गल होर कहना चाहांगा कि यह जिहड़ी साडी SIR दर्ज हुई है, साडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सो हूएवर इज इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, उन्होंने खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाऊंगा। कोई वड्डे तो वड्डा बंदा नहीं हैगा, वो भावे यूनिवर्सिटी प्रशासन तो है, भावे कोई बंदा हैगा। वी विल इन्वेस्टिगेट इट इन अ प्रोफेशनल मैनर, थोनू सारा कुछ दसांगे।
1: जापान विच एशियाई खेडां च भारत दी ईशा सिंह ने महिलावां दे 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी दा तमगा जित्तिया है। पिंकी बलहारा ने औरतां दे अंडर 78 किलोग्राम भार वर्ग दे कुराश मुकाबले विच कांस्य दा तमगा हासिल कीता है। भारत दी मर्दां दी क्रिकेट टीम एशियाई खेडां दे सैमीफाइनल च पहुंच गई है। इक वार खास खबर फिर सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी UPI लैन देन उत्ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लाउण दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउण तो इनकार कर दिता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा च विश्व आगुआ ने सिक्ख्या, हुनर, तकनालोजी अते रोजगार राही आलमी खुशहाली लियाउण लई वध रही नौजवान आबादी की समर्था ते जोर दिता है। एशियाई खेडां च भारत की ईशा सिंह ने औरतां दे 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले चांदी का तमगा जितया। इहदे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशिक खबरां दा बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमन अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने UPI लेनदेन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। खामतेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में सेंसेक्स में तकरीबन 1000 प्वाइंट की गिरावट आई है। निफ्टी भी 299 प्वाइंट नीचे आ गया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट यानी बाज UPI लेन देन पर

0: एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन चार्जेस का इतलाक अगले महीने की 15 तारीख से होना है। 2000 रूपये से ज्यादा की यूपीआई अदायगी पर एमडीआर नाफिज किए जाने को चैलेंज करने से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मामला कानूनी एतबार से कम लेकिन तकनीकी लिहाज से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दीगर मुतालिका फरीकों को हिदायत दी है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने ऐलान किया है कि बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। भारतीय बैंकों की एसोसिएशन आईबीए के साथ समझौता होने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन एसोसिएशन ने कहा है कि यह फैसला कल रात भारतीय बैंकों की एसोसिएशन और 7 बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम के दरमियान हड़ताल से मुतालिक मामलात पर मीटिंग के बाद किया गया। इससे कबल बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम और सरकारी मिल्कियत के बैंकों की बाज दीगर यूनियनों और अंजुमनों ने 28 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 3 दिन की हड़ताल का नारा दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिससे दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम हुई थी। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की थीं। उरी में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बराह रास्त और फैसलाकुन फौजी कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। उरी के हमले में 19 भारतीय फौजियों की जान गई थी। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी संग मील करार दिया। जनरल मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कंट्रोल लाइन के उस पार कार्रवाई अंजाम देने में भारतीय फौज का रोल उजागर हुआ।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।
0: मेहनत और रोजगार के महकमे के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को समाजी तहफ्फुज के दायरे में लाया गया है। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा शहरियों के लिए 5 लाख रुपए का सेहत से मुतालिक कवरेज, 25 करोड़ अफराद के लिए ईएसआईसी के तहत सेहत की देखभाल की यकीनी फराहमी, 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुफ्त अनाज और किसानों खवातीन को माली मदद शामिल है। वजीर मासूफ ने दिल्ली में सनती राबतों और लेबर और अवार्ड से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
2: हम 25 करोड़ लोगों को एसआईसी की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में एक चलती बस में एक नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई आबरूरेजी का यह कहते हुए अपने तौर पर नोटिस लिया है कि इस तरह के वाकयात से कानून नाफिज करने वाले हुक्काम की नाकामी उजागर होती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि नाकाफी रोशनी, खराब निगरानी और दीगर जरूरी इंतजामी सहूलियात के फुकदान की वजह से पार्कों और बसों समेत अवामी मकामात को बड़े खतरे वाले जोन नहीं बनने दिया जा सकता। गुज़श्ता महीने 16 साल की एक लड़की ग्रेटर नोएडा में एक स्लीपर बस में सवार हुई थी जिसकी बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मुबैना आबरूरेजी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गंगटोक, सिक्किम और लियोगोम्पा त्वांग अरुणाचल प्रदेश से तलबा के ग्रुपों ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये तलबा कौमी यकजहती टूर के हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुल्क आज अजीम इनकलाब पसंद शहीद आजम भगत सिंह का 119वां यौम पैदाइश मना रहा है। आज ही के दिन

0: तो 7 मई भगत सिंह पंजाब के लायलपुर जिले के बांगा गांव में पैदा हुए जो अब पाकिस्तान में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भगत सिंह की गैर मामूली शुजात और बहादुरी ने आजादी की तहरीक में एक नई जान फूंकी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि तलाक सलासा के कानून से किस तरह मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में तब्दीली आई है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में उम्मीद और सलामती का एहसास लाने के लिए काम किया है, जिन्हें 3 तलाक या तलाक सलासा के रिवाज के वजह से दुश्वार हालात में छोड़ दिया गया था। तलाक सलासा के खिलाफ कानून बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि सियासी कुव्वत इरादी के साथ कानून के जरिए उन समाजी रस्म रिवाज पर तवज्जो दी जा सकती है जिनका लोगों पर नामुवाफिक असर पड़ता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मजकूरा कानून भारतीय आईन के ऐन मुताबिक मुस्लिम खवातीन को बराबर के हुकूक देता है। कानून बनने के बाद से साल के दौरान तलाक सलासा के मामलात में 80% से ज्यादा की गिरावट देखने में आई है। 3 तलाक की रोकथाम से मुताल्लिक कानून के तहत मुस्लिम खवातीन को कानूनी तहफ्फुज मिल गया है, जो इससे पहले समाजी दबाव की वजह से खामोशी इख्तियार रहती थी। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में मुल्क के शेयर बाजारों में तकरीबन 1.3% की गिरावट देखने में आई है। सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 72972 पर आ गया। इसी तरह निफ्टी भी 299 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22842 पर आ गया। एशियन गेम्स 2026 में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल इन्फरादी मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने चांदी का तमगा जीता। 21 साल निशानेबाज ने 38 पॉइंट्स के साथ दूसरा मकाम हासिल किया। भारतीय एथलीट पिंकी बालहारा ने खवातीन के अंडर 78 किलोग्राम के कुराश मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की लिम गाराम को 3-0 से हराया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्क की हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही।
1: Women involved in amla cultivation and related industries in Pratapgarh have expressed happiness over the Prime Minister's mention. Kamlesh Kumari of the Savitri Phule self-help group thanked the Prime Minister and said that PM's word have encouraged them.
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं और हम लोग मेहनत किए हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं पहले और आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
1: प्रतापगढ़ हैज मोर देन 196 यूनिट्स प्रोड्यूसिंग आंवला बेस्ड प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आर ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड टू सेवरल कंट्रीज। ओम अवस्थी, आकाशवाणी न्यूज, लखनऊ।
3: The center will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi after the inaugural session of the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2026, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. At the Asian Games 2026 in Japan, India's Esha Singh won the silver medal in women's 25-meter pistol individual competition at Aichi, Nagoya today. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under 78-kilogram Kurash event. She won the medal after defeating South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi, Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the center's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes and terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bags silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram Kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsoneair.gov.in and News on EIR app. With that, we end the midday news.
4: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से

0: इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि यह निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देशभर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक

0: अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
0: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
0: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ओडीओपी के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को एसआईसी की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि एआई मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसमें उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध

0: एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। ये जो प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, कहते हैं कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो दिल में उतर जाती हैं। कुछ आवाजें सिर्फ गीत नहीं गाती, वो किसी दौर की पहचान बन जाती हैं। और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही हमारे सामने एक पूरा भारत, एक पूरा बचपन और यादों की पूरी दुनिया जीवंत हो जाती है। आज एक ही कलाकार में हम बात करेंगे सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के बारे में, क्योंकि आज हम उनकी बना रहे हैं जन्म जयंती कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से नगमे के साथ।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बात हो रही है लता मंगेशकर की, जिन्हें प्यार से लता दीदी, स्वर कोकिला और मेलोडी क्वीन जैसे नाम दिए गए। हालांकि उनके बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन आज क्योंकि उनकी जन्म जयंती है तो आइए उनको याद करते हैं। करीब 8 दशकों तक फैले उनके संगीत सफर ने भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नई पहचान दी। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेमिसाल रहा। 36 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और इनमें कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल थीं। लेकिन जिस आवाज को बाद में पूरी दुनिया ने सिर आंखों पर बैठाया, उस आवाज के पीछे संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जो कम उम्र से शुरू हो जाती है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत गायक होने के साथ साथ रंगमंच से भी जुड़े थे, इसलिए लता जी के लिए संगीत कोई बाहर से आया हुआ शौक नहीं था। संगीत उनके घर की सांसों में था। उनके पिता ही उनके शुरुआती गुरु बने और लता का मूल नाम अगर जाना जाए तो वो हेमा रखा गया था। बाद में उनके पिता ने नाटक के एक किरदार से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया था। लता मंगेशकर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके परिवार में आगे चलकर आशा भोसले, उषा मंगेशकर, वीना खाडीकर और हृदयनाथ मंगेशकर जैसे कलाकार भी हुए। यानी मंगेशकर परिवार भारतीय संगीत की दुनिया में अपने आप में एक संस्था बन गया। लता ने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अपने पिता से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। बचपन में वो अपने पिताजी के नाटकों में अभिनय भी किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनका असली रास्ता अभिनय नहीं बल्कि संगीत है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, बात हो रही है लता मंगेशकर जी की। साल 1942 का वक्त आया। लता की उम्र उस समय सिर्फ 13 वर्ष थी। इसी उम्र में उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। एक किशोरी के सामने जब सिर्फ अपना भविष्य बनाने की चुनौती नहीं थी बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई थी, लता ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अभिनय भी किया और गायन भी किया। 1942 में उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला मौर में अपना अभिनय किया और इसी दौर में उन्होंने मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए अपनी शुरुआती गीत रिकॉर्ड करवाया। ये वही समय था जब एक किशोरी धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश कर रही थी जहां आगे चलकर उसका नाम इतिहास में लिखा जाना था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। आज जिस आवाज की दुनिया के सबसे महान आवाजों में गिना जाता है, उसे शुरुआती दौर में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। उस समय फिल्म संगीत में कुछ अलग आवाजों का दौर था। उस समय शमशाद बेगम और सुरैया का दौर था और लता जी की आवाज अपेक्षाकृत पतली मानी जाती थी। कई लोगों को लगता था कि उनकी आवाज में फिल्मों के लिए गीत उपयुक्त नहीं होंगे, लेकिन यही लता मंगेशकर की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है अगर आप उस पर काम करना शुरू कर दें। लता जी ने अपनी आवाज को बदलने की बजाय उसे तराशा। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गहन अभ्यास किया। मुंबई आने के बाद उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से भी संगीत की शिक्षा ली और फिर धीरे धीरे उनकी आवाज ने अपना एक अलग स्वरूप ले लिया।

0: कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। बात हो रही है लता मंगेशकर जी की और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ आज कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, 1940 के दशक के मध्य में लता मंगेशकर का परिवार मुंबई आ गया। लता जी ने हिंदी फिल्मों में प्लेबैक गायन शुरू किया और फिर 1949 में आई फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उनकी आवाज को देश भर में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गीत सिर्फ एक लोकप्रिय गीत नहीं था, ये उस दौर का एक ऐसा मोड़ था जिसने फिल्म संगीत में महिला आवाज की नई ध्वनि को स्थापित किया। इसके बाद लता मंगेशकर की आवाज लगातार बड़े संगीतकारों और बड़ी फिल्मों से जुड़ती गई। अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाने वाली लता मंगेशकर की एक खास आदत थी कि वो रिकॉर्डिंग के लिए जब भी स्टूडियो में घुसती थी तो चप्पल बाहर ही छोड़ा करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टूडियो को हमेशा एक मंदिर का दर्जा दिया। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में हजारों गीत रिकॉर्ड किए और कई पीढ़ियों को अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। मधुबाला से लेकर नरगिस, मीना कुमारी, वैजयंती माला, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा श्रीदेवी और बाद की भी अन्य पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की वो आवाज बनी। यही कारण था कि लता की आवाज सिर्फ एक गायिका की आवाज नहीं थी। लता मंगेशकर जी ने भारतीय फिल्म संगीत के लगभग हर बड़े दौर को अपनी आवाज दी। उन्होंने नौशाद, शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, सलिल चौधरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन और बाद में एआर रहमान जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया और

मनमोहन जी के साथ तो उनका सहयोग विशेष रूप से याद किया जाता है। लता मंगेशकर जी की अगर पुरस्कारों की बात करेंगे तो सूची बहुत ही लंबी है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोता, उनकी अवार्ड्स और पुरस्कारों की अगर सूची की बात करेंगे तो कार्यक्रम भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन कुछ सम्मान ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से याद किया जाना चाहिए। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और फिर आया साल 2001 जब भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न प्रदान किया। भारत रत्न की आधिकारिक अधिसूचना में लता दीनानाथ मंगेशकर का नाम कला संगीत के क्षेत्र में दर्ज है। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। उन्होंने 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार भी जीते और बाद में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी

सम्मानित हुई। उन्हें फ्रांस का प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान भी मिला, यानी सम्मान भारत में भी और भारत के बाहर भी। लता मंगेशकर के करियर का एक दिलचस्प पक्ष ये भी है कि उन्होंने एक समय फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार की प्रतियोगिता से खुद को अलग कर लिया था ताकि नई पीढ़ियों को, नई गायिकाओं को आगे आने का अवसर मिले। ये कदम उनके लंबे करियर में एक अलग पहलू को सामने लेकर आता है। वो सिर्फ अपनी उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जगह बनाने की बात करती थी।

और इसी बीच हमारे श्रोता भी हमसे जुड़ गए हैं व्हाट्सएप संदेश इन संदेशों के माध्यम से, तो आइए सुन लेते हैं, देखते हैं सबसे पहला संदेश हमारे पास किसका आया है। तो ये हमारे पास संदेश है धर्मेंद्र चीपा जी का और लिखते हैं कि आज कार्यक्रम में पार्श्व गायिका स्वर कोकिल लता मंगेशकर जी के बारे में बात हो रही है। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं हमारे श्रोता धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार साथ में जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। और तुलसी मस्कीन जी का संदेश है बीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं। शांतिनगर सोनीपत से और अजीत भवसार जी का भी संदेश आया है, बहुत लंबा संदेश है, उसको हम नहीं पढ़ सकते। वीरमगांव गुजरात से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता। नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहावकर, निर्मला और विशाल नुहावकर भी जुड़ रहे हैं।

श्रोता लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। जब कोई पुराना गीत बजता है तो सिर्फ संगीत नहीं बजता, उसके साथ एक दौर लौटता है। किसी को अपना बचपन याद आता है, किसी को अपनी पहली मोहब्बत। ऐसा था लता मंगेशकर की आवाज का जादू।

तो इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम को अब करते हैं यहीं पर समाप्त, और अगले कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने आ रही हैं गोल्डन एरा के कुछ गीत लेकर अंजू पांडे।

मैं आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे कहकशा प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के तहत सुनिएगा फिल्म जिंदगी की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है अनवर अहमद ने। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामान्य था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का, जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

सभी श्रोताओं के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे लता मंगेशकर के साथ गाए दीगर गुलकारों के कुछ नगमे। आज लता मंगेशकर का यौम पैदाइश है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनिए जिंदगी फिल्म की कहानी और नगमे, जिन्हें तरतीब दिया है जनाब अनवर अहमद ने।

मीरा अपनी माँ को समझा देती है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि एक्ट्रेस की नौकरी मंजूर कर ले, और यकीन दिलाती है कि वो खानदान की इज्जत पर जर्रा बराबर भी आंच नहीं आने देगी। मजबूर बेकस माँ अपने चश्मे चराग को जमाने की बेरहम आंधियों से मुकाबला करने के लिए जाते हुए देखती है और तकदीर के फैसले के आगे सर नीगू कर देती है। गोपाल बाबू यानी अदाकार राजकुमार ड्रामा कंपनी के डायरेक्टर हैं और उन्हें बीना से बहुत उम्मीदें हैं। वो बीना का हौसला बढ़ाते हैं और उसे कामयाबी का यकीन दिलाते हैं। बीना बेहद मेहनत और लगन से अपने काम में मसरूफ हो जाती है और फिर पहला ड्रामा मंजर आम पर आता है जिससे बीना की तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं।

ये ड्रामा बेहद कामयाब होता है और बीना एक कामयाब एक्ट्रेस साबित हो जाती है। गोपाल बाबू गर्मजोशी से बीना को मुबारकबाद देते हैं। कंपनी का मालिक रतन लाल एक औबाश किस्म का आदमी है जो बीना की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, मगर बीना उसके साथ हमेशा बेरुखी से पेश आती है। ड्रामा खत्म होने के बाद रतन लाल बीना पर डोरे डालने की कोशिश करता है, मगर बीना एक बार फिर सरमेहरे का मुजाहरा करती है, जिससे रतन लाल इंतकामी कार्रवाई के लिए अपने एक गुंडे बांके यानी अदाकार जीवन के जरिए बीना को अगवा करवा लेता है। मगर दरमियान में राजन यानी अदाकार राजेंद्र कुमार और उसका बेहद अजीज कुत्ता हनी आ जाते हैं और उसे बांके की गिरफ्त से आजाद करा लेते हैं। बीना की मां राजन का बेहद शुक्रिया अदा करती है और बीना के दिल में राजन के लिए प्यार की महक जागने लगती है। राजन राय बहादुर यानी अदाकार पृथ्वीराज कपूर का इकलौता चश्मो चराग है और राय बहादुर को बेहद अजीज है। राय बहादुर हर साल राजन की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस सालगिरह पर भी वो शहर के मौजूद हजरात को अपने यहां मदो करते हैं। राजन का नौकर जग्गू यानी अदाकार महमूद और नौकरानी चंदेली यानी अदाकारा हेलन इस खुशी के मौके पर अपने रक्स गीत से महफिल का रंग दोबाला कर देते हैं।

जग्गू और चमेली एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मगर चमेली का बाप नंबरदार यानी अदाकार धूमल उनके दरमियान हायल है। नंबरदार चमेली की शादी उससे करना चाहता है जो बहुत सा मालो जर उसको देगा, मगर जग्गू के पास कुछ भी नहीं है। एक रोज जग्गू नंबरदार की पोशीदा दौलत का राज हासिल कर लेता है और तमाम जेवर और दौलत चुरा लेता है। वही तमाम मालो जर वो नंबरदार को दिखाता है और नंबरदार चमेली की शादी जग्गू से कराने के लिए तैयार हो जाता है। उधर राजन भी बीना की मोहब्बत अपने दिल में महसूस करने लगा है। वो बीना से मिलना चाहता है मगर मुलाकात का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। अपनी मजबूरी वो उसके सामने रखता है और हनी बीना के घर जाकर उसे एक बाग में ले आता है जहां राजन पहले ही से मौजूद है। दोनों हनी की इस शरारत से बेहद महजूज होते हैं और इस मौके को गनीमत जानकर राजन बीना से अपने प्यार का इजहार कर देता है।

ब्रावे के बाद राजन बीना को मुबारकबाद देने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाता है। तभी गोपाल बाबू भी आते हैं और उन पर ये राज अफशा होता है कि बीना राजन से प्यार करती है। गोपाल बाबू वापस चले जाते हैं और अपने दिल पर पत्थर रखकर बीना को भूलने का कष्ट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से बीना को कोई भी दुख पहुंचे। राजन बीना को अपने घर मधु करता है ताकि वो राय बहादुर साहब से मुलाकात कर सके। बीना गोपाल बाबू का आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे में जाती है और तभी राय बहादुर साहब उन दोनों को एक साथ देखकर उनसे मशकूक हो जाते हैं। बीना राय बहादुर साहब से मिलने आती है। राय बहादुर साहब उससे दरखास्त करते हैं कि वो जितनी चाहे दौलत ले ले, मगर इस खानदान को बर्बाद ना करे, क्योंकि एक एक्ट्रेस का उस घर की बहू बनना उनकी नजर में बहुत गिरी हुई बात है। बीना खामोशी से वापस चली जाती है और उसके दिल का दर्द स्टेज पर गीतों के जरिए मंजर आम पर आ जाता है।

राजन को जब इसका इल्म होता है तो वो राय बहादुर साहब की मर्जी के खिलाफ दीना से शादी करने का ऐलान कर देता है। अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे राय बहादुर साहब सरनिगुं हो जाते हैं, मगर शर्त रखते हैं कि दीना गोपाल बाबू से कभी नहीं मिलेगी। राजन इस शर्त के खिलाफ है, मगर दीना शर्त मान लेती है और ये दोनों शादी के मुकद्दस रिश्ते में बंध जाते हैं।

गोपाल बाबू शादी की मुबारकबाद देने आते हैं तो बीना उनसे दरखास्त करती है कि अगर वो उसे खुश देखना चाहते हैं तो उससे कभी मिलने की कोशिश न करें। गोपाल बाबू को बेहद तकलीफ होती है मगर वो बीना से कभी ना मिलने का कष्ट कर लेते हैं। एक रोज रतनलाल गोपाल बाबू से बीना के मुतालिक नाजायदा गुफ्तगू करता है तो गोपाल बाबू उसे जान से मार देने की धमकी दे देते हैं। इस झगड़े को गोपाल बाबू का एक पड़ोस से सुन लेता है। एक रात राजन और बीना गाड़ी से जा रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी का पंक्चर हो जाता है। दरअसल ये हरकत रतनलाल और बाकी की थी जो बीना को अगवा करना चाहते हैं। राजन गाड़ी मरम्मत कराने के लिए मैकेनिक की तलाश में जाता है तो बाकी के गुंडे बीना को अगवा करने की कोशिश करते हैं। बीना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और एक मकान में दाखिल हो जाती है। वो मकान इत्तेफाक से गोपाल बाबू का है। गोपाल बाबू को तमाम माजरा मालूम होता है तो वो बीना की हिम्मत बढ़ाते हैं और उन गुंडों को वहां से भागना पड़ता है। तभी शहर में फसाद बरपा हो जाता है और उस रात के लिए तमाम शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। बीना गोपाल बाबू के यहां चली जाना चाहती है मगर पुलिस उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती। मजबूरन उसे पूरी रात गोपाल बाबू के घर में ही गुजारनी पड़ती है। कर्फ्यू खुलने पर वो सुबह अपने घर वापस आ जाती है मगर रात में किसी वक्त उसका एक झोंका गोपाल बाबू के यहां गिर पड़ता है। जब उसे मालूम होता है तो वो वापस जाना चाहती है मगर फिर अपना इरादा बदल देती है। बीना के घर पहुंचने पर सब राहत की सांस लेते हैं जो तमाम रात बीना के लिए परेशान रहे। बीना मसलहतन ये नहीं बताती कि वो गोपाल बाबू के रात भर रही। उसके कहने से एक भले आदमी ने उसको सहारा दिया। सभी मुतमईन हो जाते हैं। जिंदगी फिर मामूल पर आ जाती है और एक दिन मालूम होता है कि बीना मां बनने वाली है। राय बहादुर साहब की हवेली खुशी से झूम उठती है। हर कोई बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार करने लगता है और खुशी की गीत

दुश्मन बन जाता है। करहिन की रात बांके और रतनलाल में झगड़ा होता है तो रतनलाल का कत्ल हो जाता है। बांके मौकाए वारदात से फरार हो जाता है और इल्जाम आता है गोपाल बाबू पर, क्योंकि गोपाल बाबू ने रतनलाल को जान से मार देने की धमकी दी थी। गोपाल बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके घर की तलाशी में बीना का एक झुमका पुलिस को मिल जाता है। गोपाल बाबू पर कत्ल का मुकदमा चलता है। इत्तेफाक से राय बहादुर साहब उस मुकदमे की ज्यूरी के सदर हैं। अदालत में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि एक औरत के सिलसिले में रतनलाल और गोपाल बाबू में झगड़ा हुआ था और वही औरत उस कत्ल का सबब है जिसका झुमका गोपाल बाबू के घर में मिला है। गोपाल बाबू अपने बेगुनाह होने का दावा करते हैं, मगर बीना का नाम अदालत में नहीं लाते जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकती है। मुकदमे की तमाम तफसीलात अखबार में शाया हो जाती है और बीना को तमाम हालात का इल्म हो जाता है। वो किसी की भी परवाह किए बगैर अदालत में चली जाती है और बयान देती है कि जिस रात कत्ल हुआ उस रात वो गोपाल बाबू के घर में थी और वो बेगुनाह है। गोपाल बाबू बाइज्जत बरी हो जाते हैं, मगर बीना की तमाम खुशियां उजड़ जाती हैं। राजन इसे बीना की बेवफाई का नाम देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है और खुद को शराब के नशे में डुबो देता है।

0: यशपाल बाबू बांके की तलाश में लग जाते हैं ताकि वो असल हकीकत राजन को बता सके। एक रोज बांके गोपाल बाबू को मिल जाता है मगर उनकी बात मानने से इनकार करता है। उधर राय बहादुर साहब बजिद है कि राजन दूसरी शादी कर ले। राय बहादुर की खस्ता हालत देखकर राजन मजबूरन शादी के लिए राजी हो जाता है। राय बहादुर बीना और उसकी मां को भी शहर से चले जाने का हुक्म देते हैं। दोनों रात के अंधेरे में घर से निकलते हैं मगर अचानक दर्द की वजह से बीना बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से शेर खान यानी अदाकार जयंत उन दोनों को देख लेते हैं और अपनी हवेली में ले आते हैं। शेर खान राय बहादुर साहब के बेहद अजीज दोस्तों में से है मगर बीना का चेहरा ना देखने की वजह से उसे पहचान नहीं पाते। शेर खान की अहलिया दोनों की तीमारदारी करती है और बीना एक नन्हे से लड़के को जन्म देती है। वक्त गुजरता रहता है और कई महीने यूं ही गुजर जाते हैं। एक रोज शेर खान की हवेली के करीब ही राजन की कार एक हादसे का शिकार हो जाती है। हनी मदद के लिए इधर उधर दौड़ता है और बीना की बू महसूस कर लेता है। वो बीना को हादसे के मकाम पर ले आता है और बीना राजन को शेर खान की हवेली में ले आती है। राजन बच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात खुद उसके बेटे से होती है जो उससे खूब घुल मिल जाता है। राजन अक्सर अपने ही बेटे से खेलता है, खुश होता है मगर अपने ही खून से बेखबर है।
1: हंस मेरे यार।

एक रोज बीना को भी मालूम हो जाता है कि अब तक वो जहां रह रही थी वो शेर खान की हवेली है। ये मालूम होते ही वो वहां से रवाना होना चाहती है। उसी रोज राजन की दूसरी शादी भी हो रही है। शेर खान बीना और उसकी मां को शादी में ले जाने के लिए उनके कमरे में आता है और बीना को पहचान लेता है। जब उसे तमाम हालात का इल्म हो जाता है तो वो चराग़पा होकर राजन की शादी रुकवाने के लिए दौड़ पड़ता है और राय बहादुर और राजन को सच्चाई से आगाह कराता है। तभी गोपाल बाबू बांके को पकड़कर ले आते हैं, जो पुलिस की गोली से जख्मी हो चुका है। मरने से पहले वो राय बहादुर साहब को सच्चाई बता देता है। राजन दीवानावार शेर खान की हवेली की तरफ दौड़ता है ताकि अपने गुनाहों की माफी मांगकर बीना को वापस ला सके, मगर तभी जलजला आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सब बिछड़ जाते हैं, राजन लापता हो जाता है। बीना और राय बहादुर राजन को तलाश करते फिर रहे हैं, मगर उन्हें वो नहीं मिलता। इस सदमे से बीना नींद पागल से हो जाती है। हनी भी राजन की तलाश में भटक रहा था और एक जगह राजन उसे जख्मी हालत में मिल जाता है। सब राजन को वहां से निकालते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। कुछ दिन बाद राजन सेहतयाब हो जाता है। राजन और राय बहादुर साहब बीना से माफी मांगते हैं और गोपाल बाबू से भी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और यूं एक बार फिर जिंदगी खुशियों से लबरेज हो जाती है।

ने कहा था। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में, नगमा निगाते शैलेंद्र, मौसीकार सलील चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के यौम पैदाइश के हवाले से कुछ मुंतखब फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की अगली पेशकश खानदान फिल्म का नगमा, नगमा निगार राजेंद्र किशन, मौसीकार रवि, आवाज लता मंगेशकर।

और सामने जब सुनिए यादगार फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार निवर मौसिकार कल्याण जी आनंद जी।

0: कहां से खत्म हुआ, जीता मेरा क्वार्टर फाइनल जुनूबी कोरिया की इल्लिम गरामन को 3-0 से हराया। इससे खबर बर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम बगैर मैदान पर उतरे सेमीफाइनल में पहुंच गई, क्योंकि नासाजगार मौसम के सबब अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल का उसका मैच रद्द कर दिया गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। अमरीका ने मुश्तबा दहशतगर्दाना हमले के मामले पर गिरफ्तारियों के तनाजुर में बरतानिया अमरीकी शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले अंडर 78 क्रैश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांस्य के तमगे जीते। खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस टीम दी पंजाबी सेवा। जिवें कि असीं जाणदे आं, महीने दे आखरी एतवार माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात राहीं जनता नूं संबोधन करदे ने। ते आओ सुणदे आं मन की बात प्रोग्राम दा सरायकी अनुवाद। अनुवादकर्ता ने डॉक्टर मोहन लाल अरोड़ा।
3: यह आकाशवाणी दी विदेश प्रसारण सेवा दा सरायकी प्रोग्राम है। मैं आप सबको सलाम नमस्ते जय हिंद करेंदा। अज असा हाजिर हैं आप सब दे नाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे मन दी गल प्रोग्राम दी 138वीं किश्त दे नाल। तर्जुमा ते आवाज है डॉक्टर मोहन लाल अरोड़ा।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन दी गल दे सितंबर माह होदा है कोई ताको मिलन दा अवसर मिल रहा है। मैं देश दे सबे लोगों दा स्वागत करेंदा। मन दी गल च असा देशवासियों दे सकारात्मक प्रयासां को मंच देंदे हैं, देश की उपलब्धियां की गल करेंदे हैं। भारत की यह एक वड्डी इतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल थी बना लें। यह उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 साल पहले 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान आतंकी ठिकाना ते सर्जिकल स्ट्राइक की है। एलओसी दे उस पार वंज के साडे वीर जवाना ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है वह वेख के दुनिया हैरान थी गई। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंकर की चोट से पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नवा उदाहरण पेश किया है। आतंकवादी हमले के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेलिया है सर्जिकल स्ट्राइक हुकंश के खिलाफ साडी निर्णायक प्रतिक्रिया है। गुजरे एक दशक बालाकोट स्ट्राइक नाल गिन के ऑपरेशन सिंदूर तोड़ी भारत ने वल वाले स्पष्ट सुनिया दिता है कि जेकर आतंकवादी भारत उत्ते अग चसन ता उनका करारा जवाब दिता गया सी। साथियों आतंकवादी हमलिया ने भारत को लंबे अरसे तोड़ी चोट पहुंचाई है। एक वेला आई जब भारत च सीरियल ब्लास्ट थी ने बहु सामान्य गल थी गई है। सितंबर दे ही महीने यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली सीरियल ब्लास्ट च बहु बेकसूर लोग मारे गए हैं। इन्हें कुछ हफ्ते बाद ही मुंबई च 26/11 का इतना वड्डा हमला किया है। साथियों पहले भी हर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान उत्ते कार्रवाई की मांग थिंदी रही है, लेकिन हुंदे उत्ते ध्यान कहना दिता जाता है, समा गुजरता इंतजार किया जाता है। हुण अज दा भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टैलरेंस पॉलिसी गिन के आ गया है ते हुण असा उन्दे नतीजे भी देते पए हां। साथियो हुण साल 9/11 दे आतंकवादी हमले को भी 25 साल पूरे थी गए हैं। अमरीका दे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर च जिन्हां बेकसूर लोगों की जान गवाई आई उन्होंने अमरीका के सबे तो ज्यादा साढ़े भारत के लोग हैं। मेरे याद है 2014 च प्रधानमंत्री बनने तो बाद जब मैं अमरीका गया हाँ तो न्यूयॉर्क च मैं उन्होंने बेकसूर नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देवन पहुंचा हाँ। फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की तरफों पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हाँ। मेरे प्यारे देशवासियों फिर दिन देश की एक बहुत वड्डी तस्वीर तैयार थी पई है। हम तस्वीर तुसा भी हो तो परिवार भी है तो थोड़े आस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं गल कर रहा भारत की जनगणना की। देश के सारे राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों इसका पहला

सोमनाथ मंदिर वर्गा आस्था का इतना वड्डा केंद्र खंडित किया गया होवे ते बंग थावां ते वी हमले होए होवन ता किसी भी समाज या शासन का मनोबल टुट सकता है। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया बल्कि कुछ ही समय विच वो डेरा सुरा निर्माण मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिता। इंजी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर भी वार बार विनाश के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों डेरा सूर्या मंदिर से भी बाद के खान खांड हमले रुके कहीं नहीं। बाद विच अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक बारी वहां वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिता है। लेकिन साथियों असल भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु के मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। साडी सूर्य उपासना का एक अर्थ यह भी होता है प्रकाश ऊर्जा विज्ञान से निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा अज न केवल सूर्य मंदिर नहीं जाना रहा है बल्कि गुजरात का एक गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सोर जुर्जा नाल चलता पे ते उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का एक उदाहरण पेश किया है। मोढेरा इच पर्यटकों लई कई आकर्षण ते सुविधाएं भी शुरुआत भी हुई है। जनवरी इच मकर संक्रांति के बाद उत्थे मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इस विच भारत के सांस्कृतिक ते शास्त्रीय नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति थींदी है। मैं चाहता कि तुसा सभी एक बारी मोढेरा जरूर वंजो तो भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करो। साथियों अतीत नाल साडा जुड़ाव अज भी बहु जीवंत है। इसके पिछे उन्होंने लोगों का समर्पण है परिश्रम है जेडे इस होर गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु च तुरु चिरापल्ली के मनपराई च अजा ही एक अनूठा प्रयास थींदा पे। एक कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडी नाल जुड़े ए सेल्व राजू जी इस नूं अगे वधा रहे हैं। एक लैक्चर के दौरान उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमा की जानकारी मिली। इस विषय से चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्होंने अलग अलग जगह से कई प्रतिमावां मिली ते पुराने मंदिर मिले। अतीत नाल जुड़न का यह एक रोचक प्रयास है। इस तरह अस अपनी विरासत को होर बेहतर तरीके नाल जा सकते हैं। देश के दूजे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। यह साकू अपने इतिहास को नजदीक तो वेखण ते समझण का मौका देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों कुछ दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू जी का जयंती दिहाड़ा है। बापू ने सानू जीवन के बहुत सारे मंत्र दिते हैं। स्वच्छता भी उन्हां विचों एक है। अस अक्सर अपने आस पास स्वच्छता नाल जुड़े बहुत सारे प्रयासों नूं देखते हैं। यह प्रयास बहु प्रेरित उत्साहवर्धक होंदे हैं। सोशल मीडिया से भी इंजी तस्वीर इंजी वीडियो इंजी रील वार वार साडा ध्यान खिंचदे हैं। हाल के दिनों च मैं इंजे कई प्रयास दिखे हैं। किथे मध्य प्रदेश च कुछ नौजवाना नदी का सफाई का काम कर रहे हैं। उन्होंने छोटे जे प्रयास पूरा समाज जुड़ता पे। इवें ही आंध्र प्रदेश युवा पुरानी बावड़ी के खूह की सफाई करने पे हैं। इस तरह साडी पुरानी धरोहर नहा तू सवारन का काम थींदा पे। मुंबई च कुछ युवा समुद्र तटा साफ रखने की पहल करने पे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच से सैकड़ो युवा साथी इकट्ठे थी के स्वच्छता की सेवा करने पे हैं। इतना दिल्ली च बाल ते युवा लोगों नू कचरा अलग अलग रखने किते अपने नेड़े तेड़े सफाई रखने किते जागरूकता की जाती पे। पश्चिम बंगाल च युवा छात्रा ते लोकल लोगों ने नाल मिल के पिकनिक स्थाना ते बाजारा की सफाई की जाती पई है। साथियों इन्हां सारे यत्नां च एक गल बहु सहायता नाल दिखी जाती है कि शुरुआत एक व्यक्ति ने की मुड़ उस दे नाल कुछ होर लोग आ गए कारवां वधदा गया। इहो ते जन भागीदारी है। बापू के प्रति साडी सब तो खूबसूरत श्रद्धांजलि स्वच्छता की है। मेरे प्यारे देशवासियों असा पर्यावरण की रक्षा करने हां ते असा सिर्फ पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को ही नहीं बचाते असा उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करने हां। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके नाल सामने लेके आंदे पए हैं। साथियों असम में सुनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समा आई जेड़े उत्तर हाथियां का बसेरा होया करंदा है लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन ते इंसानी दखल वधदा गया जिस करके हाथियां ने इस इलाके तो दूरी बना दी। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण तो मुक्त करवाया गया ते हुण इस दे अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी उत्तर मुड़ वापस आए हैं। जिस इलाके च वर्षा नूं उन्हां दी चहल पहल नहीं थींदी आई अज उत्तर मुड़ हाथियां दे झुंड दिते रहिंदे हन। साथियों असम च बिया सुंदर प्रयास थिया है। यह प्रयास एक बहुत छोटे जीव पिगमी ओग नु बचावन किते थिया है। एक समा इस दे अस्तित्व ते संकट मंडावन लगा है ते उस वेले कुल 6 पिगमी ओग दे नाल एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने मुड़ जंगलों च वसाया गया। उन्होंने रावण किते ग्रासलैंड को भी

0: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
1: अज दा दिन ओ भागा भरिया दिन है जिस दिन साडा ए भागा वाला पैदा होया सी, यही साडे शहीद भगत सिंह 28 सितंबर 1907। ओ बंगा भावे इस वेले पाकिस्तान दे विच है, चढ़दे पंजाब दे विच नहीं है, लहंदे पंजाब दे विच है, पर अज वी असीं चेते करदे आ उस जगह नूं, नमन करदे आ। बहुत सारे साडे भैण भरा जो उत्थे बैठे ने ओ अज वी शहीद आजम भगत सिंह दा उन्ना ही सत्कार उन्ना ही प्यार उन्हां नूं दिंदे ने। पिता सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती ते पूरा दा पूरा परिवार देश भगती ते आजादी दी भावना दे नाल भरिया होया। चाचा अजीत सिंह जी, पूरे घर दे माहौल ने भगत सिंह दे मन दे उपर बचपन तो ही डूंगा प्रभाव पाया। और 1919 दा उह दिन, छोटे जे सी भगत सिंह, उन्हां दे उपर इस घटना दा बड़ा ही वड्डा असर होया। छोटी उम्र दे बाल नूं इस घटना ने झंझोर दिता। खुद जलियांवाले बाग दे उत्थों दी मिट्टी अपने नाल लै। इस दे नाल, इस घटना दे नाल अंग्रेजी हुकूमत दे विरुद्ध संघर्ष की भावना होर मजबूत हुई। भगत सिंह बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू सी, बहुत ही ज्यादा इंटेलीजेंट सन। उन्हां नूं इह लगदा सी कि सिर्फ जोश नहीं काफी, तुहाडे कोल ज्ञान भी होना चाहिदा, विचार भी होने चाहिए। लाहौर दा ओ नैशनल कॉलेज अज भी इस गल दी गवाही भरदा है कि भगत सिंह वर्गे इनकलाबी सोच दे नौजवान जो वक्त तो किते अगे सी, जिसने अलग अलग लेखका दियां रचनावां पढ़िया, अलग अलग तरीके दे नाल और हर तरह दी उस जज्बे नूं धारण भी कीता। सचमुच देश दे प्यार दी जो उन्हां दे मन दे विच इच्छा सी, जिस तरीके दे नाल ओह अपने देश नूं प्यार करदे सन, ओह किसे दे अंदर नहीं सी। अपने देश नूं हर कोई प्यार करदा है, पर भगत सिंह ने एक इनकलाबी सोच दित्ती और यही कहा कि मैं हमेशा अपनी सारी जिंदगी अपने देश दे लेखे ला दवांगा। आजादी दी लहर च सरगर्मी भी दिखाई। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन ने सारी घटनावां दा उन्हां दे ज़हन दे उपर बड़ा वड्डा प्रभाव पिया। फिर 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त दे नाल जदों उन्हां ने केंद्रीय विधानसभा सी जिथे उन्हां ने बंब सुटिया, तां उन्हां दा इको इक मकसद सी कि बोली हकूमत नूं सुनाउणा है। किसे नूं हर्ट नहीं सी कीता उन्हां ने, और उन्हां दा इको इक मकसद सी कि असीं साडे ते मुकदमा होएगा, उस मुकदमे दे जरिए असीं अपनी तकरीरां रखांगे। उन्हां तकरीरां नूं अगले दिन अखबार च छापिया भी गया और जो भगत सिंह दी स्ट्रैटेजी सी उसे तरीके ही होया। वो चाहुंदे सी कि लोकां तक उन्हां दी आवाज पहुंचे, जिस आवाज नूं उस वेले दी हकूमत दब रही सी। जेल दे विच भी उन्हां ने अपना यह संघर्ष जारी रखिया। बहुत सारे लोग कहिंदे ने भगत सिंह नास्तिक क्यों सी, पर उन्हां दे विचार जे अज तुसीं पढ़दे हो ते अज

ਸੂਟ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: मंजीत बहन
1: जी, निरंकार भाई,
0: भाई आज जो कृषि से जुड़ी जानकारी हमारे पास है, आज हम भाइयों से बातचीत करेंगे कृषि संबंध में। और हम जानते हैं कि जो पानी की हम जब बात करते हैं, बिना पानी के कोई भी फसल उगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। इसीलिए पानी बहुत कीमती है, उसका बचाव करना जरूरी है। और कई फसलें ऐसी हैं जिनमें आप कम पानी से भी अच्छी उपज ले सकते हैं। हमारे देश के कुछ बरानी इलाके हैं, उनमें हम उन्हीं फसलों को शामिल करते हैं जिससे कि पानी की कम जरूरत के साथ भी हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। और जब हम पलेवा करते हैं या हम अपने खेत की तैयारी अच्छी से करना चाहते हैं तो उसमें पानी की खपत बहुत होती है। लेकिन जो जमीन के अंदर जैसे इस समय बारिश हो रही है या पहली फसल की सिंचाई के बाद थोड़ी नमी बची है, तो ऐसी नमी को हम बचाकर रखते हैं मल्चिंग करके, और उस नमी के अंदर ही हम अगर सरसों और चने की फसल को लेना चाहते हैं, उसकी बिजाई कर देते हैं, तो अंकुरण के बाद वो फसलें हमें अच्छा उत्पादन दे सकती है। क्योंकि सरसों और चना ऐसी फसलें हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, और चने के लिए तो बहुत ज्यादा भूमि की तैयारी करने की भी जरूरत नहीं होती है, और ये हमें अच्छा उत्पादन दे देती हैं। तो जो संरक्षित मृदा है उसकी नमी से हम अपने खेत की तैयारी करके अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पानी की बचत करते हुए फसलों का उत्पादन भी अच्छे से ले सकें। और इसके अलावा जो हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई इस समय रबी फसल की बिजाई की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सितंबर समाप्त होने को है और जो खड़ी फसलें हैं उनका भी ध्यान रखना है। सब्जी की फसलें भी इस समय खेतों में होगी, तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि पर्याप्त नमी बनी रहे, और जरूरत से ज्यादा पानी देने से बहुत अच्छी फसल नहीं होगी। ये भी हम बताना चाहेंगे, जरूरी है अगर ज्यादा पानी आप देते हैं तो कई बार फसल को अधिक नमी से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो सिफारिश वैज्ञानिक करते हैं उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी की जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर विधि है, टपक विधि है, ये बता जाता है कि आप इसका इस्तेमाल करके कम पानी का इस्तेमाल करते हुए भी भरपूर उत्पादन ले सकते हैं, और भरपूर उत्पादन आपको मिलेगा, साथ साथ गुणवत्ता भी आपकी फसल की अच्छी होगी। क्योंकि बहुत ज्यादा नमी में भी बीमारियां बढ़ती हैं, और इसी तरह से अगर उर्वरक भी ज्यादा मात्रा में आप देते हैं उसका भी नुकसान होता है। बार बार हम कार्यक्रम में बताते हैं कि वैज्ञानिक जो आपको सलाह देते हैं, जब आप उसके मुताबिक अपनी कृषि को करते हैं आपका खर्चा भी कम आता है और उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही आपको अच्छी मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और संरक्षित मृदा की हम बात करें, नमी में सरसों और चने की सफल बुआई करके और बरानी या फिर कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी बंपर पैदावार की जा सकती है। और खेत की तैयारी की बात करें और नमी संरक्षण की बात करें तो कम या फिर शून्य जुताई

0: यानी कि खेत के जो बार बार जुताई करने के लिए जो मिट्टी जो होती है वो नमी हो जाती, नमी पड़ जाती है और हवा में वो उड़ भी जाती है, तो उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और पाटा लगाना यानी कि जुताई के तुरंत बाद खेत में भारी पाटा जरूर चलाएं और मिट्टी की ऊपरी परत समतल हो जाती है जिसकी वजह से उसको फायदा मिलता है। मल्चिंग की, जैसा कि आपने बताया, मल्चिंग बहुत जरूरी है हमारी उपज के लिए भी। और सरसों की बात करें, सरसों की सफल बुआई की अगर हम बात करें तो सही समय जो है वो अक्टूबर का हो जाता है जो कि आने वाला है। और बीज की बात करें, बीज दर और उपचार भी हमें बहुत आवश्यक है। किसी भी अगर हम कोई भी उपज लेते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा बीज जरूर लेना चाहिए और उसको उपचार करके ही हमें अपने खेत में लगाना चाहिए। और अगर हम बुआई की बात करें तो गहराई और दूरी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन का भी हमें समय समय पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ साथ सल्फर गंधक उनका भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी सरसों की जो फसल है वो बेहद उनके लिए जरूरी है और जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में हमें सरसों मिल पाएगी। और चने की बात करें तो चने का सही समय भी अक्टूबर और नवंबर के बीच का होता है और मिट्टी के अंदर नमी की जरूर जांच कराई ली जाए और गहरी और गुड़ाई की जाए। इसकी जो हम गुड़ाई करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से हर तरीके से उनमें जितनी भी जरूरतमंद चीजें होती है वो हमारी मिट्टी में पहुंचेगी और अच्छी उपज मिलेगी। और बीज की दर और फासला भी इसमें भी बहुत जरूरी है। तो निरंकार भाई, क्या कहते हैं कि और किन किन बातों का हमारे जो किसान भाई बहन है उनको ध्यान रखने की जरूरत है?
1: हाँ, आपने विस्तार से जिक्र कर ही दिया है, तो ये सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रख करके हमारे किसान भाई सफल उत्पादन ले सकते हैं। और जब आप बात करते हैं, हम संतुलित बात की, चाहे वो खाद है चाहे बिजली पानी है, इनका संतुलित उपयोग करके हम अपना खर्चा कम कर सकते हैं। जब खर्चा कम होगा तो आपकी आमदनी अपने आप ही
0: बढ़ जाएगी। बिल्कुल,
1: तो आमदनी आपको बढ़ानी है, गुणवत्ता आपको बढ़ानी है। और अब बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 का शुभारंभ किया और इसमें राज्यों को स्पष्ट उनका तालमेल बना रहे, वैज्ञानिक योजनाएं बनाए, जमीनी निगरानी के साथ साथ रबी सीजन की तैयारी पूरी करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी जैसी चुनौतियों के बीच अब पुराने तरीकों को नहीं बल्कि डेटा आधारित योजना और केंद्र राज्य साझेदारी से भी खाद्य सुरक्षा और किसान आय के लक्ष्य पूरे होंगे। तो जो ये कार्यक्रम हुआ है इस पर एक रेडियो रिपोर्ट अपने किसान भाइयों को हम सुनवाते हैं, तो आइए सुनते हैं रबी अभियान पर ये रेडियो रिपोर्ट।
2: आज दिनांक 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार NASC परिसर पूसा में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा रबी अभियान 2026 के लिए भारतीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारक आगामी रबी मौसम की प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इस दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्र राज्य तालमेल को मजबूत करने तथा कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक समन्वित और परिणाम उन्मुख रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री संजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार, ने इस अभियान की प्राथमिकताओं और कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए अपने संबोधन में कहा,
3: मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, साथ ही माननीय राज्य मंत्रीगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित सभी राज्यों से आए वरीय पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और विभिन्न योजनाओं को संचालित करने वाले सभी संचालकगण, आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता ये दिखा रही है कि हम सब एक देश एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान की जो रूपरेखा है राज्यों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और इस राज्यों के प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य है कि राज्य अपनी बात बता सके, अपनी जो अच्छी बातें वो बताए, कोई चुनौती आ रही है उसके बारे में बताए, तो इसको लेकर के सभी राज्यों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और कल इस मंच से कुछ प्रस्तुतिकरण होंगे और सभी राज्यों के कृषि मंत्री

0: भी उपस्थित रहेंगे और वो अपनी बात और अपने राज्यों का जो स्थिति है उसके बारे में प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सबने सहभागिता की, मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ।
1: डॉक्टर एम एल जाट, DGICAR और सचिव डेयर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
2: 2047 की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल एग्रीकल्चर, रिस्क रिडक्शन, ये सारे के सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हमारा मुख्य जो फोकस है वो ऑयल सीड और पल्सेज पे है और आने वाली रबी सीजन में इस पे हमें काफी फोकस करने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन दोनों साथ चलते हैं तो मुझे लगता है कि हमें फोकस्ड एजेंडा पे काम करना है। जैसे एक एरिया है जो राइस फैलो का है जो हमें इंटेंसिफिकेशन की तरफ ले जाता है, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है। हम सब लोग राइस फेलो पे काम करते हैं लेकिन सारे इकट्ठित होकर टारगेटेड वे में यदि इस पे फोकस करेंगे रबी में तो हमें कुछ सफलता मिलेगी। एक मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है लेकिन उसके लिए पूरा पैकेजिंग, कौन सी क्रॉप कहाँ पे, कौन सी वरायटी, उसका सीड, कौन सा मैकेनाइजेशन, उसमें बायोलॉजिकल सोल्यूशन, सीड ट्रीटमेंट के, ये सारी चीजों पे पैकेजिंग की बात करने की जरूरत है। दूसरा है कि हमें ऑयल सीड पल्सेज के कॉन्टेक्स्ट में जो यील्ड गैप्स हैं उनके डिटर्मिनेंट्स क्या है उसको करके ताकि हम जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसको टारगेट कर सके, टारगेटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये विषय है। तीसरा विषय मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का अभी कृषि मंत्रालय का ICAR के साथ मिलकर एक स्टडी हुई है, मुझे लगता है हमें प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है। हमारा टिलेज मैकेनाइजेशन ऑलमोस्ट सैचुरेशन पे 100%, तो जहां पे गैप है उस पे फोकस करने की जरूरत है। हालांकि ऑयल सीड पल्सेज का इंडेंट में हमने अच्छी प्रगति की है लेकिन बाकी क्रॉप्स में अभी इंडेंट में जो आता है उसमें थोड़ा सा इश्यू है और स्पेशली जैसे प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर का इंडेंट काफी ज्यादा आता है। लेकिन यदि सीड शेयर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा तो इंडेंट नहीं आता तो सीड कहां से आता है, मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा सा मंथन चिंतन होना चाहिए। एक हमारा रबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है ताकि हमारी सही रूपरेखा बन पाए। हमारे ICAR के लोग स्टेट्स के डिस्पोजल पे हैं तो जिन जिन स्टेट्स में अभी थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है उनमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। एक हमें बेस्ट प्रैक्टिसेज अभी एलनिनो के कॉन्टेक्स्ट में ही यदि हम देखें तो कई सारे स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। आगे की रबी की परिस्थिति भी क्योंकि बारिश को देखते हुए जैसी होने वाली है तो हमारी प्रिपेयरनेस उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फर्टिलाइजर आत्मनिर्भरता मुझे लगता है सबसे बड़ा एक विषय है और उसके लिए एक अप्रोच नहीं, एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन की जाने की जरूरत है। उसमें अभी जनरल जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो भी रिवाइज हुई है, उसके ऊपर भी काफी बड़ा एक फोकस है, मुझे लगता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे इंडिजिनस सोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उनका सही उपयोग करके सोयल हेल्थ को ठीक करके कैसे हम फर्टिलाइजर का डिपेंडेंस जो इम्पोर्ट है उस पे कम कर सकते हैं।
1: श्री अतीश चंद्रा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने सम्मेलन की पृष्ठभूमि और आगामी रबी अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा।
3: देखिए, रबी कॉन्फ्रेंस एक टाइम टेस्टेड व्यवस्था रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम जो सीजन हमारा गुजरा है उसको देखें और आगे जो हमारा सीजन आने वाला है उसको हम कैसे उत्कृष्ट रूप से इम्प्लीमेंट करें। सभी ने देखा है कि इस बार जो हमारा खरीफ सीजन गुजरा है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, स्पेशली जो रेनफेड एरियाज हैं वहां पे राज्यों को काफी दिक्कत हुआ। पहले तो क्रॉप कवरेज इंश्योर करने में और बाद में अब क्रॉप के सर्वाइवल का जो एक चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है और जो रबी सीजन है वो भी जो रेनफेड एरिया है उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। और उसमें जो हमारी प्राथमिकताएं हैं कृषि की वो बहुत वेल लेड आउट है। देखिए, हम लोग ने सीरियस प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इस देश ने परफॉर्म किया है और हम लोग ने काफी आत्मनिर्भरता भी हासिल की है। लेकिन वहीं हमारा जो पल्सेज, ऑयल सीड्स, हमारा हॉर्टिकल्चर रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो उसमें हम अभी भी बहुत बड़ा आयात कर रहे हैं। तो जो पहली बात है सेल्फ सफिशियंसी की जो हमारी प्राथमिकता है और उसी के संग डाइवर्सिफिकेशन उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हमको सेल्फ सफिशियंट बनना है तो हमको डाइवर्सिफाई करना होगा और डाइवर्सिफाई करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको हमको सामना करना पड़ेगा। वो चाहे हमारे रिसर्च बाकी जो प्रैक्टिसेस के चैलेंजेस हैं, वो हमारे जो क्लाइमेट रेजिलियंस के चैलेंजेस हैं, जो उससे रिलेटेड इनकम के चैलेंजेस हैं, उन सबको हमको सर्कमेंट करना पड़ेगा, उन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये हमारे रबी सीजन में भी आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि जो मॉइस्चर है वो काफी चैलेंज रहेगा इन स्टेट्स जहां पर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस रहा है, यहां पे डेफिसिट रही है रेन की, तो वहां पे हमको अपने रबी सीजन को कैलिब्रेट करना होगा। जो दूसरा है कि जब हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बनाना होगा। जो थर्ड हमारा मुख्य देश रहा है प्राथमिकता में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन हो, और खासकर पोस्ट प्रोडक्शन में जो हमारे ऑन द फार्म लॉसेस हैं उसको लगातार कम करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना होगा।
1: माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा,
4: भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी, डीजी आईसीआर और सचिव डेयर एमएल जाट जी, और राज्य से आए हुए सभी अधिकारी मित्रों, सबसे पहले आज मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज रवि की कॉन्फ्रेंस के लिए मित्रों हम यहां उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि कृषि, अनाज, फल, सब्जियां, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। कृषि विकास दर में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम करने की जरूरत और है। अब रबी की जब हम बात करते हैं तो खरीफ, जिसमें बहुत चिंता थी मन में, अब क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है, एक तरफ महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, बड़े हिस्सों में सूखे का संकट है, तो अभी कल खबर आई कि यूपी में कई मौत इसलिए हो गई कि भारी बारिश के कारण हो गई। क्लाइमेट चेंज के असर साफ नजर आ रहे हैं। अलिनो के प्रभाव के कारण हम चिंतित थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा आप सबको, पूरी टीम को, लगभग खरीफ की बुआई का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। हाँ, फसलें जरूर प्रभावित है कई जगह। मैं आज इस बैठक में ही आपको आग्रह करना चाहता हूं कि खरीफ की फसल का कुछ जगह खराब होने के खतरे पैदा हुए हैं। कर्नाटक ने भी सूखा डिक्लेयर किया है, महाराष्ट्र ने भी, लगभग दो तिहाई राज्य में उन्होंने अपने यहां राज्य के स्तर पर सूखा घोषित किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं राज्यों को, केंद्र सरकार आपके साथ डट के खड़ी है। 3 अक्टूबर को कर्नाटक में केंद्रीय टीम भेजेंगे सूखे का अध्ययन करने के लिए। जहां संकट है वहां मिलकर मुकाबला करना है, और रबी की तैयारी भी करनी। और रबी की तैयारी की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, कुछ जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है, कुछ जगह एवरेज से कम है, लेकिन पानी बहुत इतना गिरता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोनी पर। उन राज्यों के मित्रों को भी मेरा कहना है कि आप रबी की प्लानिंग पूरे साइंटिफिक तरीके से कीजिए, और जिन हिस्सों में देश के कम पानी है वहां कितना पानी की उपलब्धता है, नमी कितनी है, सिंचाई के पानी के लिए अभी से प्रबंध करें। मुझे लगता है कि इस समय जल बजट बनाने की जरूरत है। पानी सीमित है, उस पानी का उपयोग कैसे करें, उस पानी को देखते हुए कौन सी फसलों की हम सलाह दें, प्लानिंग करें। और तैयारियों में मैं समझता हूं कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम रबी की बुआई के मुहाने पे खड़े हैं। एकदम रेनफेड इलाके में तो जल्दी अब बोनी शुरू हो जाएगी, और जो रेनफेड नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था है उसकी तैयारी हम अलग से रखें। दूसरे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के बाद, मिट्टी में हम नमी कैसे बचाएं और समय पर बुआई कैसे करें। फिर जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, उत्पादन ठीक नहीं आएगा, और इसलिए समय पर सारी तैयारी कर लीजिए। और मैं ये मानता हूं कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है बीज, और बीज की तैयारी उपयुक्त बीज, उपयुक्त किस्म, पानी को देखते हुए। यहां भरपूर पानी है वहां आप देखिए कौन सी किस्म, जहां पानी की कमी है वहां कौन सी किस्म का बीज आपको चाहिए। कई बार मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि कुछ राज्य पर्याप्त मात्रा में ना तो बीज की डिमांड करते हैं ना बीज उठाते हैं, और कई जगह बीज का वितरण इतनी देरी से होता है कि जब तक वो बीज आते हैं तब तक बोनी हो जाती है, फिर वो बीज जो बहुत उपयोगी है। और इसके बाद आप अभी से ये तैयारी भी करिए, अब हमने दलहन में तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द पूरी खरीदेंगे, लेकिन कई जगह खरीद की तैयारी ढंग से होती नहीं, इसलिए तैयारी परफेक्ट और पूरी करें। बीज की उपलब्धता, उसका उठान, उसका उनका वितरण इसका

0: लगता कि हमारे सम्मेलन परिणाम मूलक हो पाएगा। और एक मुझे लगता है, हर सप्ताह हमने एक सिस्टम यहां विकसित करने की कोशिश की है कि एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं हम, जिसमें फसलों की क्या स्थिति उसकी जानकारी लेते हैं, फसलों की स्थिति, मार्केट के रेट, बीमारी का अटैक, रियल टाइम में सारी चीज पता चलनी चाहिए। एक और अपनी ड्यूटी है कि उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल, लेकिन संतुलित उपयोग हो, यह हमारी राज्य की भी ड्यूटी है भाई। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। खेत बचाओ अभियान हमने खरीफ की फसल में चलाया था, रबी की फसल के लिए भी खेत बचाओ अभियान चलना चाहिए। माटी भी बचाना है, मित्र कीटों को भी बचाना है, इसलिए संतुलित इस्तेमाल कैसा हो इसकी कोशिश आप कीजिए। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए भी एक मौका है, हम इस समय रबी में प्राकृतिक उत्पादों के लिए रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है, किसान भी आ गया है, लेकिन राज्यों को अपने प्राकृतिक उत्पाद की मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। हमको कोशिश करना पड़ेगा कि इस दिशा में भी हम काम करें।
1: इसी के साथ रबी अभियान 2026 के लिए भारतीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार मीणा, संयोजक शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: तो भाइयों बहनों, और अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट जो कि रबी अभियान 2026 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन पर थी, जो कि नास कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका आज से शुभारंभ हो चुका और ये कल तक चलेगा।
3: बिल्कुल, और अब हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें इंतजार होगा मनोरंजन का, तो क्या सुनवा रहे हैं?
2: बिल्कुल, अब हम सुनवाएंगे जो कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत।

0: तो अभी आप कलाकार सुन रहे थे भूपिंदर सिंह की आवाज में नर से ज्यादा धानी। और अभी हम आपको बता दें, जिस तरह से हम आप सभी जानते हैं कि अलग अलग दिवस आज हम मना रहे हैं, और आज विश्व रेबीज दिवस के साथ साथ अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना तक पहुंच दिवस भी आज यानी कि 28 सितंबर को मनाते हैं, और यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 2015 को इस दिवस की घोषणा कर दी गई थी, और 2016 से इसको मनाया जाने लग गया था, और 2019 में संयुक्त महासभा ने भी इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी। और उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में सूचना के अधिकार के महत्व को समझाना, जानकारी जो है वो सही जगह पर पहुंचाना, मुफ्त में और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है, और ताकि लोकतांत्रिक व समावेशी समाज का निर्माण हो सके। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिन जो दिन हम आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सही इन्फॉर्मेशन और सटीक जानकारी पाना और इंसान को जो बुनियादी अधिकार भी है, और जिससे कि वह अपने जीवन और समाज के बारे में एक सही फैसला भी ले सके।
1: और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और अगर उससे हमारा एक भी श्रोता लाभान्वित होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेजते रहिए। और मंजीत बहन, अब हमारे जो घड़ी से मिला है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा, तो भाइयों से हम इजाजत लेते हैं। सभी सुनने वाले बहन भाइयों को राम राम, राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर
0: और संयोजक शिवनंदन लाल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: लोन आसानी से पाओ। ले लो। आप कौन?
1: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जिन मतदाताओं को विसंगतियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को आसान बनाना तथा उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की जरूरत कम करना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने विद्यार्थियों से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। ये शिविर बुधवार तक चलेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती है। दावों और आपत्तियों पर नोटिस और उनके निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में श्री यादव ने दिल्ली के 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने शमशान घाटों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी उपाय तलाशने और विद्युत शवदाह गृहों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली उपलब्ध है। धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सड़कों के पुनर्विकास और फुटपाथ निर्माण का काम तेज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
3: नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। इसके साथ ही 10 संपत्तियों को सील किया गया और 7 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। नगर निगम ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कड़ी निगरानी बनाए रखें और दिल्ली मास्टर प्लान, भवन उपनियमों तथा अन्य संबंधित नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। नगर निगम ने कहा कि ये प्रवर्तन अभियान राजधानी के सभी 12 जोनों में जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्यमियों, व्यापारियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयां और निवेशकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अनुमतियों तक एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसान पहुंच मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आगे भी पोर्टल में और अधिक सेवाओं को जोड़ने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करेगी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मंजेंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि अभी तक 15 विभागों को पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।
2: सभी दिल्ली डिपार्टमेंट्स को अब तक हमने 15 डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड ले लिए हैं, 50 से ज्यादा सर्विसेज कर दी हैं। अगले महीने तक 100 से ज्यादा सर्विसेज और 21 डिपार्टमेंट जो हैं वो इसके ऊपर ले लिए जाएंगे।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक जा रही बाइक यात्रा आज दिल्ली बॉर्डर पहुंची। इस अवसर पर यात्रियों का स्वागत करते हुए दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा मार्ग में निरंतर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है।
3: इस यात्रा का सबसे शानदार पक्ष ये है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत यात्रा निकली है और जहां भी जा रहे हैं वहां सेवा के कार्यों को कर रहे हैं। अब दिल्ली में भी आते ही यहां से सीधा वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए गए हैं, उसके बाद हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान भी सभी यात्री करेंगे।
0: इसके बाद यात्रा वाराणसी के लिए पुनः प्रस्थान करेगी। दिल्ली के उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने आज गिरधर लाल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा चिकित्सा और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस अवसर पर डॉ पंत ने बताया कि अस्पताल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उप महापौर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता तथा उपचार संबंधी व्यवस्थाओं के नियमित समीक्षा की जाए। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निःशुल्क रेबीज जागरूकता और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। NDMC ने बताया कि इस शिविर में पालतू पशुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, एंटी रेबीज टीकाकरण और पशु चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही पशुओं की देखभाल और रेबीज की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, बीमा दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की यात्रा के दौरान लीमा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने पेरू और पड़ोसी बाजारों में भारतीय व्यवसायों की उपस्थिति के विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय केवल आर्थिक योगदान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी हैं, जो भारत और पेरू के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
4: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रूपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: सरकार ने राजधानी की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत साझेदारी को स्थापित कर सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
6: दिल्ली सरकार ने बताया कि इस समझौते के अंतर्गत राजधानी के स्थापित और युवा कलाकारों को ICCR की प्रतिष्ठित होराइजन सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों में सहभागिता का सीधा अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ICCR के विशिष्ट शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विदेशी अतिथियों और विद्वानों की मेजबानी दिल्ली में की जाएगी। इस समझौता में ICCR से जुड़े विदेशी छात्रों के लिए राजधानी में अध्ययन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। वहीं दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी के लिए आवश्यक खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 2.5 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह गिरफ्तारी ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की गई है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
7: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह भारत के शौर्य, साहस और स्वाभिमान की अमर चेतना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली की विश्वविद्यालय के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के 35वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ऐसे अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को निरंतर सफलता और भविष्य में अनेक नई उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं के से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। आरंभ में आइए सुनते हैं आशिकी 2 फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने।

अगला गीत हमने लिया है कुछ ना कहो फिल्म से, जिसे आवाजें दी है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में अब आइए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का।

यारा दिलदारा, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

1920 Evil Returns, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर की स्वर में। गीत शकील आजमी का लिखा है और संगीत चिरंतन भट्ट द्वारा रचित है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा।

0: बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने यह बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहां भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
2: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या की दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता है और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बंटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया, साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि ये लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
2: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
4: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
5: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई साथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
4: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया के हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for a stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation.

अब से कुछ ही देर के बाद यानी 9:20 पर जनाब अंदलीब अख्तर की तहरीर करदा तकरीर आप सुनेंगे, शहीद भगत सिंह और तहरीक आजादी। नौ बजकर 45 मिनट पर खबरें नशी की जाएंगी और 9:55 पर कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से, मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत। शाम के 10 बजे आप मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुनेंगे और 10:30 बजे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा तामीले इरशाद। तामीले इरशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:45 तक। पुराने प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सख्ती से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। शब के 11:45 पर कवालियां पेश करेंगे प्रभा भारती कवाल और हमनवा और शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी। बारह बजकर 10 मिनट पर क्लासिकी मौसीकी प्रोग्राम में आप सुनेंगे विदुषी अनुपम महाजन का सितार पर बजाया राग मालकौंस। शब के 12:30 बजे आखिरी शब प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब के 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने यह था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: डीजे म्यूजिक हजारे खत्ते किलो खर्च मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। और इसे आप सुनिए जनाब अंदलीब अख्तर की तहरीर करदा तकरीर शहीद भगत सिंह और तहरीक आजादी इस मौजू के हवाले से।
1: शहीद भगत सिंह का नाम जबान पर आते ही कैसे जाबाज वतन प्रस्त मुजाहिद का तस्वीर जहन में आता है जिसने मादर वतन से तौके गुलामी उतार फेंकने के लिए अपनी अजीज जिंदगी का हर लम्हा वक्फ कर दिया था और जिसने अपने गले को हंसते हंसते फांसी की नजर कर दिया। तख्तादार पर चढ़ते हुए भगत सिंह का वो आखिरी जुमला जो उसने मुस्कुरा

करते हुए अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर से कहा था, आज भी हर हिंदुस्तानी के लिए एक मशालेरा है। उन्होंने कहा था, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप नहायत खुशकिस्मत हैं कि आपको ये देखने का मौका मिला कि इनकलाब पसंद हिंदुस्तानी अपने हुसूल मद्दुआ के लिए किस खुशी के साथ मौत से बगलगीर हुआ करते हैं। सरदार भगत सिंह की पैदाइश जिला लायलपुर में हुई थी। इनका सिलसिला खानदान एक मशहूर सरदार कबीले से ताल्लुक रखता है, जिन्होंने रंजीत सिंह वालिये की क्यादत में सिख सल्तनत की तरक्की की गर्ज से मगरिब के जंगजू पठानों और मशरक में खतरनाक अंग्रेजों के मुकाबले में दिलोजान से कोशिश की। सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह की उम्र जब 80 साल की थी तो भी वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। शहीद भगत सिंह की दादी श्रीमती जय कंवर हिंदू समाज की एक अकलमंद और दिलेर खातून थी, जिन्होंने अपने बेटों और पोतों की परवरिश की बार का बार नहायत खूबी और मुस्तकिल मिजाजी से अंजाम दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही भगत सिंह के दिल में उनको मादर वतन की खिदमत करने पर मजबूर कर दिया था। चुनांचे उन्होंने पंजाब की चंद बागियाना सोसाइटियों में खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1922 में जब तर्क मवालात की तहरीक में कुछ कमजोरी पैदा हुई तो नौजवान दिलों में एक इस्तराब सा पैदा हो गया और असल में यही बागियाना जमायतों के जहूर का सबब बना। 1914-15 के लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के सिलसिले में सिखों ने जो कुर्बानियां दी थी ऐसी जमायतों के नशूदनुमा में बहुत ज्यादा मदद की और इसका असर भगत सिंह के दिलो दिमाग पर ऐसा पड़ा कि ताहयात वो किसी तरह जायल न हो सका। जब सरकारी महकमा खुफिया ने इस तंजीम का पता लगा लिया और इसके मेम्बरान को गिरफ्तार करना शुरू किया तो भगत सिंह अपने जारहाना तहरीक जारी रखने की गर्ज से पंजाब छोड़कर कानपुर में बोधबाश इख्तियार कर ली। कानपुर में भगत सिंह की जिंदगी का एक नया बाब खुला क्योंकि यहां पहले से ही एक मुनज्जिम बागियाना तंजीम का वजूद अमल में आ चुका था। इस तंजीम की बुनियाद वतन प्रस्त नौजवान सचिंदर पाल, जोगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने डाली थी और इस जमायत का नाम हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन था। भगत सिंह को इससे अच्छा मौका और कहां मिलता, वो फौरन ही इस इनकलाबी तंजीम में शामिल हो गए और अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए दिलोजान से कोशिश करने लगे। हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह का नाम बदलकर बलवंत सिंह रख दिया और भगत सिंह इसी नाम से मुख्तलिफ अखबारों और रसायल में इनकलाबी मजामीन लिखते रहे। 1926 का मशहूर काकोरी ट्रेन डकैती जिसमें हिंदुस्तानी रिपब्लिकन आर्मी के नौजवानों ने एक चलती हुई ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था बामुकाम काकोरी रोक कर उसमें सरकारी खजाना उतार लिया। इस वाकये के बाद पूरे अंग्रेजी मशीनरी में एक हलचल सी मच गई। पुलिस के अमला और महकमा खुफिया काफी जद्दोजहद के बाद भगत सिंह की खुफिया तंजीम का पता चल गया। भगत सिंह खुद को बचते बचाते हुए लाहौर चले गए लेकिन मुकदमा काकोरी कॉन्स्पिरेसी के फैसले के मुताबिक भगत सिंह के चार साथियों को सजाए मौत और दीगर बहुत से मेम्बरान को सख्त सजाएं दी गई। इस हादसे ने भगत सिंह के दिल में एक आग सी लगा दी, उनको और भी जोशीला और निडर बना दिया। उनके दिल में जो पहला ख्याल गुजरा वो ये था कि अपने साथियों का बदला कैसे लिया जाए, लेकिन हालात ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। इस दरमियान एक अजीब गरीब सानहा पेश आया। लाहौर में रामलीला के जुलूस में किसी नामालूम शख्स ने एक जबरदस्त बम फेंका जिसमें काफी लोग हलाक और जख्मी हुए। पुलिस ने फौरन ही इस जुर्म का इल्जाम भगत सिंह पर डाल दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुकदमा काफी अरसे तक चलता रहा। आखिरकार 60,000 रूपये की जमानत पर उन्हें जेल से छुटकारा मिला और वो फिर से अपनी इनकलाबी तहरीक में शामिल हो गए। चूंकि भगत सिंह का नाम आला दर्जा के इनकलाब पसंदों में था, पुलिस और महकमा खुफिया उनकी तलाश में हमेशा सरगर्म रहा। पुलिस अफसरान को बाजाबता हिदायत दी गई थी कि वो उन्हें जहां देखें फौरन गिरफ्तार कर लें। इसके अलावा इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ खास पुलिस दस्ते भी मुकर्रर किए गए थे। बावजूद इन सब बंदिशों के भगत सिंह इधर उधर आते जाते रहे और मादरे वतन को आजाद करने के लिए दिन रात अपनी जद्दोजहद जारी रखी। इस दौरान उनको तरह तरह की मुश्किलों और मशक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर नाउमीदी या उदासी के आसार दिखाई न दिए। भगत सिंह के इनकलाबी तंजीम के जरिए एक बदमाश अंग्रेज अफसर सांडर्स के कत्ल किए जाने पर उनकी जमायत ने एक नई रूप फूंक दी। इस जमायत का वकार आम लोगों में खुसूसन नौजवान दिलों में कायम हो गया और तुलबा में तो एक सनसनी सी फैल गई जिसके फौरी असर ने इस पार्टी को तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ाया। चूंकि भगत सिंह आम जनता के दुखदर्द से काफी मुतासिर थे इसलिए वो इनकलाबी होने के साथ साथ सोशलिज्म की तरफ भी रागिब हुए और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी तंजीम का नाम बदलकर दी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया था।
8 अप्रैल 1929 को दारुल

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also take calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Aaj Sombar hai aur aaj ke din आप हमारे साथ बातचीत करते हैं. आज भी हमसे आप पूछ सकते हैं कारोबार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
0: थैंक यू मनोज. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइंड शार्पली, सेंसेक्स टैंक्स ओवर 1100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year, and global crude oil prices surge around 3.5%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई भारी गिरावट. सेंसेक्स 1,100 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,800 के नीचे बंद हुआ. देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अगस्त में 8% बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगभग 3.5% उछले.

0: And before we take a look at the top story, there's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला लेकिन पहले खबरों से पहले आपको लिए चलते हैं गुड़गांव हमारे साथ फोन लाइन पर है मनीष मनीष जी स्वागत आपका सवाल पूछिए
2: नमस्कार सर और मार्केट मंत्रा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग बहुत ही गरिमापूर्वक और बहुत ही गंभीरता से आप ये प्रोग्राम चलाते हैं और किसी भी सस्ती या किसी नॉन सीरियस न्यूज से आप लोग बचते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सवाल सर ये है कि जैसे मैं टाइप में एमएफ में एक्सपोजर है मेरा म्यूचुअल फंड्स में जिसमें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप और थोड़ा सा डेट फंड्स में भी है अभी काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी एसआईपी रोक दूं क्योंकि मार्केट ठीक होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है हालांकि मेरा मानना यह था कि जब मार्केट गिरी होती है एसआईपी में तभी फायदा होता है क्योंकि कम एनआईवी पे आपको ज्यादा यूनिट मिलती है तो जब मार्केट उठेगी तो हो जाएगा लेकिन सर ये काफी टाइम हो गया है और अब आपको क्या लगता है कि क्या मुझे अपनी एसआईपी रोक कर उसको एफडी की तरफ या डेट फंड की तरफ किस तरफ मुझको डाइवर्ट करना चाहिए सर थैंक यू
3: मनीष जी देखिए आपका ये बहुत अच्छा फैसला है कि आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है लार्ज में भी है स्मॉल में भी है मिड में भी है फ्लेक्सी में भी है और आपका डेट फंड में भी है तो ये बहुत अच्छा आपका फैसला है और ये भी जो आपकी सोच है कि जब बाजार गिरता है तो उससे हमें फायदा ही होगा यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सपोजर जो है वो इक्विटी से कम करके आप डेट फंड में जा सकते हैं

0: और आपने खुद ही कहा कि फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड, तो मुझे लगता है कि डेट फंड का विकल्प आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि वहां पर एक निश्चित दौर पे जो है वो आपको ब्याज मिलनी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां जाएं आप, जो आपका मान लीजिए कि 100 रूपये में अगर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि अगर 70 रूपये आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, इन चारों को मिला देकर फ्लेक्सी स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप में, और 30% अगर आपने डेट में लगा रखा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि 40 कर दीजिए या 45 कर दीजिए, ये आपके लिए एक लंबे समय का बेहतर विकल्प होगा। SIP बंद मत करिए, ये जो है वो चल रहा है, चलने दीजिए। हो सकता है कहते कि गिरावट आती है, बिल्कुल गिरावट आई है बहुत, जैसे कहा जाए कि हर दिन निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो गिरावट का एक रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। पहले हमने तेजी की बात करी थी कुछ समय पहले, अब हम लोग गिरावट की बात कर रहे हैं। तो जैसे शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं कि एक आपका एक रेसिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल जो होता है। अब यहां पर जो सपोर्ट लेवल है वो काफी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है, और वो कहां तक जाएगा ईमानदारी से बताएं तो आज के दिन में कहना बहुत मुश्किल है। बाजार में एक और गिरावट की आशंका जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मेरी राय यह है कि आप बने रहें
1: जी। एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। सुदीप्ता इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम कोलकाता। सुदीप्ता, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: हेलो, नमस्ते। आई एम
1: सुदीप, तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप दोबारा अपना सवाल प्लीज रिपीट करें।
2: अगर कोई नया चाहता तो
3: सुदीप, तो हमें लगता है आपकी फोन लाइन में और हमारी फोन लाइन में सीधा संवाद संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप एक बार दोबारा फिर से प्रयास करें। आइए, बात चल रही है गिरावट की। वाकई शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है और आज भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। बंदड़िए बाजार पर हावी नजर आ रहे हैं। आज के कारोबार में प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो मिड कैप 100 इंडेक्स 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% नुकसान के साथ बंद हुआ, यानी कुल मिलाकर लगभग इस वर्ष अप्रैल के स्तर पर हम फिर से लौट आए हैं। बाजार में आज शुरुआत से ही कमजोरी बनी रही और लगातार पूरे सत्र में बिकवाल हावी रहे। दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने, बॉन्ड यील्ड में तेजी आने और विदेशी फंड द्वारा पूंजी निकालने का क्रम जारी रहा, जिससे सभी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।
1: Benchmark domestic equity indices declined sharply by over 1.5% today. The Sensex plunged 1,124 points to close at 72,772. The Nifty shed 360 points to settle at 22,780. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index tumbled 1.6%, while the Small-Cap 100 index tanked 1.8%. Markets opened with gap down this morning and continued their downward trajectory throughout the session as rising crude oil prices, escalating tensions in West Asia, surging global bond yields and persistent foreign fund outflows weighed heavily on investor sentiment.
3: सेंसेक्स पैक पर आज ध्यान दें तो इकलौती एक ही कंपनी मुनाफा कमाने में सफल हुई, बाकी सभी 30 में से 29 कंपनियों के शेयर घाटे में रहे। लाभ हुआ सिर्फ इन्फोसिस को, जिसके शेयर 0.2% ऊपर उठकर बंद हुए। घाटा उठाने वालों में प्रमुख कंपनियां रही लार्सन और टुब्रो, जिसके शेयर 2.8%, पावर ग्रिड 2.6% और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 2.4% का नुकसान हमने देखा।
1: इन द सेक्टरल इंडिसीज ऑन द BSE, ऑल 28 सेक्टर्स एज्ड लोअर। अमंग द टॉप लैगर्ड्स, PSU बैंक्स स्किडेड 3.2%, पावर टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटीज लॉस्ट 2.3% ईच, एंड मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स ड्रॉप्ड 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,218 companies declined, shares of 1,271 companies advanced, while shares of 228 companies remained unchanged.
3: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा

0: बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर हुआ, 95 रुपए 99 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: एंड लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कॉल। अमित झा इज ऑनलाइन विद अस, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। अमित, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
0: अमित जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लगता है आपका धैर्य चूक गया और आप हमारा संपर्क टूट चुका है। बहरहाल, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले प्रतिक्रिया हम लेना चाहें अपने विशेषज्ञ शिशिर जी से। आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारक क्या रहे शिशिर?
2: अब मुझे लगता है अमित शायद जुड़ नहीं पाए हैं, उनकी जगह हमारे पास एक नए कॉलर हैं, इनसे पहले बात कर ले फिर मैं आपके।
1: जी, सो नाउ वी हैव ऑनलाइन विद अस कांता इज कॉलिंग अस फ्रॉम गुरुग्राम। कांता, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी नमस्ते, सवाल पूछे।
3: मेरा सवाल ये है कि जो पीपीएफ का खाता केनरा बैंक में मैंने खोला है, पीपीएफ का खाता,
1: जी जी,
3: तो मैं ये संतुष्टि करना चाहती थी 15 साल के अंदर कोई जोखिम नहीं होगा मेरे पैसे में, अगर बैंक को कुछ भी हो जाए तो।
2: बिल्कुल नहीं कांता जी, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड चाहे बैंक में आप खोले या डाकघर में खोले, ये पूरी तरीके से सरकार की ओर से प्रायोजित होता है, यानी कि इसमें मूल और ब्याज की पूरी गारंटी सरकार की होती है। तो बैंक अगर बंद भी हो जाए या बैंक में अगर किसी भी तरीके का नुकसान भी हो जाए तो वहां पर आपके पीपीएफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो भी आपका ब्याज बनता है 15 सालों पर, जो मूल है आपका, वो आपको पूरा मिलेगा।
0: आइए चले मुंबई। मुंबई से हमारे साथ हैं नियमित श्रोता रत्नाकर। रत्नाकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर,
0: स्वागत आपका।
4: मेरा सवाल है कि ये शेयर मार्केट का एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मुझे जानना है
0: जी।
4: वो है ओवरऑल एमटीएल, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बुक प्रॉफिट। जब हमने शेयर सेल कर दिया तो वो पोर्टफोलियो से सेल हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जो प्रॉफिट दिखता है वो किधर एडजस्ट होता है, ये मेरा सवाल है।
2: देखिए रत्नाकर जी, अगर आपने अपने कोई भी शेयर बेचे हैं और अगर वो आपके खरीद कीमत से ज्यादा है तो आपका मुनाफा है। जब आपने बेच दिया पूरी तरीके से, उसके बाद उस शेयर में जो भी बदलाव हो रहा है उससे आपका कोई संबंध तो रह नहीं जाता है, वो जो भी निवेशक उसमें हैं उनके लिए वो मुनाफे की बात होती है। एक और बात आपको रत्नाकर जी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि नोशनल प्रॉफिट, यानी कि कई बार होता क्या है कि आप 100 से वो दाम बढ़कर के 120 पे आ जाते हैं, 125 पे आ जाते हैं, 130 पे आ जाते हैं, आप कहते हैं कि ये 150 होगा तभी जाकर के बेचेंगे।
1: बिल्कुल,
2: तो ये जो 150 है वो आपके लिए एक नोशनल प्रॉफिट है, वो अगर हो सकता है कि वो पहुंच भी जाए, हो सकता है नहीं भी पहुंचे, आपकी जो लागत थी वो 100 रुपए की थी। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जो सार था वो यही था कि हमने शेयर बेच दिया, हमारा मुनाफा या हमारा जो भी घाटा है वो मेरे ऊपर है, उसके बाद उस शेयर में क्या कुछ होता है, जब आप उसमें शेयर धारक ही नहीं रहे तो उसके घाटे और मुनाफे से आपका संबंध नहीं रह जाता।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: नमस्कार, ये बोल रहा था कि हम लोग को अभी क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का काफी 3 से 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो निफ्टी 50 में हम लोग SIP कर रहे थे और निफ्टी 50 के IT सेक्टर में हम लोग SIP कर रहे थे, लेकिन IT सेक्टर से थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेगा आगे, तो क्या हम करें अभी समझ में नहीं आ रहा।
2: जितेंद्र जी, आपके विश्वास की ही जीत होगी। और जहां तक हम लोगों ने ये भी दौर देखा कि जब AI को लेकर के काफी बड़ी बातें की जा रही थी, उस दौर में IT पे थोड़े समय के लिए दबाव बना, लेकिन उसके बाद IT शेयरों में बाउंस बैक हुआ। आज भी अगर आप देखें तो कोई एक शेयर जो आज 30 शेयरों में कोई एक आगे आया है तो वो आपका IT सेक्टर ही है। तो मुझे लगता है कि जब गिरावट का माहौल है उसमें निश्चित तौर पर आप जैसे निवेशक के लिए एक परेशानी और एक प्रश्न चिन्ह है, दोनों चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बने रहें, जो आप कर रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा करते रहें। और मेरा ये भी मानना है कि जैसे उसको कहते हैं कि एक सुरक्षा भी आप बना लें, कुछ पैसे जो आपने अपने लगाना चाहते हैं उसको यदि थोड़ा आप उसका विविधीकरण कर दें, बैंक में या डाकघर की बचत योजना में लगा लें। डाकघर की बचत योजनाएं बहुत बेहतरीन है क्योंकि उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी जो है वो सरकार की होती है, तो उसमें आपको कम होने का खतरा नहीं है और आपके लिए वो एक सुरक्षा का भी काम करेगा। तो आप अगर इस तरीके से विविधीकरण कर लें तो जो आपका घाटा है, देखिए बाजार के घाटे को कोई पूरा नहीं कर

0: सकता, उसके लिए धैर्य ही एकमात्र चीज है। लेकिन अगर आप विविधीकरण करते हैं तो आप घाटे को कम कर सकते हैं।
1: आइए लौटे दिल्ली, दिल्ली से हमारे साथ हैं जगदीश। जगदीश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से।
1: जी स्वागत है आपका।
2: सर जो यूपीआई में 0.4 का जो 2000 प्लस की जो पेमेंट का है, तो मैं पर्सनली अपने लिए पूछता हूँ क्योंकि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ जिसके पास कि 10 रुपए 20 रुपए किसी ने चिप्स लिया या बॉल पेन लिया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ दो बातें कि अगर कोई 10-10, 20-20 रुपए करके अगर 2000 रुपए इकट्ठे होते तब उसमें कटता है या एक मुश्त कोई करता है तो तब कटता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटा काम है और एक दो कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब 10-20 रुपए डेली ना देके वो मंथली 2500-3000 रुपए होता तो वो पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमें मतलब कितना 3000-2500 तो हमें कितना उसमें हमारे खाते से कटेगा, ये मतलब छोटे दुकानदार के लिए तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा उस पर बर्डन पड़ेगा, तो आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी चाहता हूँ सर। धन्यवाद
0: जगदीश जी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय में। देखिए आपके पास दो तरीके के ग्राहक हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाते में लिख लो, और एक है जो कि नियमित तौर पे आते हैं और जो जो भी आपसे खरीदते हैं उसका या तो नगद या यूपीआई के जरिए भुगतान कर देते हैं। आपने कहा आप एक छोटे व्यापारी हैं, अगर पूरे महीने के दौरान अगर आपके पास कुल यूपीआई के जरिए लेन देन में आपको 1 लाख रुपए से कम की आ रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास 2000 रुपए यानी कि 1999.99 रुपए तक अगर जो भुगतान कर रहा है वहां पर 1 रुपया भी उसका एमडीआर नहीं लगेगा, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम जिसको कहते हैं। यदि वो 2000 के बाद महीने के अंत में जो खाते वाले आपके हैं और वो आकर के कहते हैं कि चलो हमारा खाता क्लियर कर दो और हम एक बार में आपको 2500 का भुगतान कर रहे हैं, वो यदि 2500 का भुगतान कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक शर्त ये याद रखनी है कि जो अगर 1 लाख रुपए से कम की आमदनी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी आमदनी है तो वहां पर आप 2000 के ऊपर का भुगतान जब अगर आप लेंगे तो 0.4% की दर से आपका एमडीआर जो है वो कटेगा। तो इसमें बेहतर होगा कि खाते को 2000 रुपए तक आने ही ना दे और आप उसका नियमित तौर पर भुगतान लेते रहें। वैसे भी कहते हैं ना कि उधार प्रेम की कैंची है, तो ग्राहकों के साथ आपका प्रेम संबंध ना बिगड़े और आपके बचत और आपके खाते के ऊपर बोझ ना पड़े तो ये दो विकल्प अपना करके देखिए बेहतर है।
3: एंड ऑन दैट नोट लेट्स शेयर विद आवर लिसनर्स अ रिलेटेड स्टोरी। द सुप्रीम कोर्ट टुडे रिफ्यूज्ड टू स्टे द सेंटर्स डिसीजन टू इम्पोज मर्चेंट डिस्काउंट रेट और एमडीआर ऑन स्पेसिफाइड पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन्स अबव 2000 रुपीज, with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana sought responses from the Centre, the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. Appearing for the court, Additional Solicitor General, I beg your pardon, appearing for the Centre, Additional Solicitor General N. Venkataraman told the bench that 96% of the users of the payment gateway would remain exempt.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से देश में जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर सुधार के साथ 7.4% पर पहुंच गई, जबकि पहले 6.7% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में बिजली और गैस आपूर्ति में 12.3% की शानदार वृद्धि हुई है, जबकि IIP सूचकांक में सबसे अधिक भार रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9% की दर से हुआ है। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में भी 6.3% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में 5.6% की गिरावट आई है। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े कुल मिलाकर देश की जो औद्योगिक उत्पादन के अच्छे आंकड़े, इसे हम स्वीकार कर सकते हैं?
0: मनोज जी, इसके पहले आपका जो पहला प्रश्न था वो हम लोग रहे थे, वो कांता जी का फोन आ गया था, तो आपने शेयर बाजार को लेकर के मौजूदा हाल पे जो आपने चर्चा करी थी उसमें देखिए, एक जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें जो है वो बढ़ रही हैं, जिसको तकनीकी भाषा में हम यील्ड भी कहते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका काफी कर्ज ले रहा है, तो जो कर्ज ले रहा है उसके लिए वो ऊंची ब्याज देने को तैयार है। तो एक निवेशक के सामने एक विकल्प है कि वो ऊंची ब्याज वाले पे जाए या फिर हमारे यहाँ आए। एक और महत्वपूर्ण घटना जो आज हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में आज काफी गिरावट थी, कि चीन में पहले अंडरवेट सिचुएशन था, अब वो बेंचमार्क न्यूट्रल हो गया है। अब आप कहेंगे बड़े तो तकनीकी शब्द आप लेकर के क्यों आ रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने चीन में 20 रुपया लगाने का फैसला किया था, लेकिन आपको कंपनियों पे भरोसा नहीं था, तो आपने 10 रुपये ही निवेश किए, यानी कि आप अंडरवेट हो गए। अब क्या हो रहा है कि बेंचमार्क न्यूट्रल होने की बजाय 20 का क्या 20 से ज्यादा निवेश करने की स्थिति में आ गए हैं, करने लगे हैं। तो अब पहले तो अमेरिका में पैसा लोग लगा रहे हैं, चीन में भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ हमारी जो कच्चे तेल की स्थिति है, आप 104, 105 के ऊपर ही है, भाव चल रहा है, वो भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इन सब का नतीजा है कि बाजार में जो है वो गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। और हालात ये हैं कि अभी के समय में कुछ भी कहना ये जोखिम होगा कि बाजार किस स्थिति में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन को लेकर के, दो क्षेत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आपका विनिर्माण और दूसरा बिजली उत्पादन। लेकिन बिजली उत्पादन को लेकर के हमें थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि हमने देखा कि मौसमी बदलाव की वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ी। तो अगर बिजली का उत्पादन दोहरे अंक में रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो 12% के ऊपर की बढ़ोतरी बिजली के उत्पादन में रही है, और विनिर्माण में जो बढ़ोतरी की दर रही वो 9% की दर रही। तो ये जो है वो त्योहारी मांग को देखते हुए निर्माण बढ़ा है, उसका असर आपको देखने को मिला है। तो ये 8% एक अच्छी बढ़ोतरी की दर है, और उम्मीद करनी चाहिए कि पहली तिमाही के जो आपके औद्योगिक विकास के आंकड़े हैं उसका असर दूसरी तिमाही की, माफ कीजिएगा, उसका असर जो है वो दूसरी तिमाही के विकास के आंकड़े जो कि 30 नवंबर को जारी होंगे उसमें देखने को मिले।
3: जी, एंड ऑन दैट नोट लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम दिल्ली। शंकर इज ऑनलाइन विद अस। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो शंकर, इफ यू कैन हियर अस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Looks like he's not. We have lost contact with Shankar. So let's move on to the next story. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. The Commerce and Industry Ministry said that in a statement that these issues are important as they have the potential to make bilateral trade and investment more efficient, accessible and resilient. The areas where two-way investment flows can be enhanced include energy, industry, logistics, infrastructure, technology and artificial intelligence, space, food security, artificial innovation and the startup ecosystem.
1: बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, बड़ी ही महत्वपूर्ण मार्के की बात है। लोकल करेंसी यानी स्थानीय मुद्रा में जो बातचीत कारोबार का आह्वान हम कर रहे हैं उस दिशा में, साथ ही संदेश आदान प्रदान और पेमेंट इंटीग्रेशन की बात चली। कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है खबर और किस रूप में ये लागू होने की संभावना है आने वाले दिन?
0: देखिए, इसका मतलब है कि आपकी निर्भरता जो है वो डॉलर पे थोड़ी कम होगी और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी।
3: Okay, and let's take the next call now. Kripa Shankar is online with us from Delhi. Mr. Kripa Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: धन्यवाद। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप समझा रहे थे कि 2500 अंक की पेमेंट आपके पास आती है तो आप इसको पूरी ना लें, अगर हम उसको 1000 और 1500 रुपए के हिसाब से लें, 1500 एक लें, 1000 एक लें, तब भी चलेगा, और चाहे हमारा लाख से नीचे ही रहता है उस मुताबिक भी ठीक रहेगा। और जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा जो सेट है वो हमारे अकाउंट में UPI में किसी की पेमेंट आ जाती है 5000, 7000, 10000, छोटी मोटी पेमेंट हमारे में डाल देते, तो हमें डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए, कि या फिर इसके अंदर भी हमारा तो सिर्फ एक सैलरी है, हमें तो 30000 रुपये मिल जाते हैं मंथली, तो हमारे पे क्या कुछ, हम तो दुकानदार नहीं है, तो इस पे क्या आप कहते
0: हैं? पहली वाली जो परिस्थिति है जो आपने कहा कि हम उसको 2500 को दो हिस्सों में बांटते, 1000 रुपए का और 1500 रुपए का, जाहिर सी बात है उसमें आपका कोई लगेगा नहीं। दूसरी बात यह कि 1,00,000 रुपए के नीचे के जो व्यापारी यानी कि छोटे व्यापारी जो हैं उनके वो इस दायरे में नहीं है। तीसरी बात है कि व्यक्ति से व्यक्ति को मिलना वहां पर आपके लिए MDR नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको एक व्यक्ति के

0: मुद्दों पर चर्चा के लिए आईबीए और सात बैंक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था यूएफबीयू के बीच कल रात हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले यूनियनों ने मुख्य रूप से दो मांगों, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने के लिए 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा की थी। और अब चले एशियाई शेयर बाजार, यानी दुनिया के दो प्रमुख महादेश से हम कुछ चुने हुए बाजारों की खबर आपको देते हैं। एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 2.7% की गिरावट आज बिकवाली के दबाव में हुई। जापान का निक्की 225 सूचकांक भी 0.7% नुकसान के साथ बंद हुआ।
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rebounded today after US President Donald Trump rejected an Iranian peace proposal over the weekend aimed at resolving the conflict and reopening the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.5% higher at $108 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% up at $95.72 per barrel at the time of writing this report. A very brief comment, Shishir, because I was reading somewhere that one of the international financial service firms actually has said that it has lost visibility on the direction of oil prices. For the first time since Iran war, there is no longer a clear baseline scenario for the markets.
2: Very true. At this moment, when today you are listening this one, I mean that there is going to be an agreement. Tomorrow there is no agreement. So this weekend was very critical, and did not happen. Anything did not take place. So we are going to see only the southward movement, not the northward movement.
1: Not the southward.
0: हमारे साथ श्रोता अभी भी फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं, लेकिन हम अहमद अली जी विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और अन्य श्रोताओं को भी कि हम अब समय अभाव में आपके प्रश्न को नहीं ले सकते। भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। आइए आपको लिए चले सर्राफा का साथ। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 2.7% घटकर 1,47,980 रूपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 4% घटकर 2,23,053 रूपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। यहां पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से शिशिर की सोने में और चांदी में दोनों में निवेश के लिए अभी का जो स्तर है वह कैसा दिख रहा।
2: डॉलर देखिए, डॉलर जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा सोना कमजोर होगा, तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं 1,80 से हम 1,47 पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा एक मौका बनता है सोने में आप पैसा लगा।
0: यदि दीर्घावधि में देखें तो सोने के वैश्विक
2: स्तर पर डॉलर जब भी मजबूत होगा आपका सोना कमजोर होगा।
0: यह है विशेषज्ञ की सलाह कि डॉलर मजबूत यानी सोने में नरमी, सोने की चमक फीकी होगी और आपके निवेश के लिए अवसर बन जाएगा। और आप श्रोताओं ने जिस उत्साह के साथ भाग लिया, इसलिए आपकी ओर से हम शिशिर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: And before we close, look at the headlines once again. Benchmark domestic indices decline sharply. Sensex tanks over 1,100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year and global crude oil prices surge around 3.5%. That's all we have time for in this edition of the program. Till we meet again, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेज 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD वेरिटेज पर हमारी नशा जारी है। तामिले इरशाद फरमाइश फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामिन की नजर उस आवाज में जिसके आप और हम सब दीवाने हैं। ये नुकड़ी आवाज, ये मुतरन्निम ख्वाब तारों पे पड़ रही हो जैसे मिजराब, गुंचे में ये खनक, ये रस, ये झनकार, चांदी की घंटियों का बजना तय आप।

तामिल शायद प्रोग्राम की पहली पेशकश थी उस खनकदार आवाज में, जैसा कि हमने कहा कि जिसके आप और सब हम सब दीवाने हैं, लता जी की। शादी फिल्म का यह नगमा था राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, चित्रगुप्त की थी मौसीकी। और जहां तक फरमाइशों की बात है तो भाटापारा से इस नगमे को पसंद किया था बचकामल डॉ बसंत भृगु और मोतीलाल यादव ने। और आप हैं ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ। अली कटवाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार और कुलदीप गांधी का। इसी नगमे को सुन रहे थे मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और जगमोहन प्रजापति, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का। इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी थे कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है कोमल भारद्वाज, अनुषा और शांतनु भारद्वाज का। आपने न्यू केशव नगर उदयपुर से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। और टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, साथ में प्रतीक मल्होत्रा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से सुन रहे थे प्रोग्राम का पहला नगमा। पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन की फरमाइश भी थी, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे असेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, और ये फरमाइशी मेल मिला करनाल से बलविंदर सिंह सोडी साहब का। और आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव से, और मजनू कटीला दिल्ली से फरमाइश की थी कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा ने, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है।

फूल चंचोली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान मुलानी का, और आप हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहेब, कुलदीप सिंह होरा और भारत भूषण श्रीवास्तव रामगढ़ कैंट से आपने फरमाइश है मेरे साल की, और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से फरमाइश मेल मौसूल हुआ अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और निवेश का, और इसी नगमे को एंजॉय कर रहे थे बड़े गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दल और श्लोक मालवीय और अहल खाना। आगे प्रोग्राम का अगला नगमा आपकी नजर करते हैं और ये नगमा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म है दुलारी। शकील बदायूं ने इस नगमे को कलम बंद किया था, मौसीकी नौशाद साहब की है, सुनने के मुतमन्नी है। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और साथ में है प्रयागराज भट्ट और दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से फरमाइश किया मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन आवाज, बाबू अहद ने, और ये फरमाइश मेल मिला है मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव का, शिवपुरी एमपी से, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ में स्वीटी छाबड़ा। रायगढ़ बिहार से कुछ नए नाम हैं ये, उमराज, पवन उमा और संजय उमा, और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं प्रांत अलाब डुमरा से वलीउल्लाह अंसारी, असमान अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, राहुल मनवर, सरला मनवर, बी ए प्रियांशी की फरमाइश शाहनगर यवतमाल से मिली है, और सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं तामिल इशाद प्रोग्राम का अगला नगमा, किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पुन्नू वडतकर, और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है नई दिल्ली उत्तमनगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश का, और ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार हैं कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं शेरवानी स्कूल गंज टंडवार से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, साथ में हैं अनवर मास्टर, और चंडीगढ़ सिटी से फरमाइश किया बिमला नेजा और सतीश अनेजा ने, और आप हैं कृष्णा पाक दिल्ली के हमारे सामीन सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और गुरवंश सिंह जोड़ा। तो आइए सुनते हैं दुलारी फिल्म का ये दो गाना।

तानलीशर प्रोग्राम की अगली पेशकश है मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। नगमा निगार शैलेंद्र मौसीकी सलील चौधरी की, और सुनने के मुंतजिर हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक कासगंज यूपी से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर और जयपाल यादव, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर एमपी से। और अग्रवाल नवाशहर पंजाब से फरमाइश की गगनदीप थांडी, डॉ प्रियंकर थांडी और डॉ प्रियम थांडी ने इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और निवृत्ति शीर सागर। अगला ईमेल मिला है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और वंश बत्ता का, कनेरा मोहल्ला पटियाला से। और आप हैं मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद रिजवान मोहाल, बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र से। रूपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई की फरमाइश परभनी महाराष्ट्र से मिली है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरों निशा शबिस्ता और अहले खाना। और अगला नगमा आपकी नज़्बी करते हैं आप हैं के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव और डॉक्टर कौस्तुम भी साथ में शामिल हैं। विदर्भ आकोट से आपकी फरमाइश। और गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, रामरतन टॉकीस कुंडलवाड़ी से सुनना चाहते हैं इस नगमे को। रेलवे रोड गंज डनवार से फरमाइश की है मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा अगाजी ने। बबेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। और

अगला ईमेल मिला है येताला नांदेड़ से शंकरलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल का, और ये फरमाइश ईमेल पुरानी बागपत से है इलियास मुस्कान कुरेशी, रानी कुरेशी, बाबा जैद कुरेशी का। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, साथ में बिट्टू कुमार और अहले खाना। खान जी पीर उदयपुर से फरमाइश की जब्बार मोहम्मद और नजीब अशरफ ने, और जॉन डिकैस्ट्रो रोजी और विलिस की फरमाइश है जनकपुरी सहारनपुर से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

हमेशा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से, और अगला नगमा है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है जबक। प्रेम धवन ने इस नगमे को कलमबंद किया था और मौसीकी तरतीब दी चित्र गुप्त ने। तो लीजिए सुनिए यह नगमा और फरमाइशें बाद में शामिल की जाएंगी।

0: जबक फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन का लिखा हुआ मौसीकी तरतीब दी थी चित्र गुप्त ने। सामिन तामिली शायद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ और हमारे नशर जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। आइए पहले सुनते हैं खबरें बड़े सगीर तक उर्दू न्यूज बुलेटिन और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम का जिसका नाम है तामिले इरशाद।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। बड़े सगीर की खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकामी करेंसी में तिजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तिजारत को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने यशोधन बीमा पोर्टल शुरू किया है जिसका मकसद मवेशियों का बीमा दावों और निगरानी के निजाम को आसान और मौसर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया और यह 72,772 पर बंद हुआ। एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए। मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में यशवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता। श्री शंकर मुरली ने लॉन्ग जंप, गुरवीर सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ और ईशा सिंह ने निशानेबाजी में चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्रहार सीटी पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस प्रहार के 7 कलीदी सतूनों पर गौर खौस करेगी जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्दअमल, दाखिली सलाहियतों में इजाफा, इंसानी हकूक, दहशतगर्दी के हालात में कमी, समाज के हमागीर नजरिए के तहत बैन अलावी कोशिशों से हम आहंगी, बाजियाबी और मजाहमत शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब

0: 是要沉沉，
1: 不是那沉沉，
0: 为把沉沉，
2: 为把沉沉，为把沉沉，为把沉沉，为把沉沉。
3: उजाला फिल्म का नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र का लिखा नगमा था और शंकर जयकिशन की थी मौसीकी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपकी नजर किया था सबक फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। तो इन दोनों नगमों की मिली जुली फरमाइश शामिल करना चाहेंगे। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नादेना से साथ में साजिद शाहिद, और ये फरमाइश मेल मिला है बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर शशिकला और सुमित कुमार दामोदर का। वरुण जलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे साथ में मिलिंद सरकटे, और सुशांत प्रिया मास्टर निवेश कुमार लड्डू कुमारी हैं टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर नई दिल्ली से। और ये फरमाइश मिली है दुर्गा सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सीआर कुलकर्णी की। और इसी नगमे को सुन रहे थे सुल्तान पोखर फारबिसगंज बिहार से कृष्ण मोहन यादव, माया रानी और कंचन और उनके कुछ और साथी। और परमपुर श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा साथ में भूमिका अरोड़ा। तेलंगाना निजामाबाद से फरमाइश की थी शेख अल्लाह बख्श, बेगम रावे शेख, शेख रहीम मुन्ना ने, और ये फरमाइश मेल मिला है कदरीनगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और साथ में अंजुमन खान। और अगला ईमेल

मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ के गांव ठोटरी घोटिया से है महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, साथ में निखिल कुमार और मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनट्टी, आसिफ इकबाल की फरमाइश थी कर्नाटका के गुलबर्गा से। और इसी नगमे को सुन रहे थे पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। और आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाहजहांपुर एमपी से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत और साथ में राशि रक्षित, सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली की फरमाइश सहारनपुर के चंद्रनगर से मिली थी। और आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। तानेश्वर प्रोग्राम की अगली पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में सुहागन फिल्म का नगमा, हसन जयपुरी का लिखा हुआ और मौसीकी है मदन मोहन की। सुनने के मुंतजिर हैं योगीराज मस्के, हरी मस्के, इंदुमती मल्हार, गांव बिटोडा भोयर, मंगरूल पीर वाशिम, पश्चिम विदर्भ से। बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस है, चलिए जनाब शामिल तो हो ही गए। पश्चिम विदर्भ दिल्ली से सुनने के मुंतजिर इस नगमे को नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डीके अलवी भी हैं साथ में। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। तालुका निवासा खोपटी से हैं बंडूला लोहार, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट, रोहिदास चौक पंद्रहपुर सिटी से इस नगमे को सुनने के इंतजार में हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, कृष्णा घोट के। और ये फरमाइश है पश्चिम बुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेन्द्र जुनेजा, सीमा जुनेजा और अहले खाना की। उत्तम बाबा श्वेता भक्त किशुताशु में पाकुड़ झारखंड से। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं नेहरू चौक पैठण से, नेहरू चौक दरअसल जगह का नाम है, डॉक्टर सुरेश जाधव, नीता जाधव, साथ में सोनर प्रसाद जाधव। पलसी से विजय शेगुकार, ऋषिकेश शेगुकार और डॉक्टर जयश्री। अगला नगमा आपकी नजर पे करते हैं अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, साथ में मोहम्मद उमर डावर, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से। और ये फरमाइशी मेल मिला है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहां नास, तलत जहां नास और फरत जहां नास का। आशु चुक, अश्वनी चुक और गोविंद चुक की फरमाइश है पंचकुला सेक्टर 9 से। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं राजू माठे, गजानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे, आसल गांव बुल्डाना महाराष्ट्र से। तो आइए सुनते हैं तामिल शाद प्रोग्राम का अगला नगमा।

अभिषेक प्रोग्राम का अगला नगमा है शिकारी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। फारूक कैसर ने इस नगमे को लिखा, मौसीकी जी एस को लिखी है। सुनना चाहते हैं अलगी डांड कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष और उनके कुछ और साथी, हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक की फरमाइश है बेडी एमपी से। और अगले मेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। बीच शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर कटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा और उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भी हैं, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और ये फरमाइश मेल सुल्तानपुर यूपी से मिला है, यशमीत यशु, अविरल सिंह और अहले खाना की जानिब से। लता जी की आवाज में नगमे की फरमाइश है, तो कई नगमे भी आपने सुने और भी सुनने को मिलेंगे। जनाब आपका हमारा साथ आज भी रहेगा 11:45 तक। नागपुर महाराज से विठल जाधव, अनसुए जाधव, पवन राजे जाधव और सुवर्ण सिंह, गांव डोलेवाला जिला मोगा पंजाब से आपने फरमाइश मिसाल की है। कस्बा हाफिजगंज जिला बरेली यूपी से शकील अहमद इदरीसी और साथ में इशरत जहां इदरीसी, हिपसोगा लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो साथ में करिश्मा शेख और ये फरमाइश मिली है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी की। चिंगवाड़ा बेड़ी से हैं नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस और उनके कुछ और साथी। और अगला मेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी साइड लाइन करना पड़ेगा। देव नारायण साहू, योगिता और गीती का है, आपने भोईना पार बालोद छत्तीसगढ़ से फरमाइश है मेरे साल की। अफजलता शाहीन सुल्तानात, सोनू तसीम बड़काकाना से। और अगले में मिला है पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा का। पारस अकोला महाराष्ट्र से संतोष धर्मकार, गीता भूषण और अहले खाना। मलारपुर चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भाषंकर, प्रिया भाषंकर, साथ में मास्टर ओमी भाषंकर और कुछ और साथी भी इस नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं। आप हैं अहमुद्दीन बनट्टी, मुमताज बनट्टी, रियाज बनट्टी, गढ़ मोहल्ला महालिंगपुर से। और अगला ईमेल मिला है रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और मंजू का। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से हैं, सोपान तायडे और मोहन करांगले हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से। मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, मायरा सुरेशी की फरमाइश काटा रोड वाशिम से मिली है। और किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंडे और शीला देवी शिंडे। दिनेश वर्मा रिकनी से हैं और साथ में करुणा वर्मा, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं हमारे कुछ और सामीन। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बल्लू निषाद हैं जेल रोड रायगढ़ से। और अल्ताफ उजे, सहबुल्ला और सबात उजे की फरमाइश सांगली जत शहर से मिली है। और अब है नगमे की बारी।

मिगलानी बब्बू टब्बू भी हैं और अगला ईमेल रिपीट हो गया तो उसको कहते हैं साइड लाइन। ताज मंदिर लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौशल, साथ में मोहम्मद हसनैन पवार, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई और भारतीय देवी, और ये फरमाइश मिली है चरौदा बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर और प्रमिला ठाकुर की, मंगल गेट मलकापुर से रामेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या हर्ष तलेकर और प्रकाश रंभाड़े, साथ में वैष्णव हर्षल लंबाड़े, जानवी रंबाड़े, काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहु पंकज और साथ में तिरुपति, ये फरमाइश मिली वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटो थॉमस और पिंकी अरोड़ा की, बाबा साहेब अडोदे आदिचार पे चंद्र प्रभा अडोदे बरोड़ जोल से जोल का से हैं और कस्बा बिलराम से हैं इरशाद अहमद शाह शाह और मरियम जैनब और एक जगह नाम लिखा है शाह शाह शाह। अब ये शायद भूल गए लिखना उसके आगे क्या था या फिर वो बस शाह शाह में ही रह गए। विनायक बेंडे मंगला बेंडे शुभम में आकोट से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। किरदार पानी पर से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा और बब्बू का पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम, अगला ईमेल रिपीट है इसको करते हैं साइड लाइन। फैज अहमद शाकिर मुल्ला जी, साबिर मुल्ला जी की फरमाइश बरगद बेल भोबली कर्नाटक से है और आप हैं अमीर खुश रोड गंज डुंडवारा से डॉक्टर दबीर वसन, बेगम शबना मनवार और अहले खाना, और अगला ईमेल रिपीट है इसको करते हैं साइड लाइन। ये फरमाइश मिली है विजय मोबिया, कविता मोबिया, पेंटर बाबू की, रामगंज खंडवा से, और अब सुनवाते हैं आपको ये नगमा।

अभी ना हमें भी सुनते रहिए और साथ में नाम भी शामिल कर रही साईनगर अभी महाराष्ट्र से नरेंद्र के प्रियदर्शी मिले, साथ में डॉक्टर प्रियंका काल पांडे और बेलरीला बस्ते छत्तीसगढ़ से शिवप्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, साथ में युवती देवदास, थाना बक्सर रोड थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता और दादाजी रोड खंडवा एमपी से मोहम्मद हसनैन हसू बाबा और सफिया अरहान खोकर, भंडारा रोड क्रू माना महाराष्ट्र से सुन रहे स्नाखमे को हर्षल पाटिल, मंदाकिनी पाटिल और विकास पाटिल, विनोद वंडलकर, वीना वंडलकर और साथ में विविधा वंडलकर रायपुर से। अगला ईमेल मिला है उन दोस्तों का जो हो चुके हैं शामिल, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। डॉक्टर बाकूर से के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुम डाबेराव की फरमाइश भी है। अगला ईमेल भी रिपीट है, इसको भी करते हैं साइड लाइन जनाब। मामलवाड़ी महाराज से सोपान तैडे, ये भी पहले शामिल हो चुके जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। और सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से हैं शेख जियाउर रहमान, अगला ईमेल मिला है, ये भी रिपीट है, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल शामिल करते हैं। और मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन सौम्या सिटी सेंटर खंडवा से, और नकमा भी इस बीच में अभी चल ही रहा है, तो अभी कुछ और नाम शामिल कर लेते हैं जनाब। ये फरमाइशी ईमेल कहां से आया है? जी हाँ, ये भी रिपीट है, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। कलंगंज खंडवा से कौशल बी पवार, हसीना बी पवार और हीरा सईद खोकर, प्रकाश निषाद, मुझे लग रहा है ये भी शायद पहले शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अनिल जैन, सीएम जैन, जीपीएम जैन है, आपने मलिया सदना मेरठ से फरमाइश मेरे साल की है। और एक और रिपीट ईमेल इस बीच में आ गया है, पश्चिम तोपगंज डिंडवाड़ा से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी, फैजुल अलीम सिद्दीकी और इसी नगमे को सुन रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार और विपिन गुप्ता और उनके बहुत सारे साथी। अगला ईमेल भी रिपीट है, इसको भी करते हैं साइड लाइन।

त्रेंग भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, साथ में पुष्पेंद्र मणि वर्मा। और अगला ईमेल फिर रिपीट हो गया। क्या करेंगे ना, कुछ दोस्त हैं जो बार बार ईमेल करते हैं, वक्त भी जाया होता है। लॉर्ड अड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और साथ में भुवनेश्वरी देवी। और अब अगला नगमा आपकी नजर करने जाएंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। कोहिनूर फिल्म का नगमा शकील बदायूं का लिखा हुआ, मौसीकी नौशाद साहब के। और इस नगमे को सुनने के मुतवन्नी हमारे बहुत सारे सामीन, एक दो नाम शामिल करते हैं फिर नगमा सुनाने के बाद, उसके बाद शामिल करेंगे कुछ और नाम। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा, सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्य खुराना, एमएलबी रोड ग्वालियर से। और यह फरमाइश कोलकाता से मिली है सुब्रत चौधरी साहब की। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं भोपाल के राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और ये फरमाइश नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज की है मंडी हरजी राम मलोट से। मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमरान आज, नवाज शेख हैं गंजे टंडवारा यूपी से। और शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुमित रमेश साहू हैं बक्सर बिहार से, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और उनके कुछ और साथी हैं देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अगला मेल फिर रिपीट है, इसको भी करते हैं साइड लाइन। आवास विकास कॉलोनी काजगंज से पवन गौड़, तमनापुरी गौड़, साथ में सुरेश आशीष गौड़। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं पटेली रोड गंज चंदवाय से एम खलील खुर्शी, नुसरत बेगम और बेबी अरिबा हबीबा। उन्हेल उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया और उनके कुछ और साथी। और असलपुरा मुरादाबाद से फरमाइश की मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी ने। अगला मेल भी रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, आसन अंसारी और कैफ। और जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत निमनाबाद जीन से आपने फरमाइश हमें साल की है।

इस नगमे को सुन रहे हैं मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और गौरी, और ये फरमाइश मिली है गुरमीत सिंह मेहता की साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से। उमारी महाराष्ट्र से अनुप कुमार उद्धव पाटिल और जगदीश ठाकर नायमा, साथ में रंजूभाई ठाकर, युवराज सिंह, आपने हिंगड़ी आलोट से फरमाइश हमें भेजी और ये फरमाइश हम दोस्तों की जिनके नाम हो गए शामिल, तो आगे बढ़ते हैं और ये मेल भी रिपीट है, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। अभय खेड़ा वाशिम से हैं, सोनाली आदर्श आर्यन और उनके कुछ और साथी, और अगले मेल भी रिपीट है, इसको भी हमने कर दिया है साइड लाइन। विरम गांव मुजासे अजीत भावसार, प्रमला भावसार, साथ में भावेश कुमार भावसार और फातिमा मंसूरी के साथ में फहीम मंसूरी दी है, बांदा यूपी से आपकी फरमाइश हमें इरसाल हुई है। और अगला ईमेल किसका है भी देख लेते हैं। साईनगर आरवी महाराष्ट्र से ये मुझे लगा पहले शामिल हो चुके हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं। जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता की फरमाइश भोपाली यवतमाल से मिली है। भूषण खेड़ा और साथ में विशाल खेड़ा विशु है, फाजिल का पंजाब से, और तम्बरम चेन्नई से शाहिद अली इफत फारूकी हिफ्जा अली भी साथ में शामिल हैं। और इसी नगमे को सुन रहे हैं धनौरी तेरीवाला से निशा सलमानी, नौशा सलमानी, बीबी आलिया, और ये फरमाइश ईमेल मिला है उन दोस्तों का जो हो चुके हैं शामिल, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनिया, पूनम गगनेजा और निमित आहूजा भी साथ में शामिल हैं, और ये फरमाइशी ईमेल बठिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग का, और डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीद सिद्दीकी, जिशान अहमद है, 3 14 भिलाई 36।

घर से और बाबा साहेब सरगर हैं गार्डन रोड पैठण से और इसी नगमे को सुन रहे हैं विदर्भ महाराष्ट्र से यवतमाल से संतोष खट से और विनोद खट से दिलीप रामेकर हर्षरामेकर अक्षर रामेकर राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से आपकी ये फरमाइश हमें मिली है और सोमदत्त कैरव ज्योति हैं जिला पटियाला नाभा पंजाब से और अगले मेल रिपीट है इसको पे करते हैं हम साइडलाइन सीताराम कागड़ा बबीता बोट निखिल कागड़ा की फरमाइश एकता कॉलोनी रोहतक से मिली है और जाते जाते भी एक नगमा और आपकी नजर करना है जनाब वो कौन थी फिल्म का नगमा है राजा मेदिनी खां का लिखा हुआ मौसीकी मदन मोहन की है और आवाज लता साहिबा की है और इस नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं हमारे बहुत सारे सामईन नाला मिश्रट्टा फरुखाबाद यूपी से संजू चौरसिया और शेष चौरसिया साथ में कुशाग्र चौरसिया और डोमन ठाकुर साथ में हैं सुमन ठाकुर रियांश महादेव घाट अमलेश्वर से आपकी फरमाइश हमें मिली है मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौनकर रही सरिता गौनकर अर्जुन गौनकर डुगू और मुकेश कश्यप सोनू सुरेश साथ में है शीतल कश्यप गांव दुलापुर मुरादाबाद से और व्हाइट हाउस बेंगलुरु से फरमाइश की व्हाइट फील्ड है दरअसल भारत भूषण और साथ में अंजू श्रीवास्तव उनके कुछ और साथी और ये फरमाइशी ईमेल उन दोस्तों का जिनके नाम हो गए शामिल तो आगे बढ़ते हैं आप संजय मारकंडे साथ में बेबी किट्टू और ममता मारकंडे बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से तो ये नगमा सुनते हैं और कुछ वक्त रहेगा तो कुछ और नाम शामिल कर ले जाएंगे।

अगला गीत श्रोताओं आइए, अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म हॉस्पिटल से कानन देवी की मधुर आवाज में।

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दो बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के सात स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने डीडीपीए को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ सिंह ने कल नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन ने दोनों देशों के लिए सरकारी संस्थानों और स्थापित एजेंसियों से परे सहयोग का विस्तार करने की नई संभावनाएं पैदा की हैं। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। भारत ने श्रीलंका की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मदद के लिए कोलंबो में लगभग 3 टन टीवी रोधी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दवाओं को भेजने की जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कच्छ पाए रखा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के सात स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, जेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्य दल कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना और संयुक्त क्षमता को मजबूत करना है। म्यांमा की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हैं। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मैग्डालेना सोबकोवियाक जारनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में संयुक्त कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत और पोलैंड के बीच संस्थागत, रक्षा

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

Gamma,

0: श्रोताओं,
1: नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने थाला वैद्य काचेरी और याला वेंकटेश्वरा राव की ये प्रस्तुति सुनी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की सातवीं तिथि। तदनुसार 19 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 57 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हो चला है 4:58 और 5 सेकेंड। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में।

5:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम देश भक्ति गीत, जबकि 5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वरुण कुमार पाल द्वारा गिटार पर बजाए राग नट भैरव।

0: छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। और अब सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

प्रसाद बलिहारे ज्ञान नानक भगत दारे तुल ब्रह्म।

सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे पूर रहे हो सर्व में आप है नरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही अपन तारे कुदरत है देखारे वर्ण चैन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान।

सपना आया। काची दे मोफुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी धावत भ्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। जो बन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ो अपमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा जह मीठी जी माहे तानी बल बंच शाप करत उपावा पेख तो सुन तो प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी के दानी कारण।

0: देह न गेह न नेह न नीता माया मत कहा लोगारो शतर न पतर न चोर न चावर बहती जात हृदय न बिचारो रथ न असव न गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दऊ कर चारो मित्र न पुत्र क्लतर साजन सख उल्टत जात बिरखी शारो दीन दयाल पुरख प्रपूरन छिन छिन सिमरो अगम पारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार तरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप भोजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट

पाठ परम्परी ब्रह्मा दिख शिव शांत मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे।

फूले सुत दारा से अप्रीत ने एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुरे रामदास राखो एक अरदास पाट कीरत की गुरे रामदास राखो।

हर के नाम रति लेवलाए गौर सेवाते हर नाम धन पावे अंतर परदास हर नाम त्यावे सिगार रावे प्रभ सोए हम बेच